0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

उदास रहना।

0: वापस फिर से जन्म लेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन वापस आपके पास आपके और करीब आ गए हैं। मंडे मॉर्निंग 25th of May, सुबह के 5 बज चुके हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:04 हो रहे हैं. Definitely मौसम तो आज भीगा भीगा सा है और हवाएं भी तेज बह रही हैं. साथ ही साथ कुछ नाक भी बह रही हैं. तो सर्दी का असर है. मौसम ही कुछ ऐसा है. बस आप अपना ख्याल रखिएगा. And इस मंडे मॉर्निंग में आपका स्वागत करने के लिए आपकी नीतू एक बार फिर आपके साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती और सुबह के 7 तक विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक चंद सदाबहार गीतों के साथ विद योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. सो वर एवर यू माइट बी, ये मंडे मॉर्निंग आप सब के लिए एकदम शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करते हैं.

0: क्योंकि इंतजार का फल जो मीठा होता है ना. सो 5499 1294 पर हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं. आपके नाम, आपके अपनों के नाम, पैगाम.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.
0: So, aap sabko wish karte hain. A very good morning. Pranam. Namaskar. Sabhi ko. Heavy rain in Triole. Oh, ho. So, yahan par bhai Suraj Sharma Sajada keh rahe hain. Sabko apna jo hai precaution lete chale. Be it students, be it jitne bhi log kaam par ja rahe hain. And if you are hitting the road, please drive carefully. 5499 1294 पर वट एवर यू माइट भी एक छोटा सा मैसेज बस हमको आप बता दीजिएगा ताकि आपके ज़रिए सबको पता चल जाए कि किन किन गलियों में किन किन जगहों में बारिश हो रही है या फिर मौसम एकदम बढ़िया है ना. थैंक यू. ज्योतिषा तो बिनागस से आपका बेटा विवेक और नेफ्यू आयुष दोनों अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. क्या बात है. माधव परिवार फ्रेंड्स एंड डियर वंस की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. गुड मॉर्निंग धीरज आयुष विधिशा अश्विन ज्योति हरक परिवार मौदालबिया से ललित एंड जीत इन फैमिली. थैंक यू माई डियर. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. अब्दुल अंसारा बानू हैव अ नाइस डे अहेड. गुड मॉर्निंग मिस्टर टोनी आप है फ्रॉम होशबुआ एंड बस नेक्स्ट गाना आपके नाम आपके पूरे परिवार के.

लिए एंड आप कहते हैं कि इफ़ यू लाइट अ लैंप फॉर समबडी इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ. डेफिनेटली आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो बदले में आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है. सो जितना हो सके डू गुड बी गुड एंड सबका भला हो. ओम नमः शिवाय. कैसी है शीला जी लेस्पेरेंस ट्रे बिशे से. इट्स रेनिंग आतोशमोर एंड थैंक यू आप आजू फैमिली विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. एंड यहाँ पर अगला गाना आपके नाम सुया जी हर हर महादेव और आप अपनी कीर्ति नीस है आपकी और किमी दोनों शिवाला जा रहे हैं. अच्छी बात है भगवान का नाम ले आपका दिन अच्छे से बीतेगा यही हम कामना करते हैं. और कुंगमा में भी बारिश हो रही है सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. ऐसा लग रहा है कि मौसम कुछ ऐसा ही है सुबह का ये जो वक्त है सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. इंदिरा रेशमा विमल अंजू कृषा केशव नील मायशा तानिया मोता ब्लॉश से सबको प्यार भरा नमस्कार प्रणाम.

कहते ना कि घर तभी बनता है जब उसमें प्यार करने वाले बसते हैं, अदरवाइज उसको मकान ही कहते हैं। उसी प्रकार आप अपने गांव अपने शहर को खूबसूरत प्यारा सा बना सकते हैं, उसमें बस प्यार भर दे, भाईचारा, शांति, अमन एंड जितना हो सके आप अपने गांव शहर को एकदम साफ सुथरा रखिएगा। 527 गोइंग टू वर्क, बोन कुराज एंड लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, प्लेन दे गोश से हैं और रात भर बरसात हुई, क्या बात है कमलदीप, आप ही अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगला गाना आपके नाम टीना मर्द, आज आपकी बड़ी दीदी का बर्थडे है पूनम जो रहती है बिले, सो बेस्ट विशेस आपकी तरफ से टीना एंड केली केविन आरुष सब परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार।

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: बस अपने प्यार की तस्वीर आप अपने सीने से लगाकर रखें. अभी के लिए आपका दिन कैसा रहेगा?
2: एरीज मेष राशि.
1: तो आज किस्मत आपके व्यापार और धन के दरवाजे खोलती नजर आ रही है. आमदनी बढ़ने से मन खुश होगा. लंबे समय से अटका पैसा भी अचानक वापस मिल सकता है. यदि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: राइट, आज के दिन नए अवसरों और आर्थिक तरक्की का संकेत दे रहा है. आय बढ़ने के योग है. कार्यक्षेत्र में आपको कई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है. स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहद शानदार रहेगा. वैसे मेहनत का परिणाम उम्मीद से बेहतर रहेगा.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: वेल, आज आपका मन आराम, स्वादिष्ट भोजन और सुकून भरे पलों में डूबा रहेगा. सरकारी कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज आपके पक्ष में आ सकता है. ध्यान रखें, निजी बातों में किसी अनजान व्यक्ति की राय लेना काफी नुकसान करा सकता है.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: यस, आज सितारे आपको एक ही संदेश दे रहे हैं. अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें. कामकाज में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपका धैर्य आपको संभालेगा. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिलेगा और संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है.
2: लियो सिंह राशि.
1: आज का दिन नई शुरुआत और जीत का एहसास कराने वाला है. धन और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे राहत मिलेगी. प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. वैसे आपके भीतर कुछ बड़ा और अलग करने की आग दिखाई देगी.
2: वर्गो कन्या राशि.
1: व्यापार में थोड़ी उठा पटक देखने को मिल सकती है. किसी सहयोगी की बात दिल को चोभ सकती है, लेकिन गुस्से की बजाय समझदारी से काम लें. बड़ों द्वारा दी गई जिम्मेदारी आपके भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना बहुत ही अच्छा होगा.
2: लिब्रा तुला राशि.
1: आज का दिन थोड़ा चुनौती

0: और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। किसी काम में उम्मीद के मुताबिक परिणाम ना मिलने से मन तो थोड़ा उदास हो ही सकता है। जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान दे सकता है। दैट्स व्हाई हर काम सोच समझकर उठाएं और कार्यक्षेत्र में बदलाव की जरूरत महसूस हो सकती है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज खुशियों की हल्की हल्की बारिश आपके मन को तरोताजा करा सकती है। कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पुरानी गलतियों से मिली सीख आज आपके बहुत काम आएंगी। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें और किसी दूर के रिश्तेदार से जुड़े खबर मन थोड़ा भारी कर सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज मन किसी अनजानी चिंता में उलझा हो सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात आपको परेशान कर सकती है। जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसान करा सकते हैं। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और नया वाहन खरीदने का सपना आपका ये पूरा भी हो सकता है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: वेल आज का दिन सुख सुविधाओं और नए अवसरों से भरा रहेगा। नौकरी बदलने का सोच आप रहे हैं तो कुछ समय ये जो है अनुकूल है। काम के सिलसिले में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कानूनी मामलों को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए अनुभवी सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन इससे परिवार में आराम और खुशहाली छाई रहेगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज मन थोड़ा उलझा रहेगा और आत्मविश्वास भी कमजोर महसूस करेंगे आप। किसी काम को लेकर यदि दिल पूरी तरह तैयार ना हो तो जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। बड़ों की सेहत को लेकर, खासकर माताजी की सेहत को लेकर चिंता और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होती नजर आएगी।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज का दिन भागदौड़ और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है, इसलिए खुद को शांत रखे, संयम रखे। परिवार में यदि कोई विवाद हो तो आपकी समझदारी माहौल को संभाल सकती है। व्यवसाय को लेकर मन की चिंता बनी रहेगी, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए आपके रास्ते को आसान कर देंगी। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, विशिंग यू ऑल अ लवली डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

दिल होता है 5:55 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। घोघुप में जोरों की बारिश, प्लीज बी वेरी केयरफुल। नमस्कार जी, और यहाँ पर गाना आप सबके नाम, लंबा सा मैसेज है, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सरोज राजन, पूनम मोनिका, पल्लवी विशाल, उमेश अर्शी कैथोबोन से, एंड बस आपके लिए दूतिका रघुजना परिवार से, वेरी गुड मॉर्निंग कुमार एंड दे बिशन फैमिली एज वेल।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: 6 baje hain. Sudhya Sankshipti Samachar aap se Aditi. Namaskar.
6: नमस्कार नितुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह मॉरिशस में भी इन्फ्लेशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों के दौरान कीमतें बढ़ती रहेंगी, परिणाम स्वरूप खरीद शक्ति कम होगी और परिवार पहले की तुलना में समान वेतन से कम चीज़ें खरीद पाएंगे। इस अध्ययन में हर दो व्यक्ति में से एक का मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में इन्फ्लेशन का वर्तमान स्तर ऊंचा है, जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के इस अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है जो इस साल की नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में ऊर्जा की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी

0: जागरूकता पर बल दिया जा रहा है, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। ये पिछले 2009 से पेश आया सबसे बदतर गैस धमाका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लापता हुए लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। खदान के अंदर इंफ्रारेड कैमरे और रोबोट्स भेजे गए हैं। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, मॉरिशस के लिए आज सुबह ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ठंड और तेज हवाएं चल रही हैं और उधर कुछ अस्थिर बादलों का असर भी हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह के दौरान रह रहकर बारिश होगी कुछ इलाकों, खासकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। आज दोपहर बाद और रात के दौरान भी खासकर ऊंचाई वाले इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ सकता है। इस कारण से मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है और इन लगूनों में भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। जबकि दोपहर बाद से समंदर की स्थिति बेहतर होने लगेगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:35 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे फिर 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musti.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:09 बात तो है बिल्कुल सच्ची की हमारी भी दुनिया आपसे जुड़ी होती है, आप हैं तो हम हैं. थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पर है इतना लंबा मैसेज. ओके, मिस्टर राम भरोसे की शन चित्रकूट वाली दिवगत से और पूरे परिवार, जितने भी लिसनर्स हैं आपके सभी डियर वंस के नाम, गुड मॉर्निंग जी. नेक्स्ट गाना आपके लिए बॉम्बू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, संजीव, निशा, देव, रेखा, मीना, ऋषि और तहान हंसवी, दबे दस सनीचर परिवार. थैंक यू सो मच. कैसे हेमा, ठीक ठाक? यानेश, निशिका एंड पूरे परिवार के लिए अगला गाना.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: बाबू में पानी नहीं बा, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर. धनेश्वर जी कहते हैं वेरी गुड, जैसा भी मौसम हो आप सेफ रहे. एंड बों को आज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क 6:15. काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि प्लीज़ अगला गाना पूरे परिवार के नाम, वाई नॉट. हर हर भोले आपको मिला राम जी कल मोता ब्लॉन्च से आपके फैमिलीज डियर वंस के नाम. प्रंदी पपा से है प्रेमिला जी, एंड गाने मस्त चल रही हैं पति के लिए एंड पूरे परिवार के नाम.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: ऐसे सर्दीली मौसम में बस सावन भी बरस रही है. जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड गुड मॉर्निंग नंदिनी, कैसी है माय डियर? लोड्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस आपकी भी जिंदगी में. एंड यहाँ पर है कौन? गुड मॉर्निंग मिस्टर जय. एट वर्क मोतालोंग में है बोंकुराज. बोंकुराज टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. एंड अगर आप पहुंच भी गए हैं देन हैव अ नाइस डे अहेड. 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद 7 बजे के बाद पूनम आपके साथ रहेंगी इन मॉर्निंग बीट. मुलाकात होगी कल वापस सुबह 5 से 7 के बीच. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। इसके पीछे वैश्विक अस्थिरता का कारण बताया जाता है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। इसके तहत सर्दियों के दौरान ऊर्जा बचत के कदमों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 42 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह मॉरिशस में भी इन्फ्लेशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों के दौरान कीमतें बढ़ती रहेंगी, परिणामस्वरूप खरीद शक्ति कम होगी और परिवार पहले की तुलना में समान वेतन से कम चीज़ें खरीद पाएंगे। इस अध्ययन में हर दो व्यक्ति में से एक का मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में इन्फ्लेशन का वर्तमान स्तर ऊंचा है, जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के इस

0: अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। विस्तार आदरीय वाले और अभ्युदय के साथ।
1: महंगाई का सीधा मतलब है चीजों के दामों का बढ़ना। जब सुपरमार्केट में, पेट्रोल पंप पर या फिर बिलों में पैसे ज्यादा लगते हैं तो हमारे पैसे की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उतने ही पैसों में अब हम पहले से कम सामान खरीद पाते हैं। ये सर्वेक्षण 200 आर्थिक जानकारों व्यापारियों के बीच किया गया, जिसमें से 57% लोगों ने अपने जवाब दिए। लगभग आधी यानी कि 50% आबादी का मानना है कि अभी महंगाई बहुत ज्यादा है। 36% लोगों को यह ठीक ठाक लगती है, जबकि 14% लोग इसे कम मानते हैं। लोगों के अनुसार महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह बाहरी यानी कि ग्लोबल स्थिति है। दुनिया भर में चीजों के बढ़ते दाम और बाहर से सामान मंगाने का खर्च, मॉरिशस के रुपए की कीमत में बदलाव, लोकल मार्केट में सामान की सप्लाई में आने वाली दिक्कतें आदि। जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में भी महंगाई ऊंचे स्तर पर रहेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2026 एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन यानी कि अनुमानित औसत महंगाई 4.8% होगी, दिसंबर 2026 5.3%, जबकि फरवरी 2027 5.1% है। लंबे समय का अनुमान अगर बात करें तो अगले 5 सालों में महंगाई औसतन 4.7% के आसपास रहने की उम्मीद है।
0: आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में ऊर्जा की मांगे गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। रिया रामभोजन, रजनीकर।
2: अक्सर सर्दी का मौसम आता है तो हमारी आदतें भी थोड़ी बदल जाती हैं। जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बदलाव आ जाता है।
3: Vous avez roche à terre ici. Et... Mais souvent l'hiver, c'est la peine. Nous, dans l'hiver, tu fais bonheur, on comprend là. Et il fait une petite différence.
4: Les diminuer d'une certaine façon, par exemple, nous passer avec climatisation et les réserves, il y a presque normal de regretter de plus devant si nous voulons diminuer.
5: Normalement, les passants moins sont ces moments d'hiver. Côté Naputin, où Taïban l'apparaît.
6: Vers situation sous contrôle, zone réserve.
2: Central Electricity Board qui a été pichelé garmi ke mausam mein urja bachat par dhyan kendrit, sardi ke mausam mein bhi urja bachane se sambandhit jagruta abhiyan par kara rakha ja raha hai. Urja mantri Patrick Asiawaden ne kaha.
7: Nous avons envie de montrer le Mauritien en général.
2: Hum Mauritianon ko batana chahte hain ki na keval garmi ke mausam mein samasya hai, सर्दी के मौसम में भी समस्या उतनी ही गंभीर है जिस तरह गर्मी के मौसम में। इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ता है। अगर छोटी छोटी हरकत या कुछ कदमों से बचत की जा सकती है तो निसंदेह बिल कम होगा और सीबी भी कम कच्चा तेल मंगवाएगा। बिजली उत्पादन के लिए देश के लिए हैवी फ्यूल का दाम भी कम होगा। तापमान के घटने से चाहे बिजली की मांगे कम हुई हो, फिर भी लोगों को जागरूक कराना अहम है। अतः ये अभियान कैसे चलाया जा रहा है जानने की कोशिश की गई। ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया,
7: C'est une campagne qui commence depuis l'école.
2: ये अभियान स्कूल से शुरू होता है। हमारी टीमें स्कूल में जाएंगी, मॉल्स में भी जा रही है, लोगों से भी मुलाकात करेगी। स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा कि क्यों ये अभियान चलाया जा रहा है। बातचीत करेंगे, समझाएंगे, सहायता देंगे। इमो, सीबी, मावेना, ऊर्जा मंत्रालय सहायता करेंगे ताकि बिजली जाया न हो। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कई बिजली उत्पादन इंजनों का रखरखाव किया जाएगा। अधिक जिम्मेदाराना उपभोग की ज्यादा जरूरत होगी। यह अभियान 6 महीनों तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि एक बार फिर से उन्हें नागरिकों के सहयोग से भारी उम्मीदें हैं। इसकी बदौलत सीबी पिछले गर्मी के मौसम की मांग पर

0: 15 मेगावाट तक बचत कर सका है।
1: ऋतु विज्ञान केंद्र ने आज सुबह मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है, जो आज दिन की 12 बजे तक बरकरार रहेगी। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की लहरें उठेंगी, जिसका असर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इसलिए मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों और आम जनता से समंदर में न निकलने और इन तटीय इलाकों में सावधानी बरतने की मांग की जाती है। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी, और अगर वे पहले से ही नौकरी स्थल पर मौजूद हैं तो वे घर लौट सकेंगे। अभी तक ऐसे कदम के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर्याप्त नहीं थी, और भारी बारिश की स्थिति में कंपनियों को क्राइसिस कमेटी के कम्युनिके का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघों के अनुसार इस फैसले से नौकरी क्षेत्र में एक अन्याय को सुधारा गया है। सिल्वाना पाकिमामन, रजनीकर।
0: हर गर्मी के मौसम में इस पर चर्चा होने लग जाती है। सरकारी कर्मचारी मूसलाधार बारिश होने पर घर जा सकते हैं। निजी सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार करना होता है, जो कभी कभी बहुत बाद में प्रकाशित की जाती है।
2: Quand ma machine vient près au roule, elle est là où trouve lui.
3: Comme moi, on vient travailler à l'hôtel. C'est dans ce qu'on allait passer. Quand nous nous reste là-bas, deux jours, sur la nuit, nous inquiète nos familles, c'était la case quand nous qui peut arriver.
0: निजी सेक्टर और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के बाद एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति कायम की गई है। एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय किया गया है। मूसलाधार वर्षा होने पर निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर नहीं जाना होगा या फिर काम करते नहीं रहना होगा। इस तरह मालिक वर्ग को नेशनल क्राइसिस कमेटी की विज्ञप्ति का इंतजार नहीं करना होगा। रियाज चतुर ने कहा, कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। मूसलाधार बारिश होने पर घर जाने का अधिकार सुरक्षा से संबंधित है। सुरक्षा को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज एक अन्याय को सुधारा गया है। काफी लंबे समय से इसका इंतजार था। बहुत बधाई है कि ऐसा हो पाया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए काम होगा, इस पर बातचीत करनी चाहिए, ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, परिवहन आदि को लेकर भी। ये प्रोटोकॉल उन सभी कर्मचारियों के लिए लागू है जो फुल टाइम, पार्ट टाइम या शिफ्ट सिस्टम पर काम करते हैं। मंत्री रेजा उतीम ने कहा, पहले तो वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स राइट्स एक्ट में कहा गया है कि निजी सेक्टर को अपने कर्मचारियों को लौटाना चाहिए नेशनल क्राइसिस कमेटी के आदेश पर। अब इसमें बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा कि निजी सेक्टर के कर्मचारी काम पर न जाएं। अगर काम पर हों तो उन्हें घर लौटाना चाहिए। सुधारों के साथ केवल आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों को काम पर जाना ही होगा मूसलाधार बारिश होने पर। नेशनल क्राइसिस कमेटी की ओर से जारी विज्ञप्ति के बाद ही फिर से काम बरकरार रखा जा सकता है, ये कहते हुए कि निकलना सुरक्षित है। आपातकालीन सेवाओं के लिए कर्मचारियों को काम पर जाना होगा या फिर मौसम की बहुत खराब स्थिति में काम पर रहना होगा। सेवा प्रदान करने वाले हर एक संगठन को एक अंदरूनी प्रोटोकॉल तैयार करना होगा और बरकरार भी रखना होगा। साथ में एक निश्चित आपातकालीन योजना भी होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ तक नर्सरीज और शिक्षा संस्थाओं की बात है तो कुछ भी नहीं बदला है, अलग अलग संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर होगा। इस प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए वर्कर्स राइट्स एक्ट में सुधार लाए जाने चाहिए। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट में भी सुधार लाए जाएंगे। क्राइसिस समिति के कार्य बढ़ाए जाएंगे और श्रम मंत्रालय तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।
1: 2019 के आखिर

0: देश में मेट्रो एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई थी और तब से ये मॉरिशस में सार्वजनिक परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर रोज हजारों यात्री इस आधुनिक और तेज परिवहन साधन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके सुचारू संचालन के पीछे कई टीमें नियमों के पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत रहती हैं। जहां इंस्पेक्टर्स की टीम टिकट को लेकर नियमों का ध्यान रखती है, वहीं इंजीनियर्स ट्रेनों, रेल और अन्य मूल ढांचों की नियमित जांच करते हैं। साथ ही जनता की बेहतर सुरक्षा के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। ये रिपोर्ट निर्मा नारायण रेड्डी की है, विस्तार अभी उदोई के साथ।
1: जमीन पर कई पेशेवर मेट्रो एक्सप्रेस के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करते हैं। इनमें प्रतीक्षा तिलक का जैसी ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर शामिल हैं, जो पिछले 5 वर्षों से वाक्वा में काम कर रही हैं। वह टिकट, एमिकॉर्ड और माइटी मनी के जरिए किए गए भुगतानों की जांच करती हैं। इस टीम में लगभग 30 टिकट इंस्पेक्टर हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं। उनका कहना है,
2: on a ben différents micros de site qui nous vérifient et ben passager a resté dès la ligne jaune le matin comme un
1: अलग-अलग प्रकार के एमिकॉर्ड की जांच की जाती है। सभी यात्री येलो लाइन के पीछे रहते हैं। सुबह को जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया तो मैंने इस व्यक्ति से मुलाकात की और उनके पास टिकट नहीं थी। मेट्रो एक्सप्रेस की सुरक्षा और विश्वसनीयता इंजीनियरों पर भी निर्भर करती है। पिछले 5 साल से इंजीनियर के रूप में कार्यरत तिरन्ना कुमार सुमाहो बताते हैं कि अगले दिन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में हर सुबह और सेवा समाप्त होने के बाद शाम को मेंटेनेंस यानी कि रखरखाव का काम किया जाता है, ताकि पटरियों, ट्रेनों और बुनियादी ढांचे की जांच की जा सके। उनका कहना है,
3: tous les jours et la maintenance, on fait normalement maintenance qui nous fait pendant la journée et pendant la nuit aussi.
1: प्रतिदिन मेंटेनेंस के काम किए जाते हैं दिन और रात के दौरान, अतः ट्रेन का मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर ट्रेन में कोई भी कमी या फिर तकनीकी समस्या पैदा होती है तो कई टीमों की ओर हस्तक्षेप किए जाते हैं। ट्रेन कैप्टन एंडर्स अंचगास बताते हैं कि हर सेवा से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और सिस्टम की जांच की जाती है। उन्होंने पीक आवर्स यानी कि सुबह के 7 बजे से 9 बजे और शाम के 4 से 6 बजे के बीच यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया, जिसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना है, सबसे पहले ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर को सूचित किया जाता है, तब वो पुलिस को फोन करेगा। इन टीमों की बदौलत मेट्रो एक्सप्रेस से देश के शहरों में एक आधुनिक, विश्वसनीय और सुरक्षित सेवा प्रदान करना जारी रखे हुए है।
0: और सऊदी अरब में मौजूद 1500 मर्शन हाजी कल रात 12 बजे से मक्का से रवाना होकर मीना शहर गए हैं, जहां आज वे पूरा दिन गुजारेंगे। हज की अदायगी में मीना पहला मरहला है। इस साल दुनिया भर से करीब 2 मिलियन हाजी इस्लाम का ये 5वां फ़र्ज अदा कर रहे हैं। कल मंगलवार सबसे अहम दिन है, यौम अरफात में, जहां सभी हाजी मैदानी अरफात में जमा होंगे। हज मिशन के मुताबिक सभी तैयारियां की जा चुकी हैं, ताकि ये हज मॉरिशन हाजियों के लिए यादगार रहे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए टैक्स की दर 15% से घटाकर 3% करना, भावी राष्ट्रीय बजट के लिए ये मॉरिशस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार के समक्ष रखे गए सबसे साहसी प्रस्तावों में से एक है। ऑपरेशंस प्रमुख सैमुएल मोजों का मानना है कि ये मांग उचित है और ये MMA का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि उनके अनुसार औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं, इसलिए व्यवसायों को नवाचार और आधुनिकता के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। वे मानते हैं कि इस तरह के साहसी कदमों के मिले जुले प्रभाव आखिर में अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित होंगे।

0: डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से मॉरिशस अपने तकनीकी परिवर्तन को गति दे रहा है। इस राष्ट्रीय रणनीति का मकसद है देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुव्यवस्थित करना। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के अनुसार हाल के महीनों में फिनटेक का तेजी से विकास हुआ है और मोबाइल माध्यम से पेमेंट का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा है। स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के वास्ते बैंक ऑफ मॉरिशस के सहयोग से बुनियादी मूल ढांचे मजबूत करने और वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आईसीटी मंत्री के बयान पर अभी उदय को सुनते हैं।
1: मंत्री अविनाश राम तोहर ने कहा, हम ये सब कर रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, आईसीटी सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ा सके, इसके लिए एक बार फिर से ये अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण है। 2025 में कहा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, सरकारी कार्यक्रम में आईसीटी ब्लूप्रिंट में कहा गया था, उल्लेख किया गया था कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन में आईसीटी डिजिटल ब्रिज होगा। यही हमारा मिशन है, इसी पर कार्य कर रहे हैं।
2: Towards economic reconstruction, c'est ça nos missions et c'est sur ça que nous travaillons.
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। इसके साथ जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि ये क्रांति है या मानवता के लिए एक खतरा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने आज और कल फ्रांसीसी दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मोरिस के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता फ्रांस के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विशेषज्ञ, खोजकर्ता और साहित्यकार अलेक्जेंड्र गेफेन होंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस, रेनियन, फ्रांस, भारत, यूके और रोमानिया सहित करीब 20 देशों के साहित्य और अनुवाद विशेषज्ञ तथा शोधकर्ता एकत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, उत्तरी चीन में कोयले की एक खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। ये पिछले 2009 से पेश आया सबसे बदतर गैस धमाका है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लापता हुए लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जाएंगे। खदान के अंदर इंफ्रारेड कैमरे और रोबोट्स भेजे गए हैं। पाकिस्तान में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका पश्चिमी बलूचिस्तान इलाके में पेश आया। अलगाववादी गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आखिर में चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है जो आज दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। उधर स्थिर बादलों के झुंड का असर भी हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह रह रहकर बारिश होती रहेगी और खासकर पूर्वी, दक्षिणी तथा सेंट्रल प्लेटो वाली इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद और रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी तथा इनका असर पश्चिमी, दक्षिणी लगूनों और साहिली इलाकों पर भी पड़ेगा, खासकर हाई टाइड के दौरान। इसलिए मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों और आम जनता से ऊंचे समंदर तथा इन लगूनों और तटीय इलाकों में भी न जाने की सलाह दी जाती है, जबकि देर दोपहर बाद समंदर की स्थिति बेहतर होगी। तापमान सरल प्लाटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 27 से

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर 5.3% तक पहुंच सकती है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी चीन में कोयले के खान में हुए धमाके में कम से कम 82 लोगों की मौत। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फिजन हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 22 सेंट फ्रांसवा जावियर पोर्ट लुइस में, एक 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की मिसेस नाजमा बी कुवर मलू, पैदाशी नाम कुवर, जो नाजमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:15 बजे के मकान नंबर 22 सेंट फ्रांसवा जावियर पोर्ट लुइस से उठा कर पहले नमाजी जनाजा के लिए रिश्ते की सैयदीमा गुसल आज़म मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 9:15। रामा रोड शामुनी में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री बसंत तैयब, जो मोती नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री सत्यन तैयब के मकान रामा रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बिरला रोड कोतेज में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पुष्मावती लक्ष्मण रॉय, पिताशी नाम बीचू, जो गीता नाम से ज़्यादा जानी जाते थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री किरण बिचू के मकान बिरला रोड कोतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काहो मौत है पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड रिवियर दे क्रियोल में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राजवंती बंधु, पैदाशी नाम दूचुआ, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री राजीव बंधु के मकान महात्मा गांधी रोड रिवियर दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पॉइंट फोक्यूस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडिया 3 PM। रॉयल रोड रिवियर डू पोस्ट में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड श्री लालमन जीमिला, जो रोशन मंगोल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके भाई श्री मयूर जीमिला के मकान रोड रिवियर जो पर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डी 1 PM। सीनफात मेलविल गोंगोब में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दिव्यांती जीवन, जो तारा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे के मकान सीनफात मेलविल गोंगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाउची

पिच आफ शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रू मिशन टू दी एट 1:30 PM जागीसा लेन गोकायुमी जागीसा लेन गोकायुमी 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री लाल चंद सुनान की मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थ आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री आकाश सुना के मकान जागीसा लेन गोकायु से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछित खिबिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे 8:01 PM अवेन्यूसमान सैंपल फिनिक्स में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती द्रुपति गोबिन पैदाशी नाम उलाश जो श्रीमती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थी आज दिन के एक बजे के बेटे श्री सुदेश गोबिन के मकान अवेन्यूसमान सैंपल फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे 8:01 PM गंगादू लेन अपवेल में 47 साल की 47 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अल्विना गंगादू पैदाशी नाम अपादू जो अल्विना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे के पति श्री सुबी गंगादू के मकान गंगादू लेन अपवेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो वुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टूडे 8:09 AM कन्हाई लेन लाफ्लोरा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती नेलावती सुरुजबाली महादेव जो रीता नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे इनके बेटे श्री उमेश महादेव के मकान कन्हाई लेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गाँव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे 8:10 AM गाँव बाफों लाल माटी में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती हेवंती देवधारी पैदाशी नाम जोगी जो पार्वती रानी तकुराइन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थी आज दिन के दस बजे के बेटे श्री प्रकाश देवधारी के मकान गाँव बाफों लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लाल माटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे 8:10 AM नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथोबोन में 96 साल के 96 ईयर्स ओल्ड श्री देवदत्त गोखुल जो तो गौसों नाम से ज़रा जानी जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थी आज दिन के दस बजे इनके मकान नंबर 12 वेलिंगटन एवेन्यू कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माँ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे 8:10 AM लातापी रोड बोनाकोय में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री सूरज आनंद घुमारिया जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और नेशनल ऑडिट ऑफिस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थे की मृत्यु हो गई है। आज दिन के ग्यारह बजे की पत्नी श्रीमती सुनीता घुमारिया के मकान लातापी रोड बोनाकोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 8:11 AM श्वाजी बेजुकाप में 40 साल के 40 ईयर्स ओल्ड श्री अजीव हारी जो दावा नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थी आज दिन के ग्यारह बजे की माँ श्रीमती संतबाई इतू के मकान श्वाजी बेजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमत है बेजुकाप की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडे 8:11 AM उत्तम जगन रोड कौदे पेशर ग्रानी व साउथ ईस्ट में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री मनोज फूरा जो जीतन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। क्या अर्थी आज दिन के बारह बजे इनके मकान उत्तम जगन रोड कौदे पेशर ग्रानी व साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले

0: जाया जाएगी क्रिमिशन टुडे एट नून। रॉयल रोड एक्वायर में, रॉयल रोड एक्वायर में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री दयादत्त राजवंती, श्री दयादत्त राजवंती जो रमेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुनीता राजवंती के मकान रॉयल रोड एक्वायर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। वन शक्ति माता स्ट्रीट पेचीबेलिया में, वन शक्ति माता मंदिर स्ट्रीट पेचीबेलिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती देवंती देवलाल, श्रीमती देवंती देवलाल पैदाशी नाम पूरन जो माताजी देवी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे, इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री बिसुनदयाल देवलाल के मकान वन शक्ति माता मंदिर स्ट्रीट पेचीबेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेचीबेलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इंग्लैंड में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री राजीव कुमार गोपाल, श्री राजीव कुमार गोपाल जो राजीव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले HSBC में मैनेजर थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं कि इनका अंतिम संस्कार बुधवार 27 मई को दिन के 3:30 बजे इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
3: RM2.
1: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
3: Feel the Musti.
4: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir l'ascense des grands gagnants pour un pot d'étiquette Sakane pour un Helicopter Joyride exceptionnel dans Région Sidis, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé votre compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
5: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.
6: Good morning, bonjour. सुबह के 7:05 हुए हैं।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग बोंजू, 7:10 हो चुके हैं दोस्तों। भाई देखो, ऐसा है कि मंडे जो होता है ना, उसको वेलकम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हाय रे फिर से मंडे आ गया, और एक होता है हाय मंडे आ गया अपने सपनों को पूरा करने का, अपने कामों को पूरा करने का। तो बस ये आपको देखना है कि आज का मंडे और पूरा वीक आपने कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हम बहुत सारी गेम्स लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत सारे इन्जॉयमेंट लेकर आए हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने लेकर आए हैं। बस आपको देखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है RM2 रेडियो मस्ती के साथ, और हमें मैसेजेस करते रहना है। जब भी हम कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछें या कोई आपके साथ गेम के लिए, आपको मैसेज करना है 5499-1294 पर। तब तक इंजॉय कीजिए आपका ये प्यारा सा गाना।
0: मॉर्निंग बीट, ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: bonne ziwa lam chéda. Il faut blen, nous gagnons coup beaucoup plus.
1: L'habitude qui jamais pousse en zé, mon tea time avec Formblend.
0: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
1: Et comme au son petit travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formblend.
0: Mmh, ou fais-moi faire.
1: Astère avec Formblend Hot Chocolate, la vie encore plus tamame. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
0: Astère avec Formblend, nous gagnons encore beaucoup plus.
1: Formblend, ça même nous. Smart choice.
2: A good beat for your morning show.
3: Come on.
2: RM2.
4: Radio Musty.
5: तो आर एम टू रेडियो मस्ती पर शुरू हो चुका है हमारा मज़ेदार फॉर्मलन गेम। तो भैया आपको जो ये हमारा सवाल है बहुत ही प्यारा सा बहुत ही सिंपल सा, अभी जो आपने आज सुना उसके अंदर उन्होंने तीन चीज़ें कही, आपको हमें बतानी थी वो तीन चीज़ें कि वो क्या है, वो किस तरीके से कहा जा रहा है। तो अगर आप जीत सकते हैं फॉर्मलैंड फैमिली सीरियल, फॉर्मलैंड हॉट चॉकलेट, फॉर्मलैंड मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग जीत सकते हैं। तो बस देर मत कीजिए, हमें आप कॉल कर सकते हैं 5499129 4 पर और बता सकते हैं कि उसमें उन्होंने किस तरीके से फार्मलैंड की बात की। बहुत ही सिंपल सी बात थी, बस आपने हमें बताना है 5499129 4 पर। तब तक एंजॉय कीजिए आपका ये सॉन्ग।

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: भाई RM2 रेडियो मस्ती के साथ आप खेल रहे हैं बहुत ही प्यारी सी गेम फार्मलैंड के साथ में। तो फार्मलैंड वाले आपको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स दे सकते हैं, बट तभी दे सकते हैं जब आप हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो अभी आपने ये टैगलाइन सुनी थी, उसके अंदर तीन चीज़ें थी। आपको मैं हिंदी में बताती हूँ कि बहुत ही सिंपल, आप उसके साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जो तीन टैगलाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विद द फार्म Farmland, there is so much more. Enjoy your choice with Farmland milk, family cereal, and hot chocolate, bringing even more goodness, choice, and value for everyone. Farmland, the smart choice. आपको मिल सकता है Farmland hot chocolate की तरफ से एक gift hamper, बहुत ही प्यारा सा, उसके साथ exclusive mug मिल सकता है, milk powder मिल सकता है, and family cereal का एक big hamper मिल सकता है, जो आपको लेकर आना है अपने ID card से, तभी आपको मिलेगा। पर आपको बताना है call करके 549912 94 पर कि उस टैगलाइन में क्या कहा गया था।
2: RM2 रेडियो मस्ती
0: हिट म्यूजिक ओनली
4: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, क्या बात है, इतनी सारी मैसेजेस, इतनी सारी है। बस मैं तो कह रही हूँ कि सारों को ही विनर बना दो, पर हमें चूज तो करना पड़ता है एक विनर। तो भाई हमारे साथ है नीतू। हाय नीतू,
3: गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे सवाल क्या था, काफी इंटरेस्टिंग था।
2: यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, हमने रखा ही कॉम्प्लिकेटेड था।
3: अच्छा, और क्या पूछा था आपने?
2: क्वेश्चन तो आपको ही पता है।
3: अच्छा जी, मेरे से पूछ रहे हैं। ओके, आपने कहा था कि एक टैगलाइन है, जो वॉइसिंग हमने सुनी थी, जो टैगलाइंस है तीन थे उसमें, बस हमारे लिसनर्स को ध्यान से सुनकर सही जवाब भेजना था। और सही जवाब था विद फॉर्मलेन ली अंको प्लीज सैप अंको प्लीज प्रिपरेशन अंको प्लीज गुमा जी, बस गुमा। और ये ही सही जवाब था। और सही जवाब किसने दिया है
2: भाई? हमारे विनर जो बनी है, हम लोग अभी ढूंढ लेते हैं विनर का नाम भी। हमारी विनर बनी है, हमारी विनर बनी है सुनुकुरा मोक्षदा। भाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, आपको गिफ्ट हैम्पर मिलता है। यस
3: यस, सो कांग्रेचुलेशंस माय डियर फ्रेंड, एंड आपको मिलता है, यू आर विनिंग अ स्पेशल फार्मलैंड गिफ्ट हैम्पर कंसिस्टिंग ऑफ फार्मलैंड हॉट चॉकलेट, फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फार्मलैंड मिल्क पाउडर एंड वन एक्सक्लूसिव मग, जो आपको कलेक्ट करना है एट दी MBC, वो भी अपने ID के साथ है। ID कार्ड नहीं है तो नो कादो आपको मिलेगा। सो मंडे टू फ्राइडे तक आप आ सकते हैं, सुबह 9 से 3 बजे के बीच विद योर ID, और आप अपने जो गिफ्ट हैम्पर है कलेक्ट कर सकती हैं। सो नाउ विद फार्मलैंड देयर सो मच मोर, यू कैन एंजॉय मोर चॉइस विद फार्मलैंड मिल्क फैमिली सीरियल एंड हॉट चॉकलेट, ब्रिंगिंग इवन मोर गुडनेस चॉइस एंड वैल्यू फॉर एवरीवन। फार्मलैंड द स्मार्ट चॉइस, एंजॉय योर डेलिशियस ट्रीट्स विद योर फैमिली।
4: कम से वाला मशीना एक फार्मलैंड नु गयों को बूकू प्लीज।
1: RM2
5: Radio Musti feels a Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, आज हमारे बीच में आज किसी का बर्थडे है, तो चलिए हम उनको लेते हैं लाइव पर और जानते हैं कि आज उनका बर्थडे कैसे मन रहा है। वेट, हेलो हेलो हेलो, ओके शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही है, बट कोई बात नहीं, हम उनके लिए एक प्यारा सा गाना चलाते हैं और हम विश करते हैं कि आज उनका बर्थडे, यानी कि किसका बर्थडे था आज, है ज्योति रामधन जी का और उनकी बेटी लोना बेटा सुशील रामधन उनको विश कर रहे हैं और लोलो हाइपर की तरफ से उनको मिल रहा है गिफ्ट वाउचर एक प्यारा सा, तो बस आप कलेक्ट कर सकते हैं और इन्जॉय कीजिए आपका बर्थडे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, आपके बर्थडे के लिए बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां आप सबको।
3: Yeah baby girl, I've been watching you for a while. What's your name? Wanna go out?
4: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu baignes dans parfum? Tu l'auto aussi baignes dans parfum? Tu sales des bains si baignes dans parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Puis toi l'im sandale 24-7 toi?
5: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fais que t'es beau que celle-là.
4: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fresh dans ton poste mon sport tout.
5: Vrai même te bien comique toi. Hein? Allez essaye tout. Allo kick, peine ce deuxième sans bosser.
6: Allo kick, freshness anytime, anywhere.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
0: Sports Live reporters on RM2. Live.
3: Radio Musti, aapke kareeb.
0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
4: चलिए चलते हैं सीधा स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए हमारे गुरु स्पोर्ट्स गुरु अरविंद जी के पास।
5: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 का द एंड। आर्सेनल चैंपियन बना, लीग टाइटल 22 साल बाद। चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुए मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एस्टन विला और लिवरपूल। यूरोपा लीग स्पॉट बोर्नमुथ और सन्डरलैंड के लिए और ब्राइटन कॉन्फ्रेंस लीग में होगा। और टोटनहम हॉटस्पर बच गया, पर अफसोस वेस्टहम यूनाइटेड को प्रीमियर लीग को अलविदा कहना पड़ा। वैसे कल अलविदा कहने वाले अनेक थे, मोहम्मद सलाह, एंडी रॉबर्टसन और पेप गार्डियोला। कल के मैचों में क्रिस्टल

पैलेस 1 आर्सेनल 2। अगले हफ्ते में यूरोपियन फाइनल के कारण दोनों टीमों में काफी बदलाव लाए गए, अनेक खिलाड़ी आराम कर रहे थे। आर्सेनल का युवा खिलाड़ी मार्कस डोमन, जो टाइटल जीतने के बाद आज स्कूल जाएगा, प्रीमियर लीग में एक मैच में शुरू से खेलने वाला सबसे जवान खिलाड़ी बना। गोल गैब्रियल जेसस और नोनी माडुएके की ओर से, जबकि क्रिस्टल पैलेस का गोल मातेता ने स्कोर किया। आर्सेनल को प्रीमियर लीग ट्रॉफी दी गई। अब क्रिस्टल पैलेस के लिए कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल बुधवार को और आर्सेनल के लिए चैंपियंस लीग फाइनल सैटरडे को, शनिवार को पारी सैं जर्मे के खिलाफ। ब्राइटन 0 मैनचेस्टर यूनाइटेड 3, दोगु एम्बुमो और फर्नांडेज का एक एक गोल माइकल कारिक के लिए परमानेंट मैनेजर बनने का तोहफा। प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन ब्रूनो फर्नांडेज के लिए प्रीमियर लीग असिस्ट का ऑल टाइम रिकॉर्ड। हार के बावजूद ब्राइटन के लिए ब्राइट सीजन। ब्राइटन अगले सीजन खेलेगा कॉन्फ्रेंस लीग में। बर्नले 1 वुल्व्स 1 रिलेगेट हुई दोनों टीमों को का ड्रॉ मैच। प्रीमियर लीग को बाय बाय। फुलहम 2 न्यूकासल यूनाइटेड 0। लिवरपूल ने अपना मैच ड्रॉ किया 1-1 ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ। मोहम्मद सलाह के पास पर जोन्स का गोल। मोहम्मद सलाह का फेयरवेल मैच रहा एंडी रॉबर्टसन का भी। इस ड्रॉ से लिवरपूल अगले सीजन के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई। इमोशनल नाइट एनफील्ड रोड में, बहुत आंसू बहे खासकर इजिप्शियन किंग मोहम्मद सलाह के लिए, गॉड ऑफ ऑनर सलाह और रॉबर्टसन के लिए। मैनचेस्टर सिटी की हार। मैनचेस्टर सिटी 1 एस्टन विला 2। पेप गोजोला का आखिरी मैच सिटी के साथ। एंटोन सेमेन्यू का गोल रहा, फिर विला के लिए ओली वाटकिंस का डबल। 593 मैचों के बाद पेप गोजोला सिटी को छोड़ रहा है। सिटी के लिए 20 ट्रॉफीज जीत पाया। सिटी के कप्तान बर्नार्डो सिल्वा को भी अलविदा कहा गया। नॉटिंघम फॉरेस्ट 1 बोर्नमुथ 1। इस ड्रॉ के साथ बोर्नमुथ की टीम यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई। अगर एस्टन विला की हार होती और लिवरपूल की जीत, तब बोर्नमुथ अपना मैच जीतकर चैंपियंस लीग टिकट ले पाता, पर ऐसा नहीं हुआ तो अब यूरोपा लीग टिकट से खुश। ऐतिहासिक यूरोपियन क्वालिफिकेशन। मैनेजर एंटोनी इराओला का फेयरवेल मैच दी चेरीज के साथ। संडरलैंड 2 चेल्सी 1। संडरलैंड यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई, जबकि चेल्सी यूरोप में नहीं खेलेगा अगले सीजन। टोटनहम हॉटस्पर 1 एवर्टन 0। पालहिना का गोल। रिलेगेशन से बचने के लिए केवल एक अंक चाहिए था। सोने पे सुहागा जीत के साथ स्पर्स बच गए, पर वेस्ट हैम यूनाइटेड नहीं बच पाया। लीड्स पर 3-0 की जीत के बावजूद दी हैमर्स रिलेगेट हो गए। अगले सीजन चैंपियनशिप में खेलेंगे बर्नले और वुल्व्स के साथ। इसी के साथ प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 पूरा हुआ। प्रीमियर लीग टाइटल आर्सेनल के नाम, वो भी 22 साल बाद। पेप गोजोला और मोहम्मद सलाह प्रीमियर लीग के दो लेजेंड जा रहे हैं। माइकल कारिक के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिवाइवल, पुनः जागरण और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। खराब सीजन लिवरपूल के लिए, पर जैसे तैसे चैंपियंस लीग में जा पाए द रेड्स। एस्टन विला का ड्रीम सीजन, यूरोपा लीग चैंपियन और चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। बोर्नमुथ, संडरलैंड और ब्राइटन यूरोप के लिए क्वालिफाई हुए। वेस्ट हैम यूनाइटेड, वुल्व्स और बर्नले रिलेगेट हुए। ब्रूनो फर्नांडेज के लिए गोल असिस्ट रिकॉर्ड और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। आर्सेनल का गोलकीपर गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अर्लिंग हालैंड टॉप स्कोरर। अब 22 अगस्त को 22 अगस्त को प्रीमियर लीग की वापसी होगी, मतलब वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद 33 दिन बाद, 33 डे रेस्ट पीरियड। लीग वन प्रमोशन प्ले ऑफ में बोल्टन ने 4-1 से स्टॉकपोर्ट को हराया। बोल्टन अब लीग चैंपियनशिप में होगा। स्पेन के ला लीगा में एक मैच था, विलारियल ने 5-1 से एटलेटिको मैड्रिड को हराया। इटली के सेरी आ के मैच कल खेले गए, आखिरी मैच। पाउमा 1 सासुओलो 0, नापोली 1 उडिनीजे 0। एसी मिलान की हार, कागलियारी ने उसे 2-1 से हराया। कोमो ने क्रिमोनेजे को 4-1 से हराया। वेरोना 0 एएस रोमा 2, लेचे 1 जेनोआ 0, टोरिनो 2 यूवेंटुस 2। इस प्रकार इंटर मिलान चैंपियन, नापोली एएस रोमा और कोमो

0: चैंपियंस लीग में, एसी मिलान यूवेंटुस यूरोपा लीग में, अटलांटा कॉन्फ्रेंस लीग में। फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के कैनेडियन ग्रैंड प्री में अंटोनेली की जीत मर्सिडीज का उसका साथी जॉर्ज रसेल लैप 30 में रुक गया, तब जाकर अंटोनेली की जीत हुई। ये अंटोनेली की चौथी जीत है, फोर्थ विन। टेनिस, फ्रेंच ओपन के फर्स्ट राउंड में ही एमा रादुकानू की हार हुई। अर्जेंटीना की सुलाना सियेरा ने रादुकानू को हराया। कल बेंसिच, वेरेज, अंद्रीवा, जोकोविच, कचानोव, बाचिस्ट, मेंसिच जैसे खिलाड़ी जीत पाए। क्रिकेट, आईपीएल 2026 का ग्रुप स्टेज पूरा हुआ। प्लेऑफ का आखिरी स्पॉट राजस्थान रॉयल्स जीत गया मुंबई इंडियंस को हराकर। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी केवल 4 रन पर आउट हुआ। जोफ्रा आर्चर के ऑलराउंड परफॉर्मेंस से राजस्थान की जीत हुई। अब पहला क्वालिफायर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच, 26 मई को खेला जाएगा, जो जीतेगा फाइनल में। फिर एलिमिनेटर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो जीतेगा सेमीफाइनल में, जो हारेगा आउट। फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वैसे कल दिल्ली कैपिटल्स की भी जीत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 समाप्त। आर्सेनल चैंपियन, जैसे तैसे लिवरपूल चैंपियंस लीग में पहुंच पाया। टोटनहम हॉटस्पर बच गया, पर वेस्ट हैम यूनाइटेड रिलेगेट हो गया। जिंदगी की रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है, पर फुटबॉल के बारे में हार और जीत हो तो आपको बताते रहेंगे। वेटिंग फॉर द चैंपियंस लीग फाइनल एंड डोंट फॉरगेट द वर्ल्ड कप 2026 बहुत जल्द। इस पर आपको अपडेट्स देंगे सर है 8 बजे ऑन RN2। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक।
1: थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू फॉर द अपडेट्स।
2: Méga promo code quality déco. Tiles 30 pour 30. Méga deal, low tiles 60 pour 60. Super sales, low granite et quartz. Puis cassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: sont nécessaires à l'école. Et puis, Blue Ben apporte ce petit goût en plus qui fait toute la différence.
1: Blue Ben fait toute la différence dans vos repas. Tartinés, cuire ou nappés, Blue Ben apporte les nutriments essentiels pour la croissance de vos enfants.
2: Blue Ben, a spoonful of nutrition. Man
3: Jubin Nautiyal. Live in Mauritius on Saturday, 30th of May. At SVICC Pi, winner of the Best Singer Award of 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
4: Prendre soin de soi, ce n'est pas forcément se priver. C'est simplement choisir ce qu'il y a de plus bon pour notre corps. Parce que votre bien-être nous tient à cœur, Flora puise dans la nature toute la pureté de sa margarine savoureuse. Naturellement riche en oméga 3 et 6 et en vitamines, Flora veille chaque jour sur votre précieux cœur. C'est un petit geste simple, sain, pour vous sentir bien, tout simplement. Flora, quoi qu'il arrive, protégez votre cœur.
5: Tech Mag, powered by 365.
6: Bien plus encore.
7: Google is preparing what could be one of the biggest changes ever made to internet search, and the goal is surprisingly simple, helping people search less themselves. The company has unveiled new artificial intelligence features capable of searching, tracking, and even researching information automatically on behalf of users. Instead of simply typing short keywords, users will now be able to ask longer, more natural questions, almost like having a conversation with an AI assistant. One of the biggest changes is the arrival of AI agents that can monitor tasks over time. For example, users could ask the system to track apartment listings, follow product launches, or alert them when their favorite athletes release new collaborations. Google is also introducing a feature capable of working in the background autonomously, even when a laptop is closed or a phone is locked. The shift shows how quickly traditional internet search is evolving into something closer to a personal AI assistant. But experts say the technology still faces one major challenge: reliability. While AI agents are becoming more powerful, companies are still trying to ensure they can complete tasks accurately without constant human supervision.
5: Tech Mag was powered by
6: 365. Bien plus encore.
8: RM2 Radio Musti.
3: The time is brought to you by
9: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
10: North, South,
11: 103.5.
10: East, West,
11: 96.4.
10: Center,
11: 99.4.
12: RM2
8: Radio Musti.
12: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
10: Radio Musti.
12: Feel the Musti.
13: Later. और विशेषज्ञ लोग के ये मानना है कि यावत एक आध महीना के दौरान दाम बढ़ ही सकी, परिणाम स्वरूप खरीद शक्ति कमती हो और परिवार लोग पहले के तुलना में समान वेतन से कमती चीज जकी नहीं सकी अंजाई अध्ययन में हर दूगो जना में से एगो व्यक्ति के ये मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थिति के कारण देश में इन्फ्लेशन के वर्तमान स्तर बहुत ही ऊंचा है, जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के अध्ययन में आर्थिक ऑपरेटर लोग दावा कर ले बन जा कि दिसंबर 2026 ले इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% पर ही पहुंच सकी। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान के एक नवा चरण शुरू हुआ था, जे ई बरिस के नवंबर महीना के आखिर ले चली। ई पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के है। भले ही ठंडा के मौसम में देश में ऊर्जा की मांग गर्मी की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कमती रहेला, फिर भी जागरूकता पर ही बल देवल जाता, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थिरता के कारण जहाँ पर ईंधन की आपूर्ति में बाधा आवता। ऋतु विज्ञान केंद्र आज फजर के मॉरिशस खातिर ऊंचा लहर की चेतावनी जारी कर ले बटे, जे आज दिन के 12 बजे तक लेबर करार रही। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंचा लहर उठे सकी, जकर असर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाका पर भी पड़े सकी। एक खातिर से मछुआरा लोग, समुद्री गतिविधि में संलग्न ऑपरेटर लोग और

0: आम जनता से दूर समंदर में नहीं निकले के और इस सब तटीय इलाका में सावधानी बरते की मांग करल जाता। मंत्रिमंडल मोटका पानी की स्थिति में देश में लागू करल जाए होला गो राष्ट्रीय प्रोटोकॉल खातिर मंजूरी देले बाटे। कर अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होए के संगे ही निजी क्षेत्र के कर्मचारी लोग के काम पर ही जाए की अनिवार्यता नहीं रही। आज जो लोग पहले से ही नौकरी स्थल पर ही मौजूद रही अंजा तो लोग के घर वापस जाए के अनुमति रही। हबी ले ई कदम खातिर मौसम विभाग देने से जारी करल जाए होला चेतावनी पर्याप्त नहीं रहल आर मोटका पानी के स्थिति में कंपनी लोग के क्राइसिस कमिटी के कम्युनिके के इंतजार करे के परत रहल। श्रम मंत्रालय आर श्रमिक संघ लोग के अनुसार ई फैसला से नौकरी क्षेत्र में एगो अन्याय के सुधारल गल है। सऊदी अरब में मौजूद 1500 गुमरिशन हाजी लोग कल रात के मक्का से निकल के मीना शहर में गल हवन जा जहां परी आज के पूरा दिन उ लोग हुए परी बितैयन जा। हज के अदायगी खातिर मीना पहला मरहला है। ई बरिस के दुनिया भर से करीब 2 मिलियन हाजी लोग इस्लाम की पांचवा फर्ज अदा करे खातिर गल हवन जा। काल मंगर के सबसे अहम दिन रही यौम अरफात जहां सब हाजी लोग मैदानी अरफात में जमा हो जा। हज के मिशन के मुताबिक सब तैयारी पूरा करल गल है जेमे ई हज यात्रा मर्शन हाजी लोग खातिर यादगार रही। दूसर देश के खबर में उत्तरी चीन में कोयला के गो खदान में होल धमाका से कम 82 जना की मौत होल बाटे और अन्य कई जना लापता होल बाटे। और उधर पाकिस्तान में सैनिक लोग के ले जावे होला एगो ट्रेन के निशाना बना के को हमला करल गल है। कम से कम 20 जना की मौत होल बा। तई रहल भोजपुरी के समाचार तो हर ध्यान खाते धन्यवाद।
1: NBC Radio.TV. RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:09 हो चुके हैं दोस्तों, मंडे का प्यारा सा दिन, 25 मई प्यारा सा दिन। तो चलिए भाई जानते हैं मौसम का हाल।
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: आम हालत मॉरिशस के लिए आज सुबह ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है, जो दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य से ठंड और तेज हवाएं चल रही हैं, और उधर कुछ अस्थिर बादलों का असर भी हमारे इलाके पर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह के दौरान रह कर बारिश होगी। कुछ इलाकों, खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह कर बारिश तेज हो सकती है, और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। आज दोपहर बाद और रात के दौरान भी खासकर ऊंचाई वाले इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, जिनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ सकता है। इस कारण से मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों तथा आम जनता से समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है, और इन लगूनों में भी सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। जबकि दोपहर बाद से समंदर की स्थिति बेहतर होने लगेगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:35 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा।
0: Your weather forecast on RM2
1: Radio Musti.
5: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. La bouteille de Chandor Sparkling Drink à 209,95 € et le micro-ondes de 20 litres Midea à 2299,95 €. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papa, merci.
6: On est tous winners!
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
7: Radio Musti.
0: Hits music only.
7: Feels a musti.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: आठ बजकर 17 मिनट हो चुके हैं और मुझे पता है कई लोग इस समय ट्रैफिक में फंसे होंगे, पर गाड़ी आगे नहीं हिल रही होगी, बस सब आराम से बैठे होंगे। यही तो मॉरिशस की खूबसूरती है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजते, बस आरएम2 रेडियो मस्ती का वॉल्यूम बढ़ता है। आराम से चलिए, जहाँ पहुँचना है आराम से पहुँचेंगे, टेंशन किस बात के लिए नहीं, जब घर से निकल ही गए हैं रास्ता तो मिल ही जाएगा, तो इन्जॉय कीजिए, साथ में वॉल्यूम बढ़ाइए, ये गाना सुनिए तब तक।
1: RM2
3: Radio Musti feels a Musti.

0: De longues shifts commence par une bonne décision. Nescafé.
1: हर दिन खुश रहने की वजह नहीं मिलती, कभी कभी वजह खुद बनानी पड़ती है। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीख लीजिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी।
0: Avant le défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2. Radio Musti.

0: One more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
1: A good beat for your morning show. RM2,
2: Radio Musti.
3: 8:33 हो चुके हैं और अब टाइम है हमारी वर्ल्ड

0: ब्रेकअप का, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये सुनना।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर, वर्ल्ड कप 2026 काउंटडाउन जारी है। G-17 ग्रुप एल के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर इससे पहले बता दें कि यूरोप भर में मेजर लीग समाप्त हो गए हैं, अब काफी खिलाड़ी केवल तैयार होंगे वर्ल्ड कप की ओर जाने के लिए, अपनी टीम में अब ट्रेनिंग जारी। ग्रुप एल, इसे टफेस्ट हैवीवेट्स ग्रुप कहा जा रहा है, ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप ड्रामो। इसमें इंग्लैंड, क्रोएशिया, गाना और पनामा हैं। इंग्लैंड द थ्री लायंस हमेशा की तरह बहुत लोग फेवरेट टीम मानते हैं, इसका टैग लेकर ये लोग आगे आते हैं, पर केवल एक वर्ल्ड कप 1996 में, 16 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस, 2018 में सेमीफाइनल तक पहुंच पाए, 2022 में क्वार्टर फाइनल तक जा पाए और बैक टू बैक यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल। टोमास टुखेल की टीम में कप्तान है हैरी केन, लेजेंडरी स्ट्राइकर, बुंडेसलीगा का टॉप स्कोरर, शायद ये उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। स्क्वाड में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है, पिकफोर्ड, जूड बेलिंगहम, डेक्लन राइस, कोबी माइनू, बुकायो साका, ओली वाटकिंस आदि, इनके साथ बहुत हो सकता है। लेकिन क्रोएशिया है इस ग्रुप में। क्रोएशिया, इस देश में केवल 3.8 मिलियन लोग हैं, पर यूरोप और वर्ल्ड एलीट फुटबॉल पावर हाउस। वर्ल्ड कप में क्रोएशिया 3 बार मेडलिस्ट, 1998 में ब्रॉन्ज मेडल, टॉप स्कोरर था दाबो सुकेया, 2018 में फाइनलिस्ट लुका मोड्रिच के साथ गोल्डन जेनरेशन, फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था, फिर कतर 2022 में ब्रॉन्ज मेडल ब्राजील और मोरक्को को हराकर। इस टीम का माएस्ट्रो लुका मोड्रिच 40 साल का है, उसका 5वां वर्ल्ड कप अपीयरेंस। साथ में है मैनचेस्टर सिटी से मातियो कोवासिच, कोमो का मार्टिन बातुरिना, डिफेंडर यूस्को वाजोल, स्ट्राइकर इवान पेरिसिच और क्रोएशिया की टीम इंग्लैंड के लिए मेन चैलेंजर है इस ग्रुप में। गाना द ब्लैक स्टार्स फिफ्थ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, मैनेजर है पोर्टुगल का टैक्टिशियन कार्लोस क्विरोज, 2006 में राउंड ऑफ 16 में जा पाए, 2010 में क्वार्टर फाइनल, फिर 2014 और 2022 में ग्रुप स्टेज तक रही गाना की टीम। स्टार खिलाड़ियों में है वेस्टहैम यूनाइटेड का मोहम्मद कुदुस, अंतोन सेमेन्यू, इनाकी विलियम्स और टोमास पार्टी, गाना गाएंगे और बजाएंगे भी। और फाइनली पनामा, द लोस कनालेरोस, ओनली सेकेंड वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, कॉन्काकाफ क्वालिफिकेशन में टॉप पोजीशन। इसमें ज्यादातर यूएस के मेजर लीग सॉकर के खिलाड़ी हैं, अदालबेर्टो कारिस्किला, अनिबाल गोदो, योजे फायोदो, इस्माइल जाज, माइकल अमीर मुरिलो और नोविच का योजे कोर्डोबा। सो ग्रुप एल में इंग्लैंड, क्रोएशिया, गाना और पनामा। चलो वर्ल्ड कप की ओर, बचे हैं केवल 17 दिन, G-17।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भैया जिंदगी में गलतियां सबसे होती हैं और छोटी मोटी गलतियां तो होती रहनी चाहिए, फिर कैसे पता चलेगा कि हम कहां पे और कहां ठीक हो गए। तो भैया ये हमारे अरविंद जी जो हमारे स्पोर्ट्स गुरु हैं वो ये कहते हैं कि इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1966 में और यानी कि 86 में नहीं, तो ये भाई छोटी छोटी बातें हैं जो प्यार से आप लोग कहते हैं और हम सुन लेते हैं और हमारी तो यही बात होती है कि आप हमेशा हंसते रहें कहते रहें। तो इसके बाद बस थोड़ी सी ही सेकेंड्स के बाद हम एक गेम खेलने जा रहे हैं। अपने पास पेन और पेपर रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुबिन नौटियाल की बात चल रही है तो ये गाना आपके लिए चलेगा थोड़ी देर में, पर उसके साथ में पेन और पेपर रखिए, हम अभी आपके साथ हाजिर होने वाले हैं।
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Sa qualité dit là, 5000 roupies au flow Samsung Galaxy A37 et K57. En plus, 12 mois, zéro l'intérêt. Pas si ça. Prends-lui payé après 6 mois. Puis ça, 10 dans la case, maman, que 3 dizaines qui ou bougain ça. Eh oui, ça love Samsung Galaxy A37 et K57 là. Ou bougain les 10 dans 3 dizaines et le 3 dizaines.mu avec facilité crédit pour Sim Finance ou Rogers Capital. La case, maman, ça en l'autre même ça.
4: 3 dizaines. Bien plus encore.

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, जिसके लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे सभी लोग और बोल रहे थे कब शुरू करेंगे जुबिन नौटियाल की जो गेम है। तो चलिए भाई, रेडियो मस्ती आ गए आपके साथ आपको जिताने के लिए एक जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट मॉरिशस 2026 का प्लैटिनम टिकट आपको मिल सकता है। हाँ जी दोस्तों, लाइव कॉन्सर्ट जुबिन नौटियाल का जो कि आ रहे हैं इंडिया से मॉरिशस सुपर हिट सॉन्ग्स के साथ में, जो कि आज की डेट में सभी यंगस्टर्स हो या कोई भी किसी भी एज के लोगों के दिल के बस एक कहते ना एक हीरा बन चुके हैं। तो आपको हमारे को बताना है कि ये सवाल तो बड़ा छोटा सा है, पर हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि ये जो क्या कहते हैं जो गेम है, द गेम इज़ पावर्ड बाय ग्रेविटी ज़ीरो ticketbox.mu की तरफ से है। और आपको हमारे को सिर्फ ये बताना है कि जुबिन नौटियाल का जो प्रोग्राम है, जो कि कंसर्ट होगा, वो कौन सी डेट को होगा और कहाँ होगा। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आप जीत पाएंगे एक प्लैटिनम टिकट। और क्या कहते हैं, आपको फिर से हम बता सकते हैं कि ये आपको सिर्फ सिंपल यही बताना है 5491294 पर कि उनका जो कंसर्ट है वो कौन सी डेट को है और कहाँ है। तो ये जो गेम थी ये पावर्ड बाय ग्रेविटी ज़ीरो ticketbox.mu की तरफ से थी। तब तक हमें भेजिए और उनका फेवरेट गाना आप सुनिए। तब तक इंजॉय कीजिए आपका ये गाना
0: RM2
3: Radio Musti।

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, क्या बात है, इतना ज़्यादा प्यार जुबिन नौटियाल को। हाय रे, कोई हमें भी इतना प्यार दे दे। क्योंकि मैं कहती हूँ यहाँ पर तो स्क्रीन ही हिल चुकी है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस, और मुझे लगता है सभी को पता है, पूरे मॉरिशस को पता है कि यस वो कब आ रहे हैं ये लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए। तो हमने आपके साथ गेम खेली थी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी, और मुझे लगता है उसके आंसर सभी को पता थे, बट हमने वही चूज़ किया जिसने बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी दिया, डेट टाइम और उसके साथ अपना नाम और करेक्ट एड्रेस। तो चलिए भाई, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था और ये गेम जो खेली गई थी वो खेली गई थी ग्रेविटी जीरो टिकट बॉक्स .mu की तरफ से। एंड उसके हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जुबिन नौटियाल का जो लाइव कॉन्सर्ट है 2026 का, जिसमें आप जीत सकते हैं प्लैटिनम टिकट, हाँ वो दोस्तों कहाँ पर होने वाला है, और वो कहाँ होने वाला है तो आपने बता दिया कि SVICC, और 30 मई 2026 सैटरडे को शाम रात को कह लो 8 बजे होने वाला है। और आप सभी ने इसका आंसर तो दे दिया, और मुझे पता है कि आप सब इंतजार में बैठे हैं कि अब विनर कौन है। तो चलो भाई, इसको भी हम बहुत देर नहीं लगाएंगे, हम आपको विनर का नाम बताते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बहुत सारे जनों के सही थे, और मुझे पता है कि एक चीज तो हमने तो चूज करना है, एक ना विनर। तो चलिए बताते हैं आपको, क्या बात है, ये जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है उसके अंदर जब नाम आता है, आपको अपना सुनने को मिलता है, और जिसमें आपने प्लैटिनम क्या कहते हैं टिकट जीती है। अगर आपको भी किसी रिजर्वेशन करानी है अभी से, क्योंकि बहुत सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं टिकट्स, पर फिर भी आप हॉटलाइन पर कर सकते हैं 2146464 पर। और ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्रेविटी जीरो टिकट बॉक्स .mu की तरफ से। और अब आ गया भाई विनर का नाम, ले ली चलिए ले लेते हैं जी, अनीशा हरी जी, जो कि भ्रम स्थान से हैं। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने जीता है प्लैटिनम टिकट, क्या बात है। तो चलिए भाई, पूरे दिन खेलते रहिए हमारे साथ, 30 से यानी 29 तक हम आपके साथ में ही रहेंगे। अगर जिसको भी जुबिन नौटियाल का प्रोग्राम सुनना है या देखने जाना है लाइव, तो हमारे साथ जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ। हम आपके साथ, आपसे दूर नहीं है और बिल्कुल आपके साथ साथ चलने वाले हैं, आपके ही गानों के साथ। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये जुबिन नौटियाल का गाना।
1: RM2 Radio Musti.
0: Hit music only.
3: Radio Musti feels a Musti.

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: क्या बात है
3: आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर जीतने का मौका रॉजर्स कैपिटल की तरफ से आपको बताते हैं गेम इज पावर्ड बाय रॉजर्स कैपिटल और ये भी याद दिलाने की रॉजर्स कैपिटल होल्ड्स अ लाइसेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन तो आपके पास मौका है जीतने का वाउचर 1000 रुपए का डोमिनोज पिज्जा की तरफ से और आपके लिए आज का क्वेश्चन यही है कि ऑन विच एप्लीकेशन कैन यू मेक अ क्रेडिट परचेज एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजिए 5491294 पर और ये नाम 1000 रुपए का डोमिनोज पिज्जा की तरफ से हो सकता है आपके नाम जल्दी जल्दी फटाफट टाइम ज्यादा नहीं है
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे। अदिति नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। दुनिया के कई अन्य देशों की तरह मॉरिशस में भी इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों के दौरान कीमतें बढ़ती रहेंगी, परिणाम स्वरूप खरीद शक्ति कम होगी और परिवार पहले की तुलना में समान वेतन से कम चीज़ें खरीद पाएंगे। इस अध्ययन में हर दो व्यक्ति में से एक का मानना है कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में इन्फ्लेशन का वर्तमान स्तर ऊंचा है, जबकि बैंक ऑफ मॉरिशस के इस अध्ययन के आर्थिक ऑपरेटरों ने दावा किया है कि दिसंबर 2026 तक इन्फ्लेशन दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सीबी और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में ऊर्जा की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती हैं, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी और अगर वे पहले से ही नौकरी स्थल पर हैं तो वे घर लौट सकेंगे। अभी तक ऐसे कदम के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर्याप्त नहीं थी और भारी बारिश की स्थिति में कंपनियों को क्राइसिस कमेटी के कम्युनिकेट का इंतजार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघों के अनुसार इस फैसले से नौकरी क्षेत्र में एक अन्याय को सुधारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 70 अन्य जख्मी बताए गए हैं। धमाका पश्चिमी बलूचिस्तान इलाके में पेश आया। अलगाववादी गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey, back with the music. 9:07 और हम आजाद हैं. वीकेंड का हैंगओवर अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है और ऊपर से बारिश और ये ठंडी ठंडी हवा, लेकिन म्यूजिक बनकर आता है सामने जैसे कोई हो दवा. हाँ मजा आ गया. नहीं, मंडे की मॉर्निंग काफी चिल और ऐसे होता है कि कॉफी की खुशबू, बारिश की बूंदे और फिल्मी गाने कमाल की कॉम्बिनेशन बनी जाते हैं. इससे बेटर कमबैक और क्या हो सकता है. तो जैकेट निकालिए, स्माइल पहनिए और ट्रैफिक को करो बाय बाय, म्यूजिक को गले लगाएं और यूं ही चलते जाएं. बस तैयार हो जाए क्योंकि हाउस होल्ड टिप्स

0: डेकोरेशन टिप्स और साथ साथ में कुछ फिल्मी खबरें, अपनी बातें जारी, म्यूजिक की बारी। गुड मॉर्निंग
1: एरीज, मेष राशि।
0: भाई आपके लिए अच्छा रहेगा आज मौसम, और आपको बता दें कि जिंदगी काफी कमाल की चलने वाली है, लेकिन ये भी सच है कि जब हम बात करेंगे सभी की तो धीरे धीरे सबके साथ ही करेंगे एक एक करके। अभी के लिए साउंड गो ऑन विद दिस वन। अरे अभी भी स्नूज का बटन दबा रहे हो?

0: एरीज मेष राशि।
1: राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एरीज का बड़ा चल चल रहा है भाई। आपको बता दें कि अभी हम थोड़ी देर में राशियां लेके जरूर आएंगे, लेकिन साथ साथ में ये भी सच है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने दिल की जरूर सुनाएं। म्यूजिक के साथ साथ ये भी है कि वीकेंड के अंदर कुछ मूवीज रिलीज हुई, उसकी बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ लगे रहिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में कुछ और सिलसिले अपने जारी रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
0: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए साहब, अभी वक्त हो गया कि आपके सितारों की चाल जाने और शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
1: आज किस्मत आपके व्यापार और धन के दरवाजे खोलती नजर आ रही है। ट्रिन ट्रिन ओ जी वे वे नाइस। आमदनी बढ़ने से मन खुश रहेगा और लंबे समय से अटका पैसा भी अचानक वापस मिल सकता है। यदि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आर्थिक स्थिति और मजबूत बनेगी। आज लोग आपकी मदद के लिए खुद आगे आएंगे।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज के दिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज और आर्थिक तरक्की का संकेत दे रही हैं। आय बढ़ने के योग हैं और कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, यानी कि आप बिल्कुल तैयार हैं। वेरी गुड। स्टूडेंट है तो बेहतर शानदार दिन रहने वाला है। मेहनत का परिणाम उम्मीद से बेहतर मिल सकता है। मैनेजमेंट के साथ थोड़ी सी बहस हो सकती है, लेकिन अच्छी बात है, अपना व्यू पॉइंट आराम से रखिए। मिथुन राशि। आपका मन आराम, स्वादिष्ट भोजन और सुकून भरे पलों में डूबा रहेगा। सरकारी काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज आपके पक्ष में आ सकता है। ध्यान रखें, निजी बातों में किसी अनजान व्यक्ति की राय लेना नुकसान साबित हो सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज सितारे एक ही संदेश दे रहे हैं कि आप चमकेंगे, मुस्कुराएंगे। कामकाज में कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन धैर्य आपको संभाल लेगी। भाई, नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो बेहतर अवसर मिल सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण योजना भी बन सकती है।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे तो आज का दिन नई शुरुआत और जीत का एहसास कराने वाला है। धन और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे राहत की सांस आप ले पाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ मामले हैं जो लाभदारी उसके साबित हो सकते हैं। भीतर कुछ बड़ा और अलग करने की आग आग में दिखती है।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: व्यापार में थोड़ा उठा पटक देखने को मिल सकती है। किसी सहयोगी की बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन गुस्से की बजाय क्यों ना आराम से बैठकर समझदारी से काम ले। पिता द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है आपके भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है। पारिवारिक मामले में संतुलन बनाना ही ठीक होगा।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज के दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। उम्मीद के मुताबिक परिणाम ना मिले तो उदास ना हो। जल्दबाजी में क्या निवेश नुकसान दे सकता है, इसलिए हरदम सोच समझकर ही आगे अपना कदम बढ़ाएं। संतान की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है, उसके खान पान पर थोड़ा ध्यान।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज खुशियां हल्की हल्की बारिश जैसे भी हो रही है, टिप टिप, ऐसी कुछ मन को तरोताजा कर सकती है। कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुरानी गलतियों से मिली सीख आज आपके लिए बहुत काम आने वाली है। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज किसी अजनबी से ऐसे ही अपने दिल की बात कर सकते हैं, लेकिन वो सेंसिटिव वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंसान अच्छा है तो क्यों नहीं, ऐसे ही मिलना जुलना

0: तो ज़िंदगी में नियम है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए नुकसान पैदा कर सकता है, इसलिए सोच समझ कर। स्टूडेंट है तो मानसिक तनाव से आपको राहत मिल सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज के दिन सुख सुविधाओं और नए अवसरों में कुछ खलबली लेकर आ सकता है, यानी कि अवसर ही अवसर। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं और कानूनी मामले में लेकर हो सकता है थोड़ी सी चिंता हो, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज मन थोड़ा संतुलित जरूर रहेगा लेकिन साथ साथ में आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर महसूस हो रहा है। ऐसा करिए, वो करिए जो आपको अच्छा लगता है और उससे आपका आत्मविश्वास एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, माता जी की सेहत को लेकर चिंता और खर्च हो सकता है दोनों बढ़ सकते हैं। वैसे धीरे धीरे लाइफ स्टाइल बेहतर होता नजर आ रहा है। आज का दिन भागा दौड़ी और जिम्मेदारी से भरा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना रिश्तों में ना दूरी पैदा कर सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें। परिवार में यदि कोई विवाद है तो आप समझदारी से माहौल को समझा सकते हैं, संभाल सकते हैं। व्यवसाय को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी लेकिन आगे बढ़कर ही कुछ काम आप तय कर पाएंगे।
2: Your daily horoscope, RM2 Radio Musti. Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
1: Hits music only.
3: Feels a musti.

0: नहीं नहीं पॉसिबल है एक्चुअली एक हेलीकॉप्टर राइड तो डेफिनेटली पॉसिबल है
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: वही साहब जानते हैं कि पिछले हफ्ते से हमने शुरुआत कर दी है जहां पर आपको मौका दे रहे हैं टू गेट ऑन हेलीकॉप्टर एक कपल के लिए और ये सिलसिला बहुत ही आसान है बस आपको करना है कि MBC Play 1.0 डाउनलोड करना है उसके बाद जब साइन इन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है फ्रॉम MBC OTT बस उसका स्क्रीनशॉट लेना अपने मोबाइल पर और भेजना है एज अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 5499-1294 पर और फिर आपको हम डाल देंगे ड्रॉ के अंदर और उसके बाद एक इंसान जो शॉर्टलिस्ट होगा और दूसरा होगा उन दोनों को लेंगे हम आफ्टरनून शो के अंदर.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: जी शुरुआत हो चुकी है एक सफर की और सफर में शामिल हो गया है म्यूजिक हैज़ द हमज़फ़र।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हमें से कितने सारे लोग होते हैं जो कि प्लान बनाते हैं कि वीकेंड में थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक, लेकिन फिर से मंडे शुरू होता है, यार अगली बारी चाहिए। अच्छा सर, बताओ आप में से कितने सारे हैं, हाथ मत उठाओ, गाड़ी चला रहे हो। लेकिन ये भी सच है कि आपको सोचना जरूरी है, थोड़ी सी प्लानिंग करनी जरूरी है, क्योंकि अब जिंदगी का कंट्रोल लेना जैसे आप स्टेयरिंग व्हील का कंट्रोल लेते हो ना, हाँ कुछ ऐसे ही करना बहुत जरूरी है। कि कब खाना है सनसेट से पहले, ये थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, क्योंकि बिजी लाइफ स्टाइल के अंदर वापस घर पहुँच कर खाना पीना उस पर ध्यान रखना, और साथ ही में अगले दिन की प्लानिंग करनी, थोड़ा जल्दी सुबह उठ जाए तो अच्छा है ना, सनलाइट, थोड़ा सा मूड ब्राइट और साथ में विटामिन डी, एंड फिर देखिए साहब आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि बाकी का दिन बहुत ही आसानी से जाएगा, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है ना, काम की हो, खाने पीने की हो, या फिर वापस घर लौटने की हो। अरे बीवी ने लिस्ट भी दी है, उसको मत भूलना, तो अच्छी बात है, अपने दिमाग को यूं ही चलने दो और दिमाग की बत्ती जब होगी ऑन, टेंशन गोना बी गॉन।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-ra-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Well, good morning, time check. It's 10 a.m. स्टूडियो में आ जाती हूँ, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। सऊदी अरब में मौजूद 1500 मॉरिशन हाजी कल रात मक्का से रवाना होकर मीना गए हुए हैं, जहां आज वे पूरा दिन गुजारेंगे। आज हज की अदायगी में मीना सबसे पहला मरहला है। इस साल दुनिया भर से करीब 2 मिलियन हाजी इस्लाम का ये पांचवा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। कल मंगलवार को सबसे अहम दिन यौम अराफात होगा, जहां सभी हाजी मैदानी अराफात में जमा होंगे। हज मिशन के मुताबिक सभी तैयारियां की जा चुकी हैं, ताकि ये हज सभी हज यात्रियों के लिए यादगार रहे। औद्योगिक क्षेत्र के लिए टैक्स की दर 15% से घटाकर 3% करना, भावी राष्ट्रीय बजट के लिए ये मॉरिशस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार के समक्ष रखे गए सबसे साहसी प्रस्तावों में से एक है। ऑपरेशंस प्रमुख सैमुएल मोरो का मानना है कि ये मांग उचित है और ये MMA का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि उनके अनुसार औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हैं। इसके लिए व्यवसायों को नवाचार और आधुनिकता के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। वे मानते हैं कि इस तरह के साहसी कदमों के मिले जुले प्रभाव आखिर में अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक साबित होंगे। ऋतु विज्ञान केंद्र ने आज सुबह मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की है, जो आज दिन के 12 बजे तक बरकरार रहेगी। दक्षिणी समंदर में 4 मीटर तक की लहरें उठेंगी, जिसका असर पश्चिमी और दक्षिणी तटीय इलाकों पर पड़ेगा। इसलिए मछुआरों, समुद्री गतिविधियों में संलग्न ऑपरेटरों और आम जनता से समंदर में न निकलने और इन तटीय इलाकों में सावधानी बरतने की मांग की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तान में सैनिकों को ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। धमाका पश्चिमी बलूचिस्तान इलाके में पेश आया। अलगाववादी गुट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 7 एमोस लेन कोमोडेल में, नंबर 7 एमोस लेन कोमोडेल में 90 साल की 90 years old की बीबी जायबा अब्दुल, जो जायबा नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान नंबर 7 एमोस लेन कोमोडेल से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए अलहदी मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए सहमत है मोहोश का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
0: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: क्या बात कर रहे हो? बस नहीं, लेकिन हम नहीं रुकने वाले क्योंकि अभी आपके लिए क्या है?
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: भाई सुबह सुबह जो तापमान मेहमान बनकर घर में घुस जाता है, यानी कि 90 डिग्रीज और से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा, बट एनीवेज ज़रूरी है कि इसमें आप फुल मज़े लें, स्टाइल में रहें, ऑफिस जाना है, क्लास भी लगना है और रेडी होने में एक्स्ट्रा स्ट्रगल भी नहीं चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज का फैशन फंडा। भाई लेडीज़ के लिए स्ट्रेट फिट ट्राउजर्स, एक टक्ड इन पेसल शर्ट, अगर सिंपल एलिगेंट और टोटली बॉस वाले वाइब्स हैं तो क्या बात है। पास्टल कलर्स बहुत ही कमाल के लगते हैं, ऊपर से एक लाइट ब्लेजर या फिर लॉन्ग श्रग, हाँ ये भी काफ़ी कमाल का लगेगा, कॉर्पोरेट करीना वाली फीलिंग आ जाएगी। हैवी ज्वेलरी बिल्कुल स्किप कीजिए क्योंकि स्मॉल हुप्स या फिर क्लासी वॉच यही काफ़ी है। और वहीं पर अगर हम जेंट्स की बात करें तो चीनोज या फिर सॉलिड पोलो टी या फिर क्रिस्प शर्ट और ऊपर से एक लाइट वेट जैकेट, बिल्कुल सही, मतलब बहुत ही कमाल की स्मार्ट कैजुअल लुक। और स्नीकर्स क्लीन हो या लोफर्स पॉलिश्ड, दोनों का स्वैग अलग ही लेवल पे होता है। वैसे लेयरिंग रखना जरूरी क्योंकि सुबह ठंड और आफ्टरनून में थोड़ा सा हल्का वार्म फील आ सकता है। डार्क कलर्स नेवी, ओलिव, बेज या मरून, विंटर स्टार्ट के लिए आप लगेंगे असली हीरो।
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देख नॉर्मल सी बात है कि आपने मोजे पहने यानी सॉक्स डाली और निकल पड़े, और फिर डिपेंड करता है अपने काम पर। कई लोग होते हैं जो काफ़ी गर्मी में काम करते हैं या फिर उनका काफ़ी फिजिकल वर्क होता है, तो ऐसे में पसीना आना नॉर्मल सी बात है। हाँ, लेकिन अगर वो पसीना ज़्यादा होता है तो आपको सोचना चाहिए कि आप या तो रोज़ पैरों को धोकर अच्छी तरह सुखाएं, उंगलियों के बीच की जगह सूखी रखें, रोज़ साफ मोजे पहने। कई लोग होते हैं हाँ ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूँ सच में। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके पास तो सॉक्स की कमी होती है। मैं बस जूतों को धूप में या फिर हवा में सुखाएं, या फिर आप ये सोचें पसीना सोखने वाले जो मोज़े हैं वो लें, ना कि सिंथेटिक। कॉटन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, गंदे मोज़े पहनने से नुकसान ये होता है कि लंबे समय तक आप उसको पहनते हैं, फिर चाहे ऑफिस का टाइम हो, कहीं घूमने फिरने या फिर खेल कूद के दौरान, भाई जो पसीना ना वो सोख लेते हैं मोज़े। अब गीले होते हैं तो त्वचा को लगातार नम रखते हैं, इससे बैक्टीरिया और फंगस तेज़ी से बढ़ता है और आप ये नहीं चाहते। नहीं, फिर चाहे स्मेल आना या फंगल इन्फेक्शन, स्किन निकलना, उंगलियों के बीच खुजली होना, जलन, छाले या फिर इवन क्रैक्स, हो ये संकेत हैं कि आपको अब कुछ करना चाहिए। साफ सफाई और रखें पैरों को काफ़ी ड्राई, ये समस्या लग सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर इसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बन सकती है, परेशानी दे सकती है। इसलिए अभी से कुछ करना सीखिए। और जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, यू नीड टू गिव दैट ओपन एरिया। अपने जूतों को थोड़ा सा खोल कर अगर आप कोशिश करें, अगर बैठें आराम से तो हाँ, टिल द टाइम इट्स नॉट स्मेली, मतलब सोचना ज़रूरी है आसपास और भी लोग होते हैं। नहीं, इसलिए डू गिव इट अ थॉट एंड बिलीव इट नॉट, चीज़ें चेंज लाने में आ जाएंगी।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: से मेरे
1: OM2
2: रेडियो मस्ती
3: मैं
4: जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SVICC पाए विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
1: Uniquement chez King Savers, du 22 mai au 10 juin, le yaourt aux fruits Derivel d'un kilo est à 94,80 €. L'ice cream Coffee Dream Malai de 2,2 litres est à 369,80 €. King Savers, in sports, we believe.
5: RM2
2: Radio Musty.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: स्वागत आप सभी का टाइम चेक 11 AM। मिलते हैं अदिति से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट, संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंत्रिमंडल ने भारी बारिश की स्थिति में देश में लागू किए जाने वाले एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी होते ही निजी सेक्टर के कर्मचारियों को काम पर जाने की अनिवार्यता नहीं होगी और अगर वे पहले से ही नौकरी स्थल पर हैं तो वे घर लौट सकेंगे। अभी तक ऐसे कदम के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली चेतावनी पर्याप्त नहीं थी और भारी बारिश की स्थिति में कंपनियों को क्राइसिस कमेटी के कम्युनिकेट का इंतज़ार करना पड़ता था। श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघों के अनुसार इस फैसले से नौकरी क्षेत्र में एक अन्याय को सुधारा गया है। डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से मॉरिशस अपनी तकनीकी परिवर्तन को गति दे रहा है। इस राष्ट्रीय रणनीति का मकसद है देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुव्यवस्थित करना। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के अनुसार हाल के महीनों में फिनटेक का तेजी से विकास हुआ है और मोबाइल माध्यम से पेमेंट का व्यापक रूप से इस्तेमाल भी होने लगा है। स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के वास्ते बैंक ऑफ मॉरिशस के सहयोग से बुनियादी मूल ढांचे मजबूत करने और वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। इसके साथ जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि ये क्रांति है या मानवता के लिए एक खतरा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने आज और कल फ्रांसीसी राजदूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मॉरिस के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता फ्रांस के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विशेषज्ञ, खोजकर्ता और साहित्यकार अलेक्जेंड्र गेफेन होंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस, रोमानिया, फ्रांस, भारत, यूके और रोमानिया सहित करीब 20 देशों के साहित्य और अनुवाद विशेषज्ञ तथा शोधकर्ता एकत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक ठोस शांति समझौते पर काम कर रहे हैं और आज एक संधि तय होने की उम्मीद की जा रही है। इस बात का ऐलान उन्होंने अपने भारत दौरे के अंतर्गत कही। नए प्रस्तावों में 60 दिनों का युद्ध विराम आगे बढ़ाना, होर्मुज जलमार्ग खोलना, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर गहराई से बातचीत जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 7 एमोसलेन कोमोडल में, नंबर 7 एमोसलेन कोमोडल में 90 साल की 90 years old बीबी जाइबा अब्दुल पैदाशी नाम बतंकी, जो जाइबा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान नंबर 7 एमोसलेन कोमोडल से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए कोमोडल की अलहादी मस्जिद ले जाया जाएगा। फर्दा फरानी के लिए सैमौते मौश का कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रोड हाईलैंड्स में 77 साल की 77 years old श्रीमती विद्यावती तपसी पैदाशी नाम फौदो, जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान रॉयल रोड हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। ओल्ड स्कूल रोड कौजाब में 75 साल के 75 years old जनाब अब्दुल अलीम तौसू जो अलीम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके बेटे जनाब नूरानी तौसू के मकान ओल्ड स्कूल रोड कौजाब से उठा कर दफनाने के लिए वहीं का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
5: News on NBC
2: MBC Play, MBC Radio.tv, MBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: नहीं, आजकल तो स्क्रीन आ गया तो काफ़ी बच्चे अभी घर पर ही होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो बाहर निकलें खेलें तो अच्छा लगता है। नहीं, वैसे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऊपर थोड़ा ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी कोई होते हैं जो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे बाहर जाते हैं ठीक है, लेकिन लोगों से बातचीत करते हुए क्या बात करते हैं, इस पर क्या ध्यान देना है। नहीं, बहुत ज़रूरी है, बस ये देखना कि कहीं अगर कोई कहता है कि अच्छा अपने मम्मी पापा को ये मत बताना हमारी सीक्रेट है, नॉट रियली, गलत संकेत मिल सकता है। वहीं पर कहीं कहते हैं कि नहीं तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें समझते ही नहीं है, अच्छा है तुम जो कर रहे हो ठीक है, तो बच्चों को लगता है कि अरे कोई तो है जो मेरी बात समझता है, यानी कि बात चेंज हो जाती है। इसलिए उन्हें समझाएं कि कोई दोस्त रिश्तेदार या कोई भी इंसान किसी बात को अगर मम्मी पापा से कोई बात छुपाने के लिए कहे तो गलत संकेत हो सकता है। बच्चों को भरोसा दिलाए कि वो किसी असहज डराने वाली या छुपाने वाली बात को बिना डरे तुरंत अपने माता पिता को बता दें। माता पिता को बच्चों को सही और गलत दोस्त की पहचान कराना ज़रूरी है, इसलिए उनके साथ समय बिताएं, उनसे बातचीत कीजिए, उनको बताएं कि क्या उनकी ज़िंदगी में ठीक है और वो क्यों ऐसा करें, उनके लिए क्यों ये ठीक है। देखिए कहीं अगर कोई कहे कि चलो अकेले में चलकर खेलते हैं, तुम ये गेम देख रहे हो, या फिर कोई लालच दे, ये सब पहले से अगर बात करेंगे तो बच्चे के दिमाग में एक बत्ती जलेगी, खतरे की घंटी, और फिर उसको बताओ कि आगे क्या करना है। अनजान लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, ऐसी अगर चीज़ें दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं या फिर कोई चॉकलेट या खाने पीने की चीज़ें। वैसे तो हर कोई अपना रखता ही है अपना अटेंशन लेवल अप, लेकिन फिर भी उनसे बातचीत करते रहेंगे तो वो हमेशा रेडी रहेंगे ऐसी सिचुएशन में एक्ट करने के लिए। तो बस खतरे से बाहर रहें और आप उनसे बात करते रहें, बॉन्ड होगा और स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: आपने सूरज की रोशनी और हवा से बिजली बनाने के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब साइंटिस्ट हवा में मौजूद जो मॉइस्चर होता है ना, उससे बिजली बना रहे हैं। और जी मैं कह रहा हूँ कमाल हो रहा है। लंदन में एक यूनिवर्सिटी में वाई की कुछ लोगों ने कुछ स्पेशलिस्ट से मिलकर ये कोशिश की है, मॉइस्चर इलेक्ट्रिक जनरेटर। जहाँ जनरेटर की खासियत ये है कि हवा में मौजूद जो नमी है और शरीर की उमस को सोख कर 24 घंटे बिजली बना सकता है। इस डिवाइस की एक खासियत है कि किसी महंगे मटेरियल से नहीं बल्कि साधारण

0: नमक जेलेटिन और एक्टिवेटेड कार्बन से बनाया गया है। इसको वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया छोटा सा जनरेटर सोलर और विंड एनर्जी के रिकॉर्ड को भी तोड़ने में कामयाब रहा। मतलब कमाल है ना। अब सोचें कि आने वाले टाइम में कहां पर भी आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और पर्यावरण एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। दरअसल जब नमक और जेलेटिन के घोल को सुखाया जाता है तो खुद ब खुद 3 परतों वाली एक संरचना में बदल जाता है, और ये संरचना जैसे ही हवा में मौजूद उमस, नमी या इंसानी त्वचा के संपर्क में आती है तो नमी को सोख लेती है। बस सोचिए साहब, उसकी कहानी तो ठीक ठाक है, लेकिन आने वाले टाइम में बिना छुए सिर्फ उंगली के पास आने से ही एक टचलेस सेंसर की तरह काम लिया जाता है। अब इसका काम ख़त्म हो जाए तो इसे फेंकने से पर्यावरण को दूषित भी नहीं करता। अब सोचिए अब कितना आसान हो जाएगा, जस्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद लाइट करेगी आपकी सिटी।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.
3: Zooby-dooby, zooby-dooby, zooby-dooby.

0: just me.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए कुछ मैसेजेस यहाँ पर एंड गुड मॉर्निंग आपको भी और कहते हैं हेलो मेरा नाम है रीना और राइट रीना थैंक यू सो मच एंड कहते हैं बस गानों के साथ जुड़ी हूँ और सन है पवन उनके प्लीज़ एक गाना हो जाए जी हाँ हम तो चाहते हैं कि पवन का इस्तेमाल करते हुए वो भी पवन पुत्र बन जाए कभी लगता ना कि बेटा सब कुछ सुने सब कुछ ठीक है लेकिन एक टाइम के बाद वो क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं नहीं ऐसा क्यों भाई ये क्यों बहुत सारी बातें

0: लेकिन अच्छा, इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, हर चीज़ के बारे में बात करना। गुड मॉर्निंग जी, चाय और उसके साथ साथ कुछ नाश्ते की फोटो की रिपोर्ट आ चुकी है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ दे रहे हैं कौन, चलिए देख लेते हैं। हमारे साथ हैं आरती जी, आपको भी नमस्कार एंड थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड आपको भी हैप्पी कॉफ़ी डे। चलिए मैं तो कहता हूँ मॉर्निंग में चाहे हैप्पी डी बना लीजिए या कॉफ़ी डे जो भी, लेकिन कुछ होना ज़रूर चाहिए, यू नो, जो अच्छा लगता है और मॉर्निंग शुरुआत उससे बेहतर होती है, क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग जी आपको भी, और कहते हैं कि मामा वंदना को हैप्पी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस। एंड बेटी दर्शिका की तरफ से नील है, हस्बैंड है संजीव, निमिषा की तरफ से मामा गायत्री, एंड ब्रदर निर्णय की तरफ से भी उनको ढेर सारा प्यार। एंड साथ में कहते हैं ज्योति शाह तो बनारस से, एंड कहते हैं कि एंजॉइंग द मौसम ऑलवेज विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: आइए सुनते हैं समाचार अदिति के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज से नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी अभियान एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है जो इस साल के नवंबर महीने के आखिर तक चलेगा। ये पहल सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस की है। भले ही सर्दियों के दौरान देश में बिजली की मांगें गर्मियों की तुलना में लगभग 200 मेगावाट कम होती है, फिर भी जागरूकता पर बल दिया जा रहा है, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के कारण ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए। डिजिटल इनोवेशन प्रोफाइल के माध्यम से मॉरिशस अपने तकनीकी परिवर्तन को गति दे रहा है। इस राष्ट्रीय रणनीति का मकसद है देश के डिजिटल इकोसिस्टम को सुनिश्चित और सुव्यवस्थित करना। आईसीटी मंत्री अविनाश राम तोहल के अनुसार हाल के महीनों में फिनटेक का तेजी से विकास हुआ है और मोबाइल माध्यम से पेमेंट का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने भी लगा है। स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के वास्ते बैंक ऑफ मॉरिशस के सहयोग से बुनियादी मूल ढांचे मजबूत करने और वित्तीय प्लेटफॉर्म्स के अंतर्गत सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। इसके साथ जुड़ा सबसे अहम सवाल ये है कि ये क्रांति है या मानवता के लिए एक खतरा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने आज और कल फ्रांसीसी राजदूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस दे मोरिस के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। मुख्य वक्ता फ्रांस के डिजिटल ह्यूमैनिटीज विशेषज्ञ, खोजकर्ता और साहित्यकार अलेक्जेंड्र गेफेन होंगे। इस सम्मेलन में मॉरिशस, रोमानिया, फ्रांस, भारत, यूके और रोमानिया सहित करीब 20 देशों के साहित्य और अनुवाद विशेषज्ञ तथा शोधकर्ता एकत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान एक ठोस शांति समझौते पर काम कर रहे हैं और आज एक संधि तय होने की उम्मीद की जा रही है। इस बात का ऐलान उन्होंने अपने भारत दौरे के अंतर्गत कही। नए प्रस्तावों में 60 दिनों का युद्ध विराम आगे बढ़ाना, हॉर्मुज जल मार्ग खोलना, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर गहराई से बातचीत जारी रखना जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: Retro Rhythm. RM2. Radio Musti.

मस्ती विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. आज है मंडे 25 मई 2024. अरे मेरी जान, में महीने के 25वां दिन शुरू भी हो गई एंड पता ही नहीं चला. इतने जल्दी जल्दी है दिन, तारीख, साल सब कुछ बदलता चला जा रहा है, लेकिन एक चीज वैसा ही के वैसा रहा. खूबसूरत नगमे आपके लिए पेश करते हैं ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती. 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लेके जाएंगे ऑफ कोर्स पुरानी गलियों में, जहाँ पे आपकी खूबसूरत मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादों को आपने बड़े प्यार से सजा के रखा है. तो चलिए जी, तैयार हो जाइए उन खूबसूरत सी यादों में फिर से दोबारा खो जाने के लिए हमारे साथ ऑन ऑरेंज रेडियो मस्ती. इस 2 घंटे के सफर में अगर आप हमारा हम सफर बनने के लिए तैयार हो तो बस आपका स्वागत है मेरी जान. And to all those having their lunch right now, हमारी तरफ से पूरे MBC टीम की तरफ से bon appetit to you, my dear. MBC कैंटीन में जितने भी हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं उनको भी bon appetit. तो चलिए फिलहाल के लिए आपको याद दिला दे, 5499-1294 पर आप अपने दिल की बात लिख के हमें भेज सकते हो, यानी कि आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आर द मोस्ट वेलकम. और फिलहाल के लिए चलिए एक और खूबसूरत सा गाना हो जाए आपके नाम.

0: Retro Rhythm.
1: सच अ ब्यूटिफुल ट्रैक है जी हाँ, अनुराधा पोरवार और उदित नारायण की आवाज़ों, मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है। बिल्कुल जी, और जब ऐसे गाने बजते हैं और हम साथ में गुनगुनाते हैं तो और भी ज़ोरों से धड़कने लग जाता है हमारा दिल। क्यों? क्योंकि ऐसे गानों के साथ हमारी है जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, दैट्स सो स्वीट। जी हाँ, जब भी आप इन खूबसूरत गानों को दोबारा सुनते हैं और उन यादों को दोबारा फिर से जी लेते हैं। सो R&2 रेडियो मस्ती पर बस हमारा यही तो प्लानिंग है कि बस आपकी इन मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादों को छेड़े। गुस्ताखी माफ मेरी जान, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है। सो हियर वी गो, फिलहाल के लिए लेट्स फिगर आउट योर डेडिकेशंस। वीना फ्रॉम नुवेल फ्रांस, कैसे हो आप? आई एम वेरी हैप्पी आई मेट यू यस्टरडे, ओके थैंक यू। एंड चलिए जी, शैलेंद्रा सिंह जो है आपके हस्बैंड जो हैं, कोई भी गाना शैलेंद्रा सिंह की आवाज़ में आपके हस्बैंड देव के लिए, ओके नाउ आई रिमेंबर। वीना जी, कल हम मिले, हाँ जी, हमने साथ में एक पिक्चर भी क्लिक किए, हाँ जी, वी डिड टुक अ सेल्फी। एंड अगर आप हमें भेज सकते हैं, अगर मेरे पास है तो वैसे ही आप चेक कर सकते हैं, ऑन फेसबुक हो सकता है पोस्ट भी कर लिया होगा। सो हैव अ लवली टाइम वीना जी। और फिलहाल के लिए चलिए, ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट

0: करना चाहेंगे, स्पेशली हमारी प्यारी सी फिया के लिए जो साथ दे रही हैं, कनिष्का. दैट्स अ ब्यूटीफुल लवली नेम. थैंक यू सो मच एंड शी सिंग सुपर्ब सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स. आप बस हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे एंड यू विल बी एंजॉइंग दिस गुड एंड लवली लवली गाने माय डियर एंड कीप ऑन एंजॉइंग द शो. और हाय माय गिनर डार्लिंग, कैसे हो मेरी जान. आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट हमने आपको मिस किया. हाँ जी, इतने सारे मैसेजेस इस एक हफ्ते में मुझे मिला. थैंक यू सो मच. आप लोगों का प्यार, आप लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम फिर आ गए हैं हाँ जी, और क्रेजी बुलबुल मेरी जान आ गई हैं. सो दागन श्वेता रविश प्रीशा लविशा पाडू फैमिलीज एंड प्रीशा, थैंक यू सो सो मच जी ये अगला गाना आपके लिए. तो चलिए, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हियर वी गो. एंजॉय करते रहना खूबसूरत प्यारे प्यारे नगमे ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती.
1: You're listening to Radio Masti.

0: Retro Rhythm.
1: आई रियली होप कि आपको दिल से अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती। वैसे 25 ऑफ मई कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं आज अपना जन्मदिन? टू ऑल दोज़ हू आर सेलिब्रेटिंग, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू योर डेडिकेशंस। जी हाँ, बबीता फ्रॉम पोंकलविल, बड़े प्यार से आपने भेजे हैं मैसेज, एक गाना आपके लिए और सारे हमारी टीम के लिए। थैंक यू सो मच हनी, प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ बाबू से माला और सुखराम एंड भीम फैमिली है के लिए ये अगला गाना। थैंक यू सो मच, आप एंजॉय करते रहना और यूं ही साथ देते रहना मेरी जान। आई वुड लव टू डेडिकेट नेक्स्ट वन स्पेशली टू EMS ऑफ फर्नीचर और भाभी के लिए नताशा डुकवा जो है, एंड शायद अब वो बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, सो गेट वेल सून भेजा है आपके लिए, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम नवीना। थैंक यू सो मच नवीना जी, और आप भी एंजॉय करते रहना एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और चलिए जी, ये गाने की मांग की है हमारी प्यारी फिया ने, तो कोशिश करेंगे टू प्ले दैट फॉर यू माय डियर। एंड वी डू हैव अब्दुल एंड सैरा बानू जी, आपको भी सलाम एंड थैंक यू सो मच, बस यूं ही साथ देते रहते हो और हमेशा मैसेजेस भेजते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। एंड वेल इतना लंबा मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज ब्यूटिफुल मेमोरीज ऑन रेडियो मस्ती। आज हमारी है जो बहन है शुबाना पोपन जो है लाल माची से, आज उनका जन्मदिन है, सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर एंड ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग साथ में, आप सभी को हैप्पी बर्थडे।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हमारे पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग एज वेल। और जो आपकी शुभाना बहन है उनको बेस्ट विशेस उनके पूरे परिवार की तरफ से, सरोज, सांध्या, पूनम, अंजना, अरुणा, वंदना, पद्मा, बेटी दीक्षा एंड रक्षा, हस्बैंड सुदेश, हितेश, ब्रदर संजय, संथन एंड राहुल, अभिषेक एंड पद्मा, अक्का, विमला एंड सरोज ऑफ कैथरबोन की तरफ से विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे माय डियर, एंजॉय टू द मैक्स एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और फिलहाल के लिए आई हैव गॉट अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर यू मिस्टर एम राज, जो रहते हैं सोलफेरिनो नंबर 1 वाक्वा में। सो लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू मिस्टर एम राज, और स्पेशली ये गाना आपके नाम ऑन रेडियो मस्ती।

Welcome to Radio Musti. Retro Rhythm. RM2.

0: Retro Rhythm.
1: ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नगमे जब आते हैं ना प्ले करते हैं आप लोगों के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो में से, एक्चुअली हमारा दिल भी ये गुनगुनाते रहते हैं और वाकई में दिल को अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जिन्होंने हमें चुना आवर एंटी रेडियो मस्ती हम सफर बनने के लिए. पूरे शिद्दत से हम भी आपका साथ दे रहे हैं. आई होप दैट यू गाइस आर लविंग दिस ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारे प्यारे गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं. दोबारा मुझके 50 मिनट होने को हैं. आपको याद दिला दे दो शो इज लाइव राइट नाउ ऑन टिकटॉक आवर एंटी रेडियो मस्ती. वैसे अगर कोई पुराना गाना आपके जहन में है, आपने बड़े टाइम से नहीं सुना है, आपको किसी की याद बड़ी जोरों से आने लग गई है उस गाने को याद करते ही, तो क्यों नहीं आप हमें बता सकते हैं अपने डेडिकेशन के जरिए. आप हमें अपने दिल की बात लिख के भेज सकते 15499-1294 पर. और फिलहाल के लिए आई डू हैव मिस्टर डेव. हेलो मिस्टर डेव फ्रॉम द सिटी ऑफ लव. हाँ जी, यानी कि पेरिस से बाहरों थाम. अच्छा, ये मुकेश दा का गाना है. वंडरफुल म्यूजिक इज कंपोज बाय जेएस कोहली. कोशिश करेंगे और ये गाना आपको याद दिलाते आपके स्कूल डेज का. व्हाट अ नॉस्टैल्जिया है ना. सो हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड गुड म्यूजिक. अच्छा, ये पहले का आज ही का है. अच्छा, तो चलिए दिल में हो तुम. या आई डू हैव दिस ऑन माई लिस्ट आपकी वाइफ अमरीटा के लिए. और थैंक यू सो मच जी मिस्टर डेव. कोशिश करेंगे टू प्ले दैट सॉन्ग स्पेशली फॉर यू. किसी के लिए दोस्ती सजा बन जाती है तो किसी के लिए दोस्ती मजा बन जाती है. पर जो लोग दिल से दोस्ती करते हैं ना, उनके लिए दोस्ती जीने की वजह बन जाती है. सो हेल टू फ्रेंडशिप एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख जो बॉम्बे के रहने वाले हैं. गुड आफ्टरनून जी आपके परिवार मनसुख परिवार के लिए भी ये अगला गाना. एंड हियर वी गो. ये अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली किसके लिए. स्वीट गिनी प्रणाम आपको भी. अच्छा, आप हमारी प्यारी मालिनी जी बिल्कुल ठीक हैं और आप घर के कामकाज में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आर एन टू रेडियो मस्ती को एंजॉय कर रहे हो, तो एक गाना आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे. तो चलिए जी, आपको बों को खाश एंड टू ऑल दोस्त जो अभी घर में लगे हुए हैं, कामकाज में लगे हुए हैं, या किचन में लगे हुए हैं, या काम पे हो सको खाश टू यू. एंड स्पेशली आई हैव गॉट अ स्पेशल रिक्वेस्ट राइट नाउ जो है फ्रॉम केविन एंड काजल एंड कियांश की तरफ से स्पेशली आपके लिए नाना धर्म के लिए हु इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये गाना नाना जी के लिए, धर्म जी, ये गाना स्पेशली उन बच्चों की तरफ से आपके नाम.

0: खूबसूरत गानों का सिलसिला बस यूं ही चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन R&2 रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 1 PM।
1: वेलकम टू R&2
2: रेडियो मस्ती।
3: रेडियो मस्ती
2: नॉर्थ साउथ
3: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4,
2: सेंटर
3: 99.4।
1: R&2
3: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: आइए सुनते हैं समाचार करुणा के साथ। नमस्कार।
4: नमस्कार गिनी शाह, सभी को नमस्कार। शागुस आर्किपेलागो का मुद्दा फिर से चर्चा में है। बरतानी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका मकसद शागुस द्वीपों को मॉरिशस को वापस सौंपने की प्रक्रिया को रोकना है। ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य पीटर जेम्स विटल द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बीच ब्रिटिश सोवरेनिटी प्रोटेक्शन शागुस आइलैंड्स बिल एक व्यक्तिगत पहल है और बरतानी सरकार की आधिकारिक

0: नीति को नहीं दर्शाती। मॉरिशस में महंगाई अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी, जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। विदेश में अफ्रीकी महाद्वीप में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में भारत ने सतर्कता बरतते हुए कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों से इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की गई है। और रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं, जिसमें राजधानी कीव स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का दफ्तर भी क्षतिग्रस्त हो गया। WHO के डायरेक्टर जनरल ने हमलों की निंदा करते हुए लड़ाई बंदी की अपील की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। ओल्ड स्कूल रोड कौजाबल में 75 साल के 75-year-old जनाब अब्दुल अलीम टारसू, जिन्हें लोग अलीम से जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे नूरानी टारसू के मकान ओल्ड स्कूल रोड कौजाबल से निकालकर दफनाने के लिए कौजाबल के ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। और खुटवायाल हाइलैंड्स में 77 साल की 77-year-old श्रीमती विद्यावती तपसी पैदाइशी नाम फाउडो, जो सांता से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनके मकान खुटवायाल हाइलैंड्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो, जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा, मैं कहती हूँ

0: Retro Rhythm.
1: That was such a beautiful track, specially for you, Anusha ji. जी हाँ, और अजमन परिवार के लिए. And that's specially अविनाश की तरफ से ये खूबसूरत सा गाना बजा गया गया था, specially for you, my beautiful. तो चलिए 1:21 हो चुके हैं. We've got you the beautiful selections, especially जो मन को भा जाता है, आपके दिल को सुकून और राहत दिला देते हैं. कुछ ऐसे गाने जो आपको खींच के लेके जाते हैं उन्हीं वादियों पर, जहाँ पे जिंदगी के एक ऐसा मोड़ था जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करते थे. बहुत प्यारे प्यारे आपकी यादें हैं किसी खास इंसान के साथ. हाँ दोस्तों, और याद करते ही मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है हमारी होंठों पर. और कभी कभी ये कुछ यादें ऐसे होते हैं कि आंखों में नमी भी आ जाते हैं, लेकिन यादें कुछ ऐसी चीज़ होते हैं, बहुत ही खास होते हैं जी, जो हमेशा संभाल के इंसान रखते हैं. और फटाफट से जैसे ही हमने ये गाना प्ले कर दिया, इमोशंस जो हैं आंसुओं में बहने लग जाते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मूवी जो आपकी यादों का है ना, आपकी आंखों के सामने फिर से आ जाता है. इन्हीं को बोलते हैं खूबसूरत मीठी मीठी प्यारी प्यारी यादें. और यादों को और भी ताज़ा करेंगे क्योंकि आई हैव गॉट यू ब्यूटीफुल गानों का सिलेक्शंस. तो चलिए जी, योर डेडिकेशंस फिलहाल के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे. अच्छा, मिस डेव बोल रहे हैं थैंक यू फॉर प्लेइंग द सॉन्ग. नॉ नहीं, मेंशन नॉट माय डियर. जब भी हमसे होता है, हम आप लोगों का जो फरमाइश है सर आँखों पर रखते हैं, आपकी ख्वाहिश को पूरी कर लेते हैं बाय प्लेइंग योर फेवरेट गाने. सो कभी कभी नहीं हो पाते हैं क्योंकि सबको खुश तो करना पड़ता है. आई कांट जस्ट प्ले फॉर वन पर्सन, आई हैव टू लुक आफ्टर एवरीवन. वी आर ऑल वन फैमिली एक्चुअली. और पॉइंट अलास्का से प्यारे भरे गीत पापा ऋषि के लिए, मामा सीता, निजल, स्वीटी, अवि, निश्ति, यश एंड नक्श के लिए. And एक खूबसूरत सा गाना स्पेशली आपके लिए. हाई, गुड आफ्टरनून आंटी. हाय छोटा शायान ओगू फ्रॉम मोगू पॉम्पलेमुस से. एंड लवली प्रिंसेस, योर सिस्टर सेलिब्रेटिंग हर फिफ्थ मंथ टुडे. सो चलिए, कंग्रेचुलेशंस एंड मे गॉड ब्लेस हर. ये अगला गाना उनके लिए और शायना ओगू जो हैं उनके लिए मैं ज़रूर प्ले करूँगी बच्चा, मैं कभी नहीं भूलूँगी. और नमस्ते जी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक. Wishing you bon courage, आपको भी मेरी जान. And the next one to your well wisher, जिसका नाम है अजय. Thank you, आप हमारे जिंदगी में आए. हम दोनों जो हैं, we are fond of listening to Bollywood oldies. That's good. And you are at the right address, my dear, from Kajal. Kajal ji, you are at the right address. अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक रोज on RMT Radio Masti. बेटी स्वीटी, दामाद कमलेश, ग्रैंडचाइल्ड शेषना, योहान एंड रोहन के लिए फ्रॉम रागिनी मौसलमा सांसूसी से. एंड सुबह से मैं मैसेज भेज रही हूँ, क्या हुआ? ये एक छोटी खुशबू के खातिर क्या भेजा आपने? 16 साल की हो गई है आज. सो कंग्रेचुलेशंस, विशिंग हर हैप्पी बर्थडे माय डियर. तो चलिए जी, प्रणाम एक फ्रेंड के लिए जो आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रही हैं. दैट्स कमिंग फ्रॉम कल्याणी, फ्रॉम काउंटोरेल. सो कल्याणी जी, चलिए जी, दिस वन गोज आउट टू यू गाइस. 5499-1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर लवली डियर की बातें. दे आर द मोस्ट वेलकम.

That's in the lovely voices of Hanji Hariharan and Sukhvinder Singh Nahi Samne, taken from the movie Dal, jo 1999 mein release hui thi. Aur filhal ke liye, I've got a beautiful song coming up specially for you. Aise hi bolte hain ki do dil mile to do parivar jud jate hain. Pyar ke is rishte mein har khushi bas aap logon ko milte chale jate hain. Engagement ke ye do khoobsurat saal बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, यानी कि हमारी प्यारी सी भावना और हमारे प्यारे से निखिल को, जो आज दो साल हो गए इनकी एंगेजमेंट को, सो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं. रब करे ये साथ हमेशा यूं ही मुस्कुराता रहे, हर दिन प्यार और खुशियों से सजता रहे आप दोनों का. हैप्पी सेकंड एंगेजमेंट एनिवर्सरी टू दिस लवली कपल दैट आई लव द मोस्ट, एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट योर्स ऑलवेज.

0: बिल्कुल जी, सबको हो रही है और खबर चुपके चुपके। हम तो कहते हैं दो दिल क्या हजारों दिलों को हम मिलाने आ जाते हैं म्यूजिक के जरिए ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच साथ निभाने के लिए गिनीश ऑन द माइक। 1:36 हो चुके हैं।
1: रेट्रो रिदम
0: आपको हम घुमा रहे हैं आज बिल्कुल 90s की गलियों में, 80s की गलियों में, और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर लविंग इट। मैं तो गुनगुना रही हूँ और बड़ी जोरों से, गाना आए या ना आए, गाना तो चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच जी साथ निभाने के लिए। टू ऑल दोस हु एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग गाने जैसे कि भावना एंड निखिल, कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड वाइब्स माय डियर।

ध्यान दे, एंजॉय योर गुड डे, किसी की नजर ना लगे मेरी जान। तो चलिए जी, ये अगला गाना किसी ने एक मैसेज भेजा है, वो बोलते हैं, रेखा जी बोलते हैं, वाह व्हाट अ नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। आपका जो बेटा है अंश, उनके लिए ऑफ पों बों जे, स्पेशली मेरे लिए, ओ थैंक यू सो मच। कुमार सानू का कोई भी गाना आएगा आएगा मेरे जान, अभी तो प्ले किया था कुमार सानू, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। सो आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अनीता फ्रॉम फिकॉन फ्लैग। हैप्पी मंडे सभी रेडियो मस्ती की टीम को, थैंक यू सो मच। हवा हवाई, ओ वी वी वी वी, जरूर माय डियरी। आप हमारी प्यारी सोनिया, हाय सोनिया, हाउ आर यू? लेट मी सी इफ आई कैन जस्ट फिट दिस सॉन्ग इन बिटवीन, जरूर, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलरेडी गानों का सिलेक्शन है, देखते हैं अगर आज नहीं तो कल। हे गिनीशा, यस माय डियर, ये अगला गाना गोज टू वेदिता एंड विधांत, विव हन सिनी और सभी सुनने वालों के नाम, दैट्स कमिंग फ्रॉम कमलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष अमर राजा बानी जिस family, Kublal family, and you guys are from Rivière du Rempart. So, agla gana jo hai hum dedicate karna chahenge Roshni ke liye from Saint-Pierre, jo enjoy kar rahi hai hamare is khubsurat se show ko. Next one goes out to Abhijit from Menil. Hi Abhijit, ye agla gana aapke liye. And wishing a happy birthday to Reena Dinu. Hey, happy birthday to you, my dear. Rosebell se ho, aur aapke husband Vishal, beti Pari and Pihu aur beta Veer ki taraf se. And sabhi Radio Masti ke liye, jo staff hai, non-staff hai, unke लिए, यानी कि पूरे एमबीसी टीम के लिए, सिमला फ्रॉम लासूस कैथोबोन, और अगला गाना आपके लिए, नमस्ते डीडी जी, नमस्ते, आपको भी प्रणाम, लव ऑल योर प्रोग्राम, खासकर ये जो रेट्रो रिदम वाला शो है। एक रिक्वेस्ट है आपसे जरूर मेरी जान, लेकिन आपका मैसेज अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, फिर से भेज देना, ठीक है? तो चलिए जी, आई हैव गॉट द नेक्स्ट वन स्पेशली टू ऑल दोस, ज्योति फ्रॉम शातू बेनारस, विवेक के लिए नेफ्यू आयुष का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे टू हिम फ्रॉम मध्य परिवार की तरफ से। तो चलिए जी, ये अगला गाना हमारी तरफ से सारे म्यूजिक लवर्स के नाम, 5 4 9 9 12 94, ऑफ कोर्स यू कैन सेंड मी योर डेडिकेशंस।

0: चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू, क्योंकि आ गई है इन द स्टूडियो हमारी प्यारी परी. सो परी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू.
1: गुड आफ्टरनून आपको गिनीशा, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स. वेल, मंडे आफ्टरनून, लेकिन इन गानों के साथ मंडे ब्लूज जो है वो एकदम मस्त मैजिकल एंड म्यूजिकल फील होते हैं.
0: लगता है कि आप गानों का खजाना लेकर आई हैं अभी.
1: बिल्कुल, होने वाले हैं कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स एंड ऑफ कोर्स कुछ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स. सो स्टे कनेक्टेड.

0: time to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. मॉरिशस में महंगाई अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है. बैंक ऑफ मॉरिशस के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का मानना है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी, जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति भी प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुँच सकती है. आज 25 मई को बलाक्लावा में मॉरिशस की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट एमयू द्वारा नेशनल साइबर ड्रिल 2026 आयोजित किया गया. इस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में कई सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक एजेंसियों ने

0: शक्तिशालिया। इसका मकसद बढ़ते और अधिक जटिल होते साइबर हमलों के बीच विभिन्न संस्थाओं की आपसी समन्वय क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट की धारा 34(2)(c) के तहत श्रीमती दिया बिसुंदयाल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्राइब्यूनल के अध्यक्षा नियुक्त की गई हैं और दालिदा नोएल मालिको तथा मोहम्मद इकबाल मोहम्मद हुसैन ट्राइब्यूनल के सदस्य बने हैं। रेज्यूमे गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम धर्मवीर गोकुल के सामने उन्होंने पद की शपथ ली। विदेश में अफ्रीका महाद्वीप में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में भारत ने सतर्कता बरतते हुए कोंगो युगांडा और दक्षिणी सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों से इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की गई है और रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए जिसमें राजधानी कीव स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का दफ्तर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने हमलों की निंदा करते हुए लड़ाई बंदी की अपील की है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। अविनीत रोकेटिया प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 10 साल के 10-year-old माइनर दिव्यराज शिवम वैभव मित्वा की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनके पिता कविराज मित्वा के मकान आवेनी थ्रोकेचा प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेजिन कॉडेमास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। और ले घाव ब्रांच रोड घावबुआ में 62 साल की 62-year-old श्रीमती फुलवंती तपसी पैदाइशी नाम सुकारा जो वीणा से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके पति कंदयालाल तपसी के मकान ले घाव ब्रांच रोड घावबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए घावबुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो At 10 AM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: Bombay Talkies
5: Radio Musty
6: Radio Musty

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well, ladies and gentlemen, Monday afternoon and Gulabi Savarya, इसी गाने के साथ आपका warm welcome. गुलाबी गुलाबी मौसम तो शुरू हो चुका है, यानी कि winter ने दस्तक देना शुरू कर दिया है. वो जो कड़ी धूप थी अब थोड़ी सी कम फील होने लगी है, लेकिन सर्दियों वाली जो धूप है वो उसकी जो एक फीलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल है. सो वेल दोस्तों, विंटर का तो वेलकम कर रहे हैं और विंटर के साथ साथ हमारे सभी लिसनर्स जो 24/7 हमारे साथ जुड़े रहते हैं, क्या हाल चाल ऑन दिस मंडे. आई डू होप सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और बाकी म्यूजिकल डोज तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती, जहां पर बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए होता है. आफ्टर ओल्ड सॉन्ग्स इट्स टाइम फॉर सम लेटेस्ट सॉन्ग्स. अभी से लेकर 4 बजे तक इट्स गोइंग टू बी टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ 4 बजे तक आपका साथ निभाऊंगी. गर्मा गर्म बीट डाउन की खबरें आपके लिए लेकर आई हूं और साथ दे रहे हैं आप भी. सो नॉट टू फॉरगेट 5499 1294 पर रहेगा आपका इंतजार. साथ ही आपको याद दिला दे कि एक आवाज जिसे आप लाइव सुन पाएंगे राइट हियर इन मॉरिशियस, वन एंड ओनली जुबिन नौटियाल. सो नॉट टू फॉरगेट 30th of May SVICCPI में होने वाला है ये वंडरफुल कॉन्सर्ट. सो बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड अभी के लिए तो जुबिन नौटियाल के गाए हुए कुछ गाने आप तक पहुंचाएंगे, कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स भी आपके लिए लेकर आए हैं, बीट बॉलीवुड सॉन्ग्स, बीट इंडी पॉप, सब कुछ आपको मिलने वाला है राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. सो जुबिन नौटियाल की बात की, सो यहाँ पर मनदीप खुराना का साथ निभाते हुए जुबिन नौटियाल उनके खास अंदाज में उनकी मैजिकल वॉइस राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

0: well friends, that was taken from the upcoming film Welcome to the Jungle. Star cast ऐसी है कि आप एक नाम सोचिए और वो एक्टर इस फिल्म में जरूर नजर आएगा क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म. और अक्षय कुमार के साथ साथ क्या ही स्टार कास्ट है. और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम देखने वाले हैं रवीना टंडन एंड अक्षय कुमार को एक साथ. और ये होगा कहाँ, वेलकम टू द जंगल, बिल्कुल इसी फिल्म में होने वाला है ये कमाल. So, चलिए दोस्तों अभी के लिए तो हम बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं. मैं हूं परी एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. एक बार फिर बॉलीवुड में भोजपुरी का तड़का देखने को मिल रहा है और बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना घेस घेस घेस ये यूट्यूब पर रिलीज हुआ है. और इस गाने ने आते ही सोशल मीडिया पर कब्जा कर लिया है और धमाल मचा रहा है. खास बात यह है कि फिल्म में अक्षय कुमार के साथ भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह का खास अंदाज देखने मिलने वाला है. और भोजपुरी और बॉलीवुड का कॉम्बिनेशन हमेशा फायर रहा है. और वो गाना तो आपको याद ही होगा फ्रॉम द फिल्म स्ट्रीटो, काटी रात मैंने खेतों में तो आई नहीं. ये गाना भी ऐसा ही सुपर डुपर हिट हो गया क्योंकि पवन कुमार जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है उन्होंने इस गाने को गाया, उनका साथ दिया सिमरन ने और ये फिल्म स्ट्रीटो में नजर आया. यानी कि बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री का ये जो कॉम्बिनेशन था लोगों को इतना पसंद आया और एक बार फिर ये मैजिक रिक्रिएट होने वाला है. एंड फिल्म है वही वेलकम टू द जंगल, भाई कमाल पे कमाल और धमाल मचाने वाली है ये फिल्म क्योंकि एक के बाद एक नए नए तड़के लग रहे हैं इस फिल्म में. जैसे हमने कहा कि अक्षय कुमार रवीना टंडन आफ्टर लॉन्ग टाइम इनको देखेंगे साथ. और लगने वाला है इसमें भोजपुरी और बॉलीवुड का तड़का जो गाना ऑलरेडी यूट्यूब पर मचा रहा है धूम. सो ये गाना आपको सुनाएंगे हम कुछ ही टाइम में, लेकिन अभी के लिए जिस गाने के बारे में हमने बात की स्त्री टू फिल्म का ये गाना गोज आउट आप सभी के नाम.
1: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा शलावती,
2: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं.
3: You're listening to Radio Masti.

So, well, ladies and gentlemen, बार बार हम आपको बता रहे हैं that on 30th of May, please, इस दिन को आप एकदम से याद रखिए because SBICC Pi होने वाला है live concert of Jubin Nautiyal. इस आवाज को आप live सुन पाएंगे and अभी के लिए बस उन्हीं के कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं. In studio, we have Pravish and Yudhish आए हैं यहाँ पर. So, this one goes out specially for them and equally goes out for all the listeners. Thank you so much. साथ दे रहे हैं आप on RM2 Radio Masti.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: So well, यहाँ पर ये जो गाना है goes out specially for Mighty Team जो हमारा साथ दे रहे हैं from Evan. Well, आपके colleagues प्रवीश and युदीश they are here in MVC. कुछ सेटअप हो रहा है लेकिन देखिए अपने फ्रेंड्स को नहीं भूले हैं, यहाँ पर काम करते हुए भी डेडिकेशन कर रहे हैं आपके नाम. So goes out specially for full Mighty Team जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं from Evan. Have a wonderful Monday afternoon. Connected हैं आप RM2 Radio मस्ती के साथ. This one goes out for you.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, that was a beautiful song. Ishq Vishq Pyar Pyar. यहाँ तो हम इश्क विश्क प्यार प्यार आदि अनन्या पांडे इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म चांद मेरा दिल से सुर्खियों में बनी हुई है। इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा में अनन्या पहली बार लक्ष्य के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई हैं और इस फिल्म को क्रिएटिव से अच्छा रिव्यू मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर क्रिटिक्स भी इस फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इसकी जो शुरुआत है थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन ओपनिंग वीकेंड पर इसने अच्छा परफॉर्म करते हुए 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, यानी कि 10 करोड़ ऑलरेडी पास कर लिए हैं इस फिल्म ने।

0: और इन सबके बीच अनन्या की बात करें तो एक्ट्रेस बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड यंग एक्ट्रेसेस में से एक है और जेनरेशन जेड की ऐसी स्टार है जिन्होंने काफी कम टाइम में बहुत सारे खिताब अपने नाम कर लिए हैं। और आपको बता दें दैट शी इज जस्ट 27 इयर्स ओल्ड और अनन्या पांडे ने काफी कुछ अचीव कर लिया इस छोटे से टाइम में। जैसे हम कहते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म का जो बोल काफी बाला है, इसमें कुछ एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जो भले ही नेपो किड्स हैं लेकिन उनकी एक्टिंग अच्छी खासी है। वैसे जब उनकी शुरुआत हुई थी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था उनकी एक्टिंग के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप पर काम किया और अब उनकी एक्टिंग की तारीफ भी होने लगी है। सो अभी के लिए तो आपको बता दिया, अगर उनकी फिल्म नहीं देखी है आपने चांद मेरा दिल जिसमें उनके साथ नजर आए हैं लक्ष्य, सो देखिए जरूर और बताइए कि आपकी आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी और ये फिल्म आपको कैसी लगी। अभी के लिए तो दोस्तों बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं गर्मा गर्म खबरों के साथ कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स। सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारे साथ कनेक्टेड है और ऐसे ही साथ देते रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती पर।
1: वेलकम टू आरएम2 रेडियो मस्ती।
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: What?

So well, much awaited film of Salman Khan, जिसका नाम पहले था Battle of Galwan, उसके बाद change होकर हो गया मातृभूमि. इंतजार तो था इस फिल्म का कि रिलीज होगी जल्द, लेकिन अभी के लिए तो करना है थोड़ा सा इंतजार. With this track हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे. That's your Bombay Talkies on RM2 Radio Masti.

0: जाएंगे।
1: RM2 Radio Masti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
1: Radio Masti.
6: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Masti.
6: Feel the Masti.
7: Time check exactly 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें करुणा जी से. आपको नमस्कार.
8: नमस्कार परी. सभी को नमस्कार. कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी सौंपी गई. ये दिन भावनाओं और एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा. एक आवास इकाई की लागत लगभग 1.6 मिलियन रुपए की है. शागस ऑक्यूपेलागो का मुद्दा फिर से चर्चा में है. बरतानी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसका उद्देश्य शागस द्वीपों को मॉरिशस को वापस सौंपने की प्रक्रिया को रोकना है. ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक सदस्य पीटर जेम्स विटल द्वारा प्रस्तुत किया गया. इस बीच ब्रिटिश सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन शागोस आइलैंड बिल एक व्यक्तिगत पहल है और बरतानी सरकार की आधिकारिक नीति को नहीं दर्शाती. मॉरिशस में महंगाई अब भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है. बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति प्रभावित होगी. इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्ट की धारा 34(2)(c) के तहत श्रीमती दिया बिसुंदोयाल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्त की गई और दालिदा नोएल मालिको तथा मोहम्मद इकबाल मोहम्मद हुसैन ट्राइब्यूनल के सदस्य. रेजी में गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम धर्मवीर गोकुल के सामने उन्होंने पद की शपथ ली. और विदेश में ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत के कई प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि समझौता तुरंत होने वाला है. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. धन्यवाद. नमस्कार.
9: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
10: More music in the mix.
11: Aaj Azadi hai.
12: Bombay Talkies.
13: Radio Masti.
14: Radio Masti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So that was taken from the film Dhurandhar the Revenge, record पे record बनाती हुई ये film, और इसी गाने के साथ warm welcome, 3:06 हो गए हैं, Monday afternoon साथ दे रहे हैं आप हमारा on RM2 Radio मस्ती। Well friends, मैं हूँ परी आपके साथ, और record पे record तो बना रही है Dhurandhar 2, लेकिन यहाँ पर आपके लिए भी तो इनाम पे इनाम हम लेकर आए हैं, कुछ special prizes जो हम आपको offer कर रहे हैं, और एक game जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे हैं, यानी कि MBC Play and Mauritius Helicopter Limited आपके लिए लेकर आ रहा है एक चांस, जहां पर आप जीत सकते हैं अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। और इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, आपको प्ले स्टोर में जाकर MBC Play 1.0 डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, एंड वंस यू रजिस्टर आपको मिलने वाला है एक MBC OTT का एक मैसेज, और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजना है ऑन 5499-1294। जब आपका जो स्क्रीनशॉट हम तक पहुंच जाएगा तो क्या पता आप शॉर्टलिस्ट हो जाए फॉर द ग्रैंड लकी ड्रॉ जो होने वाला है ऑन 29th of May। सो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको डाउनलोड करना है MBC Play 1.0, और अपने आप को रजिस्टर करके जो मैसेज आपको मिलता है उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए ऑन 5499-1294। ऑल द बेस्ट, साथ देते रहिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज।
3: Radio Musty. Feels a Musty.

So, चलिए दोस्तों कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ और जैसे हमने कहा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं मौका टू विन अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल। बस आपको अपने स्क्रीनशॉट्स हम तक पहुंचाने हैं जहां पर आप एमवीसी प्ले 1.0 आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने के बाद जो मैसेज आपको मिलता है स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेज दीजिए ऑन 5499129 फॉर ऑल द वेरी बेस्ट। सो चलिए दोस्तों अभी के लिए तो हम बात करने वाली हैं द वन एंड ओनली ऐश्वर्या राय। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में ऐश्वर्या राय बच्चन की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए। रेड कार्पेट पर आते ही उनके फैशन सेंस, उनके आउटफिट्स और उनके लुक ने ऐसा जलवा बिखेरा कि सभी की नजर उन पर ही टिक गई। हर साल कांस में ऐश्वर्या अपने फैशन स्टेटमेंट से धमाल मचा देती है। इस बार भी उन्होंने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया और इसी बीच इस फेस्टिवल में उनके पहने गए कुछ आउटफिट्स की काफी तारीफ हुई। ऐश्वर्या राय ड्रीमी अंदाज में नजर आई जहां पर एक पिंक आउटफिट हल्के पिंक रंग की फ्लोई गाउन में नजर आई वो जिस पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी लुक उनको काफी एलिगेंट बना रहा था।

0: और साथ ही अगर उनके नेक्स्ट लुक की हम बात करें, इस लुक में ऐश्वर्या राय ने डार्क ब्लू मर्मेड गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर एकदम फायर वाली फीलिंग दे दी, जहां पर वो लग रही थी सुपर ब्यूटीफुल। और गाउन के शिमरी पैटर्न डिजाइन और शोल्डर डिटेल्स ने उन्हें काफी यूनिक लुक दिया। ऐश्वर्या राय का जो थर्ड ड्रेस रहा, इसमें ऑल व्हाइट ग्लैमरस पैंट सूट पहने वो नजर आई, जो काफी यूनिक और स्टाइलिश दिखा। बड़े फेदर डिटेल्स ने आउटफिट को लग्जरियस बना दिया और साथ ही उनके जो बाल और मेकअप थे वो उन्हें काफी स्टाइलिश लुक दे रहे थे। वहीं उनका जो नेक्स्ट लुक, जी हां, ऐश्वर्या ने एक ब्लश पिंक शेड का ग्लैमरस आउटफिट पहना था और ड्रेस पर की गई स्टोन डिटेलिंग बहुत ही शानदार लग रही थी। और उस पर पहना गया फेदर डिजाइन जो उनके पूरे लुक को हाई फैशन वाइब दे रहा था, और ऐसे में ऐश्वर्या बहुत ही आर्टिस्टिक और मॉडर्न फैशन स्टेटमेंट देती नजर आई। उन्होंने व्हाइट कलर का आउटफिट पहना जिस पर रोज पैटर्न्स बनी हुई थी, और एक के बाद एक जो आउटफिट्स वो पहनकर आई, इसके बाद लोग उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। जहां पर हमने देखा कि एक सेलिब्रिटी ऐश्वर्या को देखकर कह रही है कि नाउ कांस कैन ऑफिशियली स्टार्ट, यानी कि इस फेस्टिवल में जो सब बेसब्री से इंतजार करते हैं वो होता है ऐश्वर्या राय का और उनके लुक्स का। सो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि इट हैज़ बीन 20 इयर्स, जी हाँ, 2006 में पहली बार वो कांस गई थी एंड नाउ इट्स 2026 और अभी भी उनका जो जलवा है वो बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। सो दिस वन वाज फॉर ऑल द फैंस ऑफ ऐश्वर्या राय। इनके जो फोटोज हैं वो तो हर जगह आग लगा रही हैं, और बस ऐसे ही कुछ अपडेट्स हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं। चलिए दोस्तों, साथ दे रहे हैं आप, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन 5499-1294 पर साथ दे रहे हैं आप RM2 रेडियो मस्ती एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज। मैं हूँ परी आपके साथ टिल 4 PM।
1: कोठा कोठा कोठा कोठा पाले आए छड़िया मोहल्ले तो लावे तेनु सवर कोई।
2: You're listening to Radio Masti.

0: सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको हमने काफी समय से बड़े पर्दे पर नहीं देखा है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में थी उन्हें लोगों ने काफी पसंद किया और काफी बड़ी फिल्मों का हिस्सा वो रही। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मीनाक्षी शेषाद्री। लंबे समय बाद फिर से कैमरा के सामने आने के लिए तैयार, उनका कहना है कि अब वो ऐसे किरदार निभाना चाहती है जिनमें कुछ नया करने का मौका मिले। फिल्मों और OTT दोनों के लिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई, वहीं फैंस के लिए भी उन्होंने दिल से कई बातें कही। और चलिए आपको बताएं दैट हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री एक्टिंग की दुनिया में एक बार फिर कदम रखने जा रही है। और अभी यानी कि ऑन मंडे ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ अपने फैंस का शुक्रिया अदा नहीं किया बल्कि फिल्म मेकर्स के सामने काम करने की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की। एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर इमोशनल मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के प्यार, हौसले और लगातार मिल रहे सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। 30 साल लंबे सफर के बाद मैं अपनी मुंबई वापसी कर रही हूं और एक बार फिर पूरी उम्मीद है कि जुनून और पॉजिटिविटी की सोच के साथ मनोरंजन की दुनिया में एक बार फिर मैं कदम रख पाऊंगी। और साथ ही साथ फिल्म मेकर्स और उनके फैंस का उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया क्योंकि उन्हें काफी वार्म वेलकम मिला है। और ये तो हम जानते हैं दैट शी वॉज सच अडोरेबल एक्ट्रेस, जहां पर उनकी सिंप्लिसिटी, वो गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज लोगों के दिल में बस गई और काफी समय से हमने उनको देखा नहीं था। काफी टाइम तो ये लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री आखिर है कहाँ, लेकिन शादी करने के बाद वो USA में सेटल हो गई थी। लेकिन वंस एक्ट्रेस ऑलवेज एक्ट्रेस, अब 30 साल के लंबे ब्रेक के बाद शी इज वंस अगेन रेडी टू रॉक द बिग स्क्रीन।
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Daniel Westy
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's time for Pari to say goodbye. Jaate jaate Vijaya ji cooking karte hue gaano ko sun rahi hain. So gaana goes out for you. Equally goes out for Karishma, Poonam, Vimla. Is waqt Pooja shop mein kaam kar rahi hain at the Flak or listening to Radio Masti. Gaana hoga aapke naam. We also have Chota Shayan Ogu saath de rahe hain aap Pamplemousse se. And aaj kehte hain that lovely princess sister is celebrating her 5th month birthday. Yani ki 5 mahine ki choti si sister. Unke liye bahut sara pyar and that's coming from Shayan Ogu aur unke sabhi parivar ki or se bahut प्यार एंड स्पेशल विशेस कुमार देवीचंद साथ दे रहे हैं आप इलायची चाय के साथ एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंड डेडिकेटिंग गाना फॉर पापा श्याम देवीचंद और कहते हैं कि दर्द सहते सहते इंसान सिर्फ हंसना ही नहीं रोना भी छोड़ देता है एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जीतन साथ दे रही है लव वॉचर्स से हम तो कहेंगे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमेशा दैट्स वी विश फॉर यू योर ऐसी ही गुड विशेस के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय आ रही है मनीष मा लेकर योर रफ्तार वाइब्स उनके गे उनके जो शो है में होने वाली है काफी गेम्स एंड इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स आपके लिए सो कहीं मत जाइए स्टे वेल कनेक्टेड

0: welcome to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check, it's 4 p.m. सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ कुरना जी. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार मनीष पांच सभी को नमस्कार. आज 25 मई सऊदी अरब में हज का पहला दिन रहा. मीना में 1500 मॉरिशियन हाजियों के लिए एक बेहद रूहानी और सुकून भरा माहौल रहा. ये मंजर पूरी तरह से इबादत और खुदा के जिक्र से भरा हुआ था, जहां दुनिया भर से आए लाखों हज अल्लाह के सामने दुआ और इबादत में मशगूल थे. 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस मुबारक मुकाम पर मौजूद हैं, जो मक्का से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं. कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी सौंपी गई. ये दिन भावनाओं और एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा. एक आवास इकाई की लागत लगभग 1.6 मिलियन रुपए की है. इसमें 80% खर्च सरकार वहन कर रही है, जबकि 20% राशि लाभार्थियों द्वारा चुकाई जाएगी. भुगतान की अवधि 35 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है. आज 25 मई को बलाक्लावा में मॉरिशस की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-MU द्वारा नेशनल साइबर ड्रिल 2026 आयोजित किया गया. इस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में कई सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया. इसका उद्देश्य बढ़ती और अधिक जटिल होते साइबर हमलों के बीच विभिन्न संस्थाओं की आपसी समन्वय क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना रहा. और विदेश में ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई, लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं. अफ्रीका महाद्वीप में इबोला वायरस तेजी से फैल रहा है. ऐसे में भारत ने सतर्कता बरतते हुए कंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है. भारतीय नागरिकों से इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की है. इसके साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार.

0: Les Grands Branch Road, Grand Bois, Main Bassett, Salki, 62 year old. Je te mettais pour le 20 tapsi, je te mettais pour le 20 tapsi. पैदाश नाम सुकाहा जो वीना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो है कल दिन के 10 बजे इनके पति कंडयालाल तपसी के मकान ले ग्रैंड ब्रांच रोड ग्रैंड बुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए ग्रैंड बुआ की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Mastery.

0: जी सच इट हार्ड टू ड्रॉप 4:06 हुए है, गुड आफ्टरनून एक्चुअली. ऐसा लगता है मेरा मॉर्निंग आप शुरू हो रहा है, क्यों ही बात है. यहाँ पर कईयों के हाल ऐसे भी हो जाते हैं ऑन मंडे, तो मंडे 25 मई 2026 को स्वागत है आप सभी का इन योर आफ्टरनून शो जिसका नाम हेड ऑफ टार वाइब्स. कैसे हो, कैसा रहा वीकेंड, हाउ इज एवरीथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. आई होप कि जैसा भी हो लेकिन आप तो खुश हो पाए एंड यू गेट योर टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. यहाँ पर ग्रूम करने के लिए, आपके मूड को और भी बरकरार करने के लिए यहाँ पर आई गेट यू द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शन. ऊपर से गेम्स, अरे गेम्स की कमी नहीं होगी हमारे शो में. नंबर नाउ डाउन कर लो 5491294 पर आप खेलेगा जरूर हमारे साथ. जिन्होंने कभी खेला नहीं, यू द मोस्ट वेलकम. वी आर हियर गिविंग यू द राइट वाइब्स एंड द गुड मूड.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: आरएम2,
1: रेडियो मस्ती.

स्वागत एक बार फिर से आप सभी का इन योर अवतार वाइब्स, जहां पर हमने बोला तो था कि यहां पर आप खेल सकते हैं बेशक हमारे साथ एंड विन सो मेनी गिफ्ट्स। यहां पर खेलिए, 500 रुपये का जो गिफ्ट वाउचर है आप के नाम हो सकते हैं अगर आप हमें सही जवाब दें। वेल ऑफर टू बाय रिवा एक्सेलेंस एट सेंट पॉइंट रियानो दिस मदर्स डे। तो ये जो सॉन्ग चल रहा है रूप दीरानी गुरु रंधावा इन हियर फॉर यू, आपको बस बताना है, एक तो मैं इक्वेशन बताऊंगी ओके किसमें कौन कौन है जो इस सॉन्ग में नजर आते हैं, आपको बस कंप्लीट करना है कौन सी एक्ट्रेस है अभिनेत्री है जो मिसिंग है इस गाने में। ओके जी, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं पति पत्नी और वो दो मूवी में ये गाना है रूप दी रानी फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन नजर आते हैं इस गाने में, आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, ओके रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान एंड आयुष्मान खुराना, तो कौन सी मिसिंग

एक्ट्रेस है जिनके नाम हम खोज रहे हैं, बताइएगा ऑन दिस नंबर 5491294 पर। टाइटल है रूप दी रानी एंड टेकन फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो, और जीती हमारे साथ ही 500 रुपीज गिव वाउचर ऑफ अ टी बाय रिवा एक्सेलेंस। ऑल द बेस्ट, अभी के लिए नाचिए और गाइए। अच्छा, मैसेजेस पूरे नाम और पते के साथ भेजिए।

0: क्या बात है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल अबाउट दिस सॉन्ग एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स वामिका गब्बी. वी आर लुकिंग फॉर द कंप्लीट कास्ट ऑफ दिस रूप दिलानी फॉर यू. वामिका गब्बी, रकुलप्रीत सिंह, आयुष्मान खुराना, साथ में थी सारा अली खान. क्या बात है, क्या कोरियोग्राफी. आई लव द बीट, आई लव द सॉन्ग, आई लव द स्टेप्स, आई लव द लहंगाज एंड ऑल. अमेजिंग अमेजिंग. यहाँ पर हमने थोड़ी देर ये पूछा था और यहाँ पर जवाब आ गए. हमारे साथ है हमारे लकी विनर. कौन है जो जीतते हैं ये 500 rupees गिव वाउचर फॉर टू बाय रिवा एक्सेलेंस एट सेंटर पॉइंट ट्रियानो दिस मदर्स डे. आप है द विनर मिस्टर फिरोज अनवर. कंग्रेचुलेशंस. सही जवाब देकर द विनर बने हैं हमारे साथ फिरोज जी. कंग्रेचुलेशंस. बड़े नाम और पते के साथ यहाँ पर आपने भेजा है एंड दिस गिफ्ट इज टू बी पोस्टेड. फिक्र ना करो, हम आपको पोस्ट कर देंगे, इसलिए हमने पूरा पता मांगा है. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड डोंट मिस द चैंपियंस लीग फाइनल लाइव एट सेंटर पॉइंट ट्रियानो. बिग स्क्रीन, बिग वाइब्स,
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती.

प्यार और मोहब्बत को सलाम ही करते हैं यहाँ पर. आपके दिल में अगर प्यार है, चाह है, तो क्या कुछ नहीं, आप अपना सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं टू द हाइट्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी के लिए ध्यान दीजिए हमारे जो शिक्षकों को ऊपर हैं. जी हाँ, प्ले विद MBC एंड विन अ गिव वाउचर वर्थ, सुनिएगा ध्यान से, 4,000 रुपए का जो गिव वाउचर है आपके नाम हो सकते हैं. प्लोजे सुमारीन ऑफर्ड बाय MJ इवेंट्स ऑफ मन. जॉइन अस एट कैप्टन मिमीज डाइविंग सेंटर एट थ्रोबिश फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. कम डाइव विद अस फॉर मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वहां पर आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन 5713-6761. तो चलिए, सवाल ये रहा आपके पास है, बस कुछ ही मिनट टू फाइंड आउट द राइट आंसर. हम ढूंढ रहे हैं के लिए, दिया जा रहा है एक बॉलीवुड इक्वेशन, हम ढूंढ रहे हैं मूवी का नाम. अगर आप हमें बता दीजिएगा ऑन दिस नंबर 5491294 पर, अगर हम कहें 2009 मूवी प्लस शॉक्स प्लस ट्रेजर प्लस संजय दत्त प्लस अक्षय कुमार प्लस लारा दत्ता, तो कौन सी मूवी आ जाती है? हाँ जी,

0: बताइएगा कौन सी मूवी आ जाती है. आई डोंट नो इफ आई एम सपोज टू ऐड दिस सॉन्ग नंबर. अच्छा बोल ही देती हूँ, अगर मैं कहूँ कि चिगी विगी सॉन्ग ऐड अप कर दीजिएगा मूवी में तो कौन सी मूवी आ जाती है दिमाग में बताइएगा. 5499194 पर ऑल द बेस्ट गुड टू ऑल दोस पार्टिसिपेटिंग. और ध्यान रखिएगा जो लोग आज सही जवाब देंगे तो वो ऑटोमेटिकली विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल. Yes, you've been shortlisted today, tomorrow, and the day after, till the 29th of this month. जी हाँ, 29th को लगने वाला है the final draw. तो आपके लिए chance है अगर आप participate करना चाहते हो. It is right now. So all the best.
1: Raftaar vibes, filmy rides.
2: RM2.
1: Radio Mastery.

0: winner here. वैसे थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन बोला था, 2009 मूवी शार्क्स ट्रेजर, संजय दत्त, अक्षय कुमार एंड लाला दत्ता प्लस चिगवीजा. वैसे ये वाली जो इक्वेशन है, हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू टू ईच एंड एवरीबडी. लेकिन एक ही विजेता चुना जाएगा टू पार्टिसिपेट इन द फाइनल ड्रॉ. जी हाँ, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. कौन है जो शॉर्टलिस्टेड हुई है आज? कंग्रेचुलेशंस हम कहेंगे टू प्रियंका रामकुरन. कंग्रेचुलेशंस. तो बाय द टाइम यू कैन कॉल ऑन 5713-6761 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एक अमेजिंग प्लोंजे सुमारीन एक्सपीरियंस. और आप के लिए प्रियंका जी, आप सिलेक्टेड हुए हैं फॉर द फाइनल, यानी कि होने वाले हैं फ्राइडे 29th of May 2026 को. तो तैयार रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ नॉर्म टू रेडियो मस्ती. कंग्रेचुलेशन अगेन.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
1: Radio Musti.

मस्त कलंदर, मस्त आफ्टरनून है यहाँ पर। गिफ्ट के बाद गिफ्ट आपके लिए। 4:32 हुए हैं, आप जुड़े हैं R2 रेडियो मस्ती के साथ। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला गाना हम चलाने वाले हैं ऑफ कोर्स दिल का टेलीफोन 2.0 इन द वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल। एंड नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं इस गाने के बाद, ओके जी। एक्चुअली इस गाने पर यहाँ पर द नेक्स्ट सॉन्ग विल बी प्लेड इन द वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल। एंड यू हैव टू टेल मी कि ये जो मूवी है ड्रीम गर्ल 2 वॉज रिलीज इन विच या साल का नाम बता दो विद द फुल नेम एंड

ड्रेस और जीत ये स्पेशल प्लैटिनम टिकट आपके नाम हो सकते हैं। जी हाँ, ड्रीम गर्ल 2 में ये गाना चला था एंड ऑफ कोर्स सैंग बाय जुबिन नौटियाल एंड साथ में थी जोनिता गांधी भी। आपको बताना है कि कौन से साल में रिलीज हुई थी ये मूवी ऑफ ड्रीम गर्ल 2, बताइएगा। और ये प्लैटिनम टिकट आपके साथ आपके नाम हो सकते हैं। जी हाँ, एंड जॉइन विद द मैजिकल जर्नी ऑन द सैटरडे 30th ऑफ मई 2026 को। जी हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। Who's the lucky winner? All the best.

0: वेलकम विद द लकी विनर लेडीज एंड जेंटलमैन. हमने थोड़ी देर पूछा था सवाल कि ड्रीम गर्ल 2 वाज रिलीज इन व्हिच मूवी, एक्चुअली व्हिच ईयर. ओके, एंड द राइट आंसर इज 2023. एंड आई गेट हियर द लकी विनर, एंड द लकी विनर इज कनिष्का फ्रॉम फोंजीसाग. थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस. अच्छा कनिष्का जी, हंस भी लो, आप बने हैं द विनर फॉर अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिनोटिया लाइव कंसर्ट. जी हाँ, जॉइन द मैजिकल जर्नी, म्यूजिकल जर्नी ऑन सैटरडे 30th of May 2026 as from 8 PM at SBICC. Bye. For an unforgettable evening with Jobinotial, the concert is proudly organized by Gravity Zero in collaboration with Ticketbox.mu. Book your tickets now on www.ticketbox.mu for more reservations. You can call on this number. Hotline hai 214-6464. वैसे थोड़ा सा बता दो, हमारी चाहते like beautiful, most loving weekend in India and internationally, Jobin Nautiyal is one of the most popular playback singer in India, known for his soulful romantic songs, emotional voice. Born on 14th of June 1989 in Dehradun, Uttarakhand. He developed a passion for music from a very young age and trained in classical music while learning instruments just like गिटार, पियानो, हारमोनियम एंड ड्रम्स. वैसे और तो और क्या बताएं जुबिन नौटियाल के बारे में, बस आप बस सुनते रहिए और हमारे साथ यूं ही निभाते रहिए, बस पता ही चल जाएगा कितना हम प्यार करते हैं, बट कितना प्यार ही हम भेजते हैं जुबिन नौटियाल के लिए. एंड गिविंग ऑल द मैसेजेस दैट वी हैव रिसीव्ड हियर सो फार, लाइक यू लव हिम, आई नो दैट विदाउट डाउट.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: Radio Musti.
3: Quand pour une élection, est-ce qui ou pour capable voter? Si ou non, pas l'eau la liste électorale ou pas pour un droit à voter. Bureau commissaire électoral peut lancer l'exercice enregistrement entre les 16 mai jusqu'à les 30 mai 2026. Ou fin gain 18 ans, ou bien ou pe gain 18 ans jusqu'à les 15 août, ou fin sans l'adresse. Ou pensez que ou non, pas l'eau la liste électorale provisoire. Visite ban centre enregistrement pour vérifier si ou non bien l'eau la liste ou s'il est bien écrit. Dans Maurice, ban centre pour ouvert des lundis à vendredi entre 4h jusqu'à 5h30 tantôt, et dans samedi entre 9h grand matin et 1h tantôt. Dans Rodrigue, ban centre pour ouvert des lundis à vendredi entre 3h30 et 5h tantôt, et samedi des 9h grand matin à 1h tantôt. Et pas oublier, amène le code d'identité et qu'un prévu l'adresse récent pour faire ou enregistrement. Ou capable aussi vérifier si ou non la liste électorale, l'eau ou potable. Envoyez un SMS l'eau 789. Tap ELEC, l'espace, numéro code d'identité. Pour plus de détails, check site internet Bureau commissaire électoral, ex-passe Facebook ou téléphone l'eau 800 20 10. Pour voter ou non, bizin l'eau la liste électorale. Man out
1: of home. Jubin Nautiyal. Live in Mauritius on Saturday, 30th of May. At SBICC Pi, winner of the Best Singer Award of 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
2: RM2.
1: Radio Musti.

यहाँ पर एक और मौका दिया जा रहा है फॉर यू टू बी द विनर ऑफ 500 रुपीस ऑफ टू बैटरी बाइक सेलेंस। बताइएगा ये कहाँ पर पाया जाता है? अत्ता सेंटर पॉइंट लियानो, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सेंटर पॉइंट लियानो में पाया जाता है रिवा एक्सेलेंस, हाँ या ना में जवाब दीजिए ऑन 549 एंड 1294 पर।

0: स्टार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट.
2: Sports news, latest updates.
4: Sports news.
5: Radio Musti in the mix.
6: कर 45 मिनट हो चुके हैं. यहाँ पर जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के साथ. एंड यहाँ पर अरविंद जी, गुड आफ्टरनून टू यू.
7: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. वैसे ही प्रीमियर लीग समाप्त हो गया. अब बहुत लोग कहेंगे कि चलो आराम के दिन आ गए, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में नो आराम. और अब डायरेक्टली जा रहे हैं वर्ल्ड कप की ओर. वर्ल्ड कप 2026 अभी बाद में इस पर चर्चा करेंगे. और हमारे इस बुलेटिन में भी समय समय पर आपको वर्ल्ड कप के बारे में जानकारियां देते रहेंगे. फिलहाल कल आर्सेनल वाज क्राउन चैंपियन. पहले से ही चैंपियन था, लेकिन कल ट्रॉफी दी गई. और जस्ट टू समराइज, आर्सेनल चैंपियन, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, फिर एस्टन विला और लिवरपूल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुए. ब्राइटन, जिसकी कल हार हुई ब्राइटन. फिर वीव गॉट संडरलैंड, फिर साथ में है बोर्नमुथ. ये इन टीमों ने बहुत अच्छा खेला, दे क्वालिफाई फॉर दी यूरोपियन चैम्पियनशिप. लेकिन चेल्सी मिस कर गया. लेकिन उधर टोटनहम हॉटस्पर बाल बाल बच्चा. वेस्ट हैम यूनाइटेड रिलेगेट हो गया. मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया. उसके कोच को भी, माइकल कारिक को, और ब्रूनो फर्नांडेज को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया. राइटर्स अवार्ड, प्रोफेशनल फुटबॉलर्स अवार्ड, तो शायद और अवार्ड आएंगे. और साथ साथ में अर्लिंग हालैंड टॉप स्कोरर और राया गोलकीपर जो हैं आर्सेनल का, उसे दिया गया दी गोल्डन ग्लोव्स, यानी बेस्ट गोलकीपर का. सो नाउ देखेंगे आगे चलकर. टेनिस के बारे में बहुत कुछ चर्चा होगी आज से लेके जब तक फ्रेंच ओपन पूरा नहीं होता. और ट्रांसफर बाजार में भी जो कुछ होंगे उन पर आपको समय समय पर जानकारियां देंगे. आज लीग टू प्रमोशन प्ले ऑफ है, फाइनल नॉट्स काउंटी और साल्फोर्ड के बीच. फिर स्कॉटिश प्रीमियरशिप प्ले ऑफ भी है, फाइनल सेंट मिरन और पार्टी के बीच. फर्स्ट लेग में मैच ड्रॉ गया था 1-1. यूईएफए

0: अंडर 17 चैंपियनशिप भी है. जर्मनी के बुंडेसलीगा प्लेऑफ फाइनल पादेरबोर्न और वुल्फबर्ग फर्स्ट लेग में मैच ड्रो गया था 0-0. आज जो जीतेगा वो जाएगा जर्मन बुंडेसलीगा में. और मेजर लीग सॉकर में आज इंटर मियामी की टीम ने 6-4 से फिलाडेल्फिया को हराया. इस मैच में लुइस सुआरेज का हैट्रिक रहा, फिर बेरतेगा में 2 गोल, डेपोल 1 गोल स्कोर कर पाया. लियोनेल मेसी को हल्की चोट लगी है, प्रिकॉशन के कारण उसे निकाल दिया गया क्योंकि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप. अर्जेंटीना के साथ जाना है इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. और कल भी कुछ फ्रेंडलीज मैच खेले जाएंगे, इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच, मोरक्को बुरुंडी, नाइजीरिया जिम्बाब्वे, और फिर इसके अलावा वी हैव सम जर्मन बुंडेसलीगा प्ले ऑफ, ये तो हमने बता दिया. टेनिस के बारे में, टेनिस शुरू हो गया है फ्रेंच ओपन और वावरिंका अभी खेल रहा है, रिबाकीना जीत रही है. कुछ रिजल्ट जो आज दिन के दौरान मिले, श्वातेक ने जोन्स को हराया 6-1, 6-2 से. रिबाकीना 6-2, 5-1, रिबाकीना की जीत हो रही है अभी. और बाद में और मैच खेले जाएंगे, गास्टो मोफिस फ्रेंच ये दोनों, और साथ साथ में रिंटरनेच ने आज रोडोनोव को हराया. विटोलिना की भी जीत हुई बोंडो पर. और मैच पाउलिनी यामस्ट्रेम्स्का को उसने हराया. वोरिंका और देयोंग के बीच अभी मैच है, देयोंग ने फर्स्ट सेट जीता, वोरिंका ने इक्वलाइज किया है, अभी तीसरा सेट चल रहा है. कास्पर रूद खेलेगा साफ्यूलिन के खिलाफ, मुचोवा का मुकाबला जाकारोवा से. कुछ मैच पूरे हो गए, इन पर कल आपको सभी रिजल्ट देंगे जरूर. क्रिकेट काफी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था कल रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच. फाइनली रॉयल चैलेंजर्स मेड इट टू दी टॉप फोर, और टॉप फोर के मैच शुरू हो गए कल से. इसमें एक सिस्टम होता है, उसे प्ले ऑफ यानी 4 टीमें क्वालिफाई हुई. सो प्ले ऑफ में ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर टीम आती हैं ये लोग खेलते हैं एक मैच, जो जीतेगा डायरेक्ट फाइनल. तो ये होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच. सो जो जीतेगा डायरेक्ट फाइनल में, जो हारेगा उसको इंतजार करना होगा क्योंकि थर्ड और फोर्थ टीम के बीच मुकाबला होगा. सो इस जो यहाँ पर जीतेगा वो जाएगा सेमीफाइनल खेलने, और जो हार गया वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो कल धर्मशाला में पहला मैच होगा, इस पर आपको समय समय पर डिटेल्स देते रहेंगे. और कल वैभव सूर्यवंशी कुडंट डू दैट वेल, 4 रन बनाकर आउट हुआ. अब देखना है कि वो आने वाला मैच जो है अभी, और मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल, अगर फाइनल में उसकी टीम जाए तो ही कैन ब्रेक द नंबर ऑफ सिक्सेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस जो रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास हैं. सो टेनिस इज ऑन, फुटबॉल भी जारी है, और वर्ल्ड कप के बारे में हम आपको समय समय पर जानकारियां दे रहे हैं. वैसे मनीष मां, आपको पता है मॉरिशस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है. मॉरिशस हैज वन वर्ल्ड कप.
1: रियली? हां, और कब?
0: 1966 में.
1: 66.
0: क्योंकि उस समय
1: जी
0: क्यों
1: तो
0: सोचो
1: मैं,
0: सोचो
1: मैं,
0: हमारे लिसनर्स सोचेंगे, आप भी सोचो. अभी वी कैन प्ले द वर्ल्ड कप.
1: यस ओके लेट मी थिंक अबाउट इट.
2: गेट रेडी फॉर द बिग

0: 4 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: चलो
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
1: चलो वर्ल्ड कप की ओर। वर्ल्ड कप 2026 काउंटडाउन जारी है। G-17 ग्रुप एल के बारे में भी चर्चा करेंगे, पर इससे पहले बता दें कि यूरोप भर में मेजर लीग समाप्त हो गए हैं। अब काफी खिलाड़ी केवल तैयार होंगे वर्ल्ड कप की ओर जाने के लिए, अपनी टीम में अब ट्रेनिंग जारी। ग्रुप एल, इसे टफेस्ट हैवीवेट्स ग्रुप कहा जा रहा है, ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप ड्रामो। इसमें इंग्लैंड, क्रोएशिया, गाना और पनामा है। इंग्लैंड द थ्री लायंस हमेशा की तरह बहुत लोग फेवरेट टीम मानते हैं, इसका टैग लेकर ये लोग आगे आते हैं, पर केवल एक वर्ल्ड कप, 16 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस 2018

0: में सेमीफाइनल तक पहुंच पाए, 2022 में क्वार्टर फाइनल तक जा पाए और बैक टू बैक यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल। टोमास टुखेल की टीम में कप्तान हैं हैरी केन, लेजेंडरी स्ट्राइकर, बुंडेसलीगा का टॉप स्कोरर, शायद ये उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। स्क्वाड में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है, पिकफोर्ड, जूड बेलिंगहम, डेक्लेन राइस, कोबी माइनू, बुकायो साका, ओली वाटकिंस आदि, इनके साथ बहुत हो सकता है। लेकिन क्रोएशिया है इस ग्रुप में। क्रोएशिया इस देश में केवल 3.8 मिलियन लोग हैं, पर यूरोप और वर्ल्ड एलीट फुटबॉल पावर हाउस। वर्ल्ड कप में क्रोएशिया 3 बार मेडलिस्ट, 1998 में ब्रॉन्ज मेडल, टॉप स्कोरर था दाबो सुकेया, 2018 में फाइनलिस्ट लुका मोड्रिच के साथ गोल्डन जेनरेशन, फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया था। फिर कतर 2022 में ब्रॉन्ज मेडल ब्राजील और मोरक्को को हराकर। इस टीम का माएस्ट्रो लुका मोड्रिच 40 साल का है, उसका 5वां वर्ल्ड कप अपीयरेंस। साथ में है मैनचेस्टर सिटी से मातेओ कोवासिच, कोमो का मार्टिन बातुरिना, डिफेंडर यूस्को बाजोल, स्ट्राइकर इवान पेरिसिच, और क्रोएशिया की टीम इंग्लैंड के लिए मेन चैलेंजर है इस ग्रुप में। गाना द ब्लैक स्टार्स 5th वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, मैनेजर है पोर्टुगल का टैक्टिशियन कार्लोस क्वेरोस, 2006 में राउंड ऑफ 16 में जा पाए, 2010 में क्वार्टर फाइनल, फिर 2014 और 2022 में ग्रुप स्टेज तक रही गाना की टीम। स्टार खिलाड़ियों में है वेस्ट हैम यूनाइटेड का मोहम्मद कुदुस, अंतोन सेमेन्यू, इनाकी विलियम्स और टोमास पार्टी गाना गाएंगे और बजाएंगे भी। और फाइनली पनामा द लोस कनालेरोस, ओनली 2nd वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, कॉन्काकाफ क्वालिफिकेशन में टॉप पोजीशन। इसमें ज्यादातर यूएस के मेजर लीग सॉकर के खिलाड़ी हैं, अदालबेर्टो कारिस्किला, अनिबाल गोदो, योजे फायोदो, इस्माइल जाज, माइकल अमीर मुरिलो और नोविच का योजे कोर्डोबा। सो ग्रुप एल में इंग्लैंड, क्रोएशिया, गाना और पनामा। चलो वर्ल्ड कप की ओर, बचे हैं केवल 17 दिन, G-17।
1: थैंक यू सो मच। वैसे अभी मुझको समझ में आया क्यों आपने बोला कि वी वर स्टिल वन ऑफ द चैंपियंस, क्योंकि 1966 में वी स्टिल इन द ब्रिटिश कॉलोनी एंड हमको इंडिपेंडेंस मिला इन 1968, एंड दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग एंड चीयरफुल क्वेश्चन। हम अपने आप को समझते हैं भाग्यशाली टू बी पार्ट ऑफ द ऑफकोर्स दैट फीफा वर्ल्ड कप। थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स अरविंद जी, हैव अ वंडरफुल afternoon.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: देखो।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
3: लड़की बड़ी अनजानी है।
4: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
6: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
4: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: एंड जेंटलमैन, मोहित चौहान की आवाज में वेलकम बैक इन द सेकंड आवर। वैसे हम धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर द पार्टिसिपेंट जिन्होंने भरपूर साथ निभाया है। लास्ट आवर में हमने एक सवाल पूछा था एंड द राइट आंसर भी मिल चुके हैं हमारे साथ हमारे लकी विनर फॉर रिवा एक्सीलेंस के जो 500 रुपीज की वाउचर बनी है सुनाए निंदारी। अब जुड़े रहिए, जो भी नोट याल की जो कंसर्ट है एक टिकट बाकी है और यहाँ पर सेकंड आवर में ढेर सारी वैसे प्यार और लविंग सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं वापस आपके लिए।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2,
1: रेडियो मस्ती।

0: जानकारी हमने दी थी एंड आई रेड ब्रेथ अबाउट हिम एंड आपको एंड आपके लिए भी एक सवाल है. अगर आप हमें ये बता दें कि IIFA अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर को किस गाने के लिए उनको ये IIFA अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर फॉर विच सॉन्ग, बताइएगा कौन से गाने के लिए उनको मिला था ये अवार्ड. विश से ऑल द बेस्ट गुज आउट टू यू विद द फुल नेम एंड एड्रेस, वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन टू बी ऑफ कोर्स अमंग द विनर्स ऑफ दिस प्लैटिनम टिकट. आपके नाम हो सकते हैं अगर आप हमें सही जवाब दें कि जो भी नौटियाल ने गाना गाया था जिसके लिए उनको IIFA अवार्ड ऑफ बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का ये जो अवार्ड है मिला था उनको, तो बताइएगा गाने का नाम, द टाइटल ऑफ द सॉन्ग. इतना ही.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu bains de parfum? Tu l'auto aussi bains de parfum? Tu sales des bains si bains de parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandal à le kick? Et toi l'im sandal 24-7 toi?
3: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau que celle-là.
1: Allo kick gel air freshener pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air freshener dans ton postement sportif.
3: Vrai même, tu es bien comique, toi. Allez, essaye tout. Allo kick, peine ce deuxième sans bosser.
4: Allo kick, freshness anytime, anywhere.
1: RM2
2: Radio Musti.
5: Raftar Vibes. Filmy Rides.
1: RM2
5: Radio Musti.

0: चुक माफ मूवी से लिया गया ये गाना स्पेशली फॉर दोस ट्यूनिंग टू आर एंड टू रेडियो मस्ती। वैसे जो भी नौटियाल के बारे में हमने पूछा था सवाल कि यार ओवर द फास्ट जैसे कि हम कह सकते हैं इयर्स ओके ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स ही हैज वन सेवरल अवार्ड्स लेकिन एक जो अवार्ड थी फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर देन दैट वाज फॉर हाथा लंबिया। जी हाँ हमारे साथ है हमारे लकी विनर जो बनी है फॉर द प्लैटिनम टिकट। यस आई गेट हियर विद मी उनका नाम है स्वाधीनता गंगा बिसुन जो रहती है पत्तपिमा। कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विद अस यू ऑन द प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव कंसर्ट। जी हाँ जुबिन हैज एडमायर्ड फॉर ब्लेंडिंग रोमांस सैडनेस एंड मेलोडी इनटू हिज सिंगिंग स्टाइल मेकिंग हिम अ फेवरेट अमंग म्यूजिक प्लेबैक सिंगर्स ओके एंड ओवर द इयर्स जैसे कि हमने कहा उनके पास उन्होंने जीता है बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स लेकिन ये जो IIFA अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर दैट वॉज फॉर हाथा लंबिया। टुडे ही इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज लाइव परफॉर्मेंसेज एंड चार्ट टॉपिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स कैप्टिवेटिंग ऑडियंसेज विद हिज हार्टफेल्ट वॉइस एंड स्टेज प्रेजेंस। वैसे दैट वॉज द गेम powered by Gravity Zero and ticketbox.mu. Thank you so much. Have a wonderful afternoon out there.
1: Raftaar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.
1: Radio Mystic.

0: सॉन्ग शिपर आपके पास में, वैसे अखियां दे कोल कोल, वैसे ऐसे ऐसे कपड़े जब आप लोग पहन लेते हैं जैसे आंखें खोल के लोग आपको देखते हैं और कहते हैं क्या लग रही हो, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं अगर आप हमें ये जो टाइम देंगे जस्ट टू लिसन टू दिस फैशन टिप. लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो फॉर द फैशन टिप.
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
0: अखियां दे खोल खोल, वैसे अखियां को खोल खोल. जी हाँ, फॉर्मल लुक का ये जो सीक्रेट होता है, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मल लुक. आई लव व्हेनेवर पीपल लाइक वेयरिंग सूट्स या फिर फॉर्मल ड्रेसेस में, या तो स्कर्ट या तो एक तो ब्लाउज या तो ब्लेजर, कुछ भी एक ड्रेस भी पहन सकते हो, ऊपर से एक ब्लेजर भी ऐड कर सकते हो. ये जो फॉर्मल लुक का सीक्रेट होता है, परफेक्ट फिटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ, कुछ लोग भूल ही जाते हैं कि जैसे ओवरसाइज नहीं होनी चाहिए, फिट होना चाहिए. चाहे ब्लेजर हो, शर्ट हो या ट्राउजर्स, वेल फिटेड आउटफिट्स हमेशा एलिगेंट और प्रोफेशनल लगता है. क्या कहते हो? ऑल द बेस्ट.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
3: RM2,
2: रेडियो मस्ती.
0: This is so many people are asking, यार कैसे हम पार्टिसिपेट फिर से करना कर सकते हैं टू इन द प्लैटिनम टिकट. वैसे आप हर रोज हमारे साथ में आ सकते हैं यहाँ पर टिल द 30th of May. एक ही बस हफ्ता बाकी है फॉर यू टू बी एबल टू प्ले विद अस. सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर गेम्स ही गेम्स हैं जस्ट टू मेक यू विन द प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जो नॉट से लाइव कंसर्ट. जी हाँ, ये एक मैजिकल म्यूजिकल जर्नी है जो कि लगने वाले हैं द 30th of May 2026 को सैटरडे शाम रात्रि के 8 बजे से लेकर. जी हाँ, और आप तो जानती हैं जब आर्टिस्ट गाने लगते हैं, वी जस्ट डोंट वांट देम टू फिनिश. ओके, ये लगने वाला है कहाँ पर? SBICC Pi में. जी हाँ, फॉर दिस अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल. वी से द कंसर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो एंड collaboration with ticketbox.mu. for your tickets now you can book on www.ticketbox.mu. for more reservation and more information you can call on the hotline 214 64 64 214 64 64.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

And India's an international most talented artist coming to Mauritius on the 30th of May 2026, ladies and gentlemen. वैसे सैटरडे को लगने वाली ये बिग कंसर्ट था, वैसे तैयार हो जाइए फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग टाइम जहाँ पर आप बिता सकेंगे 8 से लेकर रात्रि के वेरी वेरी लेट तक एट SBICC, जहाँ पर एक ये अनफॉरगेटेबल इवनिंग रखेंगे आपके लिए. जुबिन नौटियाल से आपकी मुलाकात होगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विनर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एंड दे वन द प्लैटिनम टिकट. आप तो बड़ी चांस और लकी हो. और यहाँ पर जुबिन के बारे में क्या बताएं, हम और भी ऐड अप करना चाहते हैं. वैसे जुबिन इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स, नोन फॉर हिज सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड इमोशनल वॉइस. बोर्न ऑन 14th of June 1989 में देहरादून उत्तराखंड, जहाँ पर उन्होंने पैशन के लिए अपना म्यूजिक चुना. एंड वेरी यंग एज में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली, जैसे कि साथ ही साथ उन्होंने बढ़ते बढ़ते समय के साथ साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी सीखा, जैसे गिटार, पियानो, हारमोनियम एंड ड्रम्स. वैसे आप तो जानते ही है कि जुबिन इज एक्चुअली एडमायर्ड फॉर ब्लेंडिंग रोमांस, सैडनेस एंड मेलोडी इनटू हिज सिंगिंग स्टाइल, मेकिंग हिम अ फेवरेट अमंग म्यूजिक लवर्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड. और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इस सैटरडे को ले आ रहे हैं जुबिन नौटियाल को आपके यहाँ The game and everything is powered by Gravity Zero and Ticketbox.mu. For more information, you can call the hotline 214-6464. For more reservation, yes, you can call the hotline on 214-6464. Or tickets khareedne ke liye aap ja sakte hain on the website www.ticketbox.mu.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और
2: रेडियो मस्ती।
1: चलिए इसी गाने के साथ मिलेंगे इन द लास्ट आवर यानी कि 6 बजे के समाचारों के बाद 6:30 बजे हमारी मुलाकात ऑन हो जाएगी। प्यार रोमांटिक बातें और कुछ अच्छे अच्छे गाने।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check. शाम के ठीक 6 बजे है.
6: नमस्कार. सबसे पहले आज की सुर्खियां. आज नगर पालिका चुनाव किए गए नए मेयरों और उप मेयरों ने अपनी प्राथमिकताओं को उजागर किया, जिनमें नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना, उनकी समस्याओं को सुनना तथा ड्रग्स की बढ़ती समस्याओं और असुरक्षा के खिलाफ दृढ़ता से लड़ना शामिल हैं। मॉरिशस में बीजों के आयात पर भारी खर्च होता है, क्योंकि देश की 90% से अधिक जरूरतें अब भी आयातित बीजों पर निर्भर हैं। इसी कारण सरकार अब स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी सौंपी गई। आज 25 मई सऊदी अरब में हज का पहला दिन रहा। मीना में 1500 मॉरिशियन हाजियों के लिए एक बेहद रूहानी और शांत माहौल देखने को मिला। और ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई, लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना अभी स्पष्ट नहीं है। और अब समाचार विस्तार से। काठमांडू में सुबिराज गंगाबिसुन को शहर का नया मेयर चुना गया है, जबकि इंदिरा देवी कायाला उप मेयर पद पर निर्वाचित हुई हैं। दोनों का चुनाव सोमवार दोपहर नगर परिषद की एक खास बैठक के दौरान हुआ। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें मंत्री राजेश भगवान, अजय गणेश, दिव्य नागालिंगम और ज्योति जितन, इसके अलावा जूनियर मंत्री फौजी आलिमन और काहन फुक्यून बादशाह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। नए मेयर और डेप्यूटी मेयर के सामने शहर के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। प्राथमिकताओं में बुनियादी ढांचे में सुधार, शहरी स्वच्छता और नागरिकों के कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। विस्तार।
7: काठमांडू में नई टीम ने निरंतरता बनाए रखने की बात कही है। लक्ष्मी सुबिराज गंगाबिसुन को काठमांडू का नया मेयर चुना गया है, जबकि इंदिरा देवी कलाया डिप्टी मेयर होंगी। दोनों को सर्वसम्मति के साथ चुना गया। इस अवसर पर सरकार के कई सदस्य भी उपस्थित रहे। नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता नगरवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और नगर पालिका सेवाओं में सुधार के अलावा नए मेयर ने कर्मचारियों और नगरवासियों के साथ संवाद और नजदीकी संबंध पर जोर दिया।
8: Nous avons la foi à Belle Rose qui est déjà enclenchée et nous avons un problème de BLN, un terrain abandonné. Nous pouvons essayer de mettre un load. C'est un nouveau concept, rencontre avec le maire là. Il y a une plateforme de dialogue entre le maire, député maire et aussi un conseiller qui nous capable, qui est un truc qui a une difficulté, je peux gagner le terrain, qui a quelque chose qui nous capable d'améliorer pour eux.
7: अपने नए वर्ष के कार्यकाल को सफल बनाने के लिए नए मेयर अपनी डिप्टी मेयर के सहयोग पर भरोसा करेंगी। इंदिरा देवी ने नगर पालिका परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया।
9: Nous remercier le gouvernement qui vient de mettre, qui vient commence pense un peu aux dames, parce que nous aussi nous besoin de nos places dans la société et c'est madame qui est le pilier de la famille partout. Donc voilà, on est là, on va faire notre preuve.
6: आपको बताते चले कि पोर्ट लुइस में क्रिस्टल पोंडा लॉर्ड मेयर बनी हैं और डिप्टी लॉर्ड मेयर महसबीन करमताली। अन्य बुलेटिनों में अन्य नगर पालिका के मेयर और उप मेयर की जानकारी दी जाएगी। मॉरिशस में बीजों के आयात पर भारी खर्च होता है क्योंकि देश की 90% से ज़्यादा ज़रूरतें अब भी आयातित बीजों पर निर्भर हैं। इसी कारण सरकार अब स्थानीय उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है ताकि खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। इसी रणनीति में बॉकली स्थित कृषि स्टेशन की अहम भूमिका है। ये केंद्र हर साल लगभग 1.3 टन बीजों का उत्पादन, चयन और वितरण करता है। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
10: बुबासे स्थित 10 हेक्टेयर जमीन पर बॉकली एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में ऐसे कद्दू जिन्हें 6 महीनों तक के लिए रखा गया। हॉर्टिकल्चर डिवीजन के ओआईसी बालाकृष्णा पोनुस्वामी ने कहा,
11: ना पार्टिशन, ना कोकोम, ना हरिको, ना une trentaine de variétés, mais qui plaît important là-dedans, nous avons une variété qui est résistant à la maladie et qui est très bien adaptée aux conditions locales.
10: फसल के बाद इन्हें एक्सट्रैक्शन और धुलाई की इकाई में ले जाया जाता है। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए रखा जाता है। ये सबसे जरूरी चरण है ताकि बीज की उम्र सुनिश्चित हो। कृषि उद्योग मंत्रालय के साइंटिफिक ऑफिसर वानिसा पारिया ने कहा,
12: ces charges-là, ils pourront à peu près 2 à 3 semaines, dépend soleil aussi. Et puis, nous avons les laboratoires pour faire un test humidité. Quand l'humidité est à peu près 50%, à ce moment, nous connaissons la graine, ok, nous capables d'envoyer dans seed store.
10: सूखने के बाद बीज को मैकेनिकल तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, फिर हाथों से चुना जाता है ताकि जो खराब है उन्हें निकाला जा सके। इसके उपरांत बीज का प्रयोगशाला में विश्लेषण भी किया जाता है, इसकी जांच करने के लिए कि जर्मिनेशन अंकुरण की क्या क्षमता है।
13: Tout plan chill qui sorti pas nécessairement de bonne qualité. Alors là nous get le résultat. Ça veut dire bien sûr qu'il s'abatche la grana, il gagne un certificat qui est attesté qu'il est poussé à 50%, 70%, 90% ou 100%. Et bien sûr, c'est s'abatche là, là nous l'estial dans la section de packing.
10: अच्छी किस्म के बीज को कोल्ड रूम में रखा जाता है। कृषि उद्योग मंत्रालय के एग्रीकल्चरल सपोर्ट ऑफिसर स्टेफान वोंग ने कहा,
14: une trentaine de variétés ici qui nous stocke à une température de 15 degrés plus ou moins 2 and une relative humidity de 50% avant nous instaurer, nous tout en assurer qu'il y a une quantité de semences qui nous garder pour nous régénérer et nous assurer que tout en le marché nous a tout plein de semences qui nous.
10: कृषि उद्योग मंत्रालय में बिक्री स्थलों पर ये प्रक्रिया चलाई जाती है जहां पर खेतिहर स्थानीय बीज प्राप्त करने आते हैं। ये यहां उपलब्ध है।
11: Qui fait une production locale, c'est pour diminuer la dépendance vers l'importation. L'importation, elle coûte cher, et elle, la graine, elle coûte au moins 10 euros quelquefois. Par contre, la graine locale, elle se prix bien bas, qui veut dire que aussi le coût de production pour, avec la graine locale est vraiment bas.
10: राष्ट्रीय ज़रूरतों के लिए 90% से अधिक बीज आयात किए जाते हैं। अधिकारीगण भावी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से इस उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं और किस्मों को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। अभी के लिए बॉकली स्टेशन वार्षिक तौर पर कोई 1.3 टन बीज उत्पादन करता है।
6: कई वर्षों तक कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद सामाजिक रजिस्टर में पंजीकृत 20 परिवारों को आज उनके नए कंक्रीट के मकान की चाबी दी गई। ये दिन भावनाओं और एक नई शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा। एक आवास इकाई की लागत लगभग 1.6 मिलियन रुपए की है। इसमें 80% खर्च सरकार वहन करेगी जबकि 20% राशि लाभार्थियों द्वारा चुकाई जाएगी। भुगतान की अवधि 35 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। आज 25 मई को बालाक्लावा में मॉरिशस की साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्ट एमयू द्वारा नेशनल साइबर ड्रिल 2026 लगाई गई।

0: इस राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास में कई सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य बढ़ते और अधिक जटिल होते साइबर हमलों के बीच विभिन्न संस्थाओं की आपसी समन्वय क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का परीक्षण करना था। दासापाला सोमी आस्था गोविंद।
1: पहली नजर में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे अधिकारी पूरी एकाग्रता से काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ साइलेंट एक्सेस नाम का एक समन्वित साइबर हमला तैयार किया गया है। इस अभ्यास में देश की कई जरूरी डिजिटल सेवाओं को निशाना बनाया गया। इन विशेषज्ञों का काम था खतरों की जल्दी पहचान करना, नुकसान को कम करना और प्रभावित सिस्टम को फिर से चालू रखना। सर्च एमयू से सचिन रिचाई बताते हैं, फायरवॉल आदि की जानकारियों की जांच करनी होगी, जिनसे ये पता चलेगा कि आगे के कदम कौन से होंगे। रैंसमवेयर और फिशिंग जैसे साइबर हमले होते हैं। इस साल के साइबर ड्रिल में पहले से ज्यादा कठिन परिस्थितियों को शामिल किया गया है, ताकि टीमों को नए साइबर खतरों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। डॉक्टर कलीम अहमद उस्मानी बताते हैं, पिछले 8 से 9 सालों से यह अभ्यास चलाया जा रहा है। हालिया वर्षों में हमलों के चलते कार्रवाई ज्यादा जटिल हो गई है। अलग अलग सेक्टरों के परिप्रेक्ष्य में ये अभ्यास चलाया जा रहा है। ICT मंत्रालय के अनुसार इस तरह के अभ्यास सिस्टम की कमजोरियों को पहचानने के लिए जरूरी है। ICT मंत्रालय से फरहान खान जोहर बताते हैं, साइबर सिक्योरिटी कमेटी स्थापित की गई है, मौजूदा मूल ढांचों का जायजा लिया गया और इस बात की पहचान की गई है कि किन किन सेक्टरों में ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। मौजूदा कानूनों में सुधार भी लाया जाएगा। ये साइबर ड्रिल देश की महत्वपूर्ण डिजिटल सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों का हिस्सा है।
0: आज 25 मई को सऊदी अरब में हज का पहला दिन रहा। मीना में 1500 मौर्शन हाजियों के लिए एक बेहद रूहानी और सुकून भरा माहौल रहा। ये मंजर पूरी तरह से इबादत और खुदा के जिक्र से भरा हुआ था, जहां दुनिया भर से आए लाखों हाजी अल्लाह के सामने दुआ और इबादत में मशगूल थे। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस मुबारक मुकाम पर मौजूद हैं, जो मक्का से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। मॉरिशस में महंगाई अभी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। बैंक ऑफ मॉरिशस के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय सेक्टर के बहुत से कार्यकर्ताओं का अनुमान है कि आने वाले महीनों में दाम वृद्धि जारी रहेगी, जिससे मॉरिशनों की खरीद शक्ति प्रभावित होगी और दिसंबर तक महंगाई दर लगभग 5.3% तक पहुंच सकती है। विस्तार।
1: बैंक ऑफ मॉरिशस के एक दस्तावेज के अनुसार अप्रैल 2026 के अंत तक देश का अंतर्राष्ट्रीय भंडार 463.1 बिलियन यानी करीब 9.81 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में ये राशि 392 बिलियन रुपए थी, यानी एक साल में लगभग 71.1 बिलियन रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इमरित रामथुहल ने बताया, ये एक मजबूत भंडार है जिससे देश में स्थिरता बनी रहती है और इसके होने से निवेशकों को आश्वासन भी मिलता है। साथ ही इससे ये पता चल जाता है कि मॉरिशस के पास निर्यात शुल्क चुकाने की क्षमता है। केंद्रीय बैंक ने आयात को लेकर अब 2 नए संकेतक भी शुरू किए हैं। पहले संकेतक में ग्लोबल बिजनेस कंपनीज की सेवाएं शामिल हैं, जबकि दूसरे में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, ताकि देश की स्थानीय जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार इस नई प्रणाली का उद्देश्य आंकड़ों को और स्पष्ट बनाना है। 2025 के आयात के आधार पर देश का अंतर्राष्ट्रीय भंडार GBC सेवाओं को छोड़कर 13.6 महीनों के आयात को पूरा कर सकता है और उन्हें शामिल करने पर ये अवधि 10 महीनों की रह जाती है। 13.6 महीनों का भंडार अन्य देशों के न्यूनतम टारगेट से भी कहीं ज्यादा है। इन नए संकेतकों से अब देश की विदेशी मुद्रा जरूरतों और बाहरी आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।
0: इक्वल अपॉर्चुनिटीज ट्राइब्यूनल के नेतृत्व में नई टीम की नियुक्ति

0: नियुक्त की गई हैं नई अध्यक्षा। दिया बिसुन दोयाल ने सोमवार को स्टेट हाउस में दो अन्य सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने निष्पक्ष न्याय, तटस्थता और वस्तुनिष्ठा को मुख्य सिद्धांतों के रूप में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन द्वारा भेजी गई भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई और निर्णय अब इस नई टीम की जिम्मेदारी होगी। अधिकारियों के अनुसार ट्राइब्यूनल का उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना और जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक पृष्ठभूमि या अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव के मामलों में न्याय प्रदान करना है। मूवमेंट सोशलिस्ट मिलिताओं के स्वास्थ्य आयोग ने पोटवी स्थित सेंट्रस बिल्डिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया। इस मौके पर कैलेश जगतपाल ने कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर बात की, जिनमें लेप्टोस्पिरोसिस और चिकुनगुनिया शामिल थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने इसके अलावा कुछ अन्य संवेदनशील मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए, जैसे कि न चुकाए गए वैक्सीन के भुगतान और पकन ब्रिस्टर कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए खराब वेंटिलेटर का मामला। आस्था गोविंद।
1: स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कैलेश जगतपाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इसके लिए अधिकारियों की खराब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। चिकुनगुनिया पर बोलते हुए उनका कहना था कि मौजूदा फ्यूमिगेशन तरीका असरदार नहीं है। उन्होंने वैक्सीन मामले और पैकिंग ब्लिस्टर प्रकरण पर भी स्पष्टीकरण दिया। साथ ही उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय में लागू व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी।
2: Quand vous prenez un choix, vous signez un contrat, mais il est normal. Vous pouvez une acquitteuse qui vous a payé. Faudrait nous gagner le bill. La même chose pour Pfizer. Faudrait bill titum divan ou et quand même nous gagne bill, vous allez négocier. Algetan coûte qui s'en a qui prend décision pour poursuivre par un blister. Produit là, lit défectif. Les fins faire ce ben expert venir pour faire sa produit là, manger, ça peut manger. Nous ne poursuivons vous. Mon clé là-dedans. Nous tout clé à nous, la commission, dans MSN, nous clé à vous poursuivre.
1: कैलेश जगतपाल ने एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति शरीर की घटती प्रतिक्रिया पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से स्थिति को और गंभीर होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की।
0: अब ये विज्ञप्ति, मॉरिशस में अब तक एबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है। जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार 25 मई को जारी एक विज्ञप्ति में दी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेश में किसी मॉरिशस नागरिक के एबोला के संपर्क में आने की अफवाहों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और युगांडा में फैल रही एबोला महामारी को देखते हुए मॉरिशस के सैनिटरी अधिकारियों ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। हवाई अड्डे और बंदरगाह पर विशेष स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। इसमें हेल्थ डिक्लारेशन, तापमान जांच, मेडिकल मूल्यांकन और ज़रूरत पड़ने पर यात्रियों की निगरानी शामिल हैं। किसी भी संदिग्ध मामले को तुरंत एक निर्धारित आइसोलेशन यूनिट में भेजा जाएगा ताकि उचित इलाज और निगरानी की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि एबोला सामान्य सांस संबंधी संक्रमण की तरह नहीं फैलता। किसी व्यक्ति को तब तक संक्रामक नहीं माना जाता जब तक कि उसमें बीमारी के लक्षण दिखाई न दें। गंगा तलाव में माँ बगलामुखी महायज और विशेष स्तुति पाठ का आयोजन किया गया। बगलामुखी फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस वैदिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और विश्व शांति, सकारात्मक ऊर्जा तथा मानव कल्याण हेतु प्रार्थनाएँ की गईं। 10 महाविद्याओं में प्रतिष्ठित माँ बगलामुखी को सनातन परंपरा में शक्ति संरक्षण और नकारात्मक शक्तियों के लिए निवारण की देवी माना जाता है। आस्था गोविंद की ये खास रिपोर्ट।
1: स्वागतम वैदिक मंत्रों और हवन की पवित्र सुगंध के बीच गंगा तालाब का वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया। माँ बगलामुखी दश महाविद्याओं में एक प्रमुख स्वरूप मानी जाती है। सनातन धर्म में उन्हें ऐसी देवी के रूप में पूजा जाता है जो भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ बगलामुखी की उपासना साधक को आत्मबल, मानसिक स्थिरता और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है।
3: ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राए स्वाहा।
1: इसी श्रद्धा के साथ भक्तों ने माँ बगलामुखी महायज्ञ और स्तुति पाठ में सहभागिता की। इस अवसर पर माँ बगलामुखी के बीज मंत्र और स्तुति का विशेष पाठ भी किया गया।
3: तो माँ आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें।

0: मंत्रों का जप मन को एकाग्र करता है, नकारात्मक विचारों को शांत करता है तथा साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माँ बगलामुखी की आराधना जीवन में साहस, संयम और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। आचार्यों के अनुसार यज्ञ और स्तुति आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक अनुशासन और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माने जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे वैदिक आयोजन समाज में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: सुमिरन करें, जितना कर सकते हैं करें, माँ उतना ही फल दे देती है, उतना ही फल मिल जाता है। तो आप सब यहाँ आए हैं, माँ ने आपको खींचा है, माँ ने अपनी कृपा आप पे बरसाई है और इस मॉरिशस की पवित्र धरा में शंकर भगवान के समीप, मंगल महादेव के समीप, तो एक बार मेरे साथ नाम का जाप करेंगे बैठ करके, बोलिए जय माँ बगलामुखी।
0: इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने राष्ट्र की समृद्धि, पारिवारिक सुख और विश्व कल्याण हेतु मंगल कामनाएं की।

0: विदेश की खबरों में ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन किसी समझौते के जल्द होने की संभावना भी स्पष्ट नहीं है। विस्तार विधिमा सिबोडन के साथ।
1: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ताकारों को निर्देश दिया कि वे ईरान के साथ समझौता करने में जल्दबाजी न करें। इससे पहले उन्होंने संकेत दिया था कि एक समझौता बेहद करीब है। खबरों के मुताबिक जिस समझौते पर चर्चा चल रही है उसमें 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम का विस्तार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत की योजना शामिल है। ईरान के साथ अमेरिका इसराइल युद्ध समाप्त होने की उम्मीदों के बीच तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है और एशियाई शेयर बाजारों में उछाल देखी जा रही है जो ईरान के साथ अमेरिका इसराइल युद्ध को समाप्त कर सकता है। सोमवार सुबह वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट $97.90 प्रति बैरल पर आकर 5.5% गिर गया, जबकि अमरीकी बाजार में कारोबार करने वाला कच्चा तेल 5.9% गिर कर $90.93 पर आ गया। ईरान ने कहा कि पिछले सप्ताह के दौरान अमरीका और ईरानी रुख एक दूसरे के करीब आए हैं। दक्षिणी लेबनान में इसराइली हमलों में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसराइली सेना ने इलाके को खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर घातक हवाई हमले किए जिसमें सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गईं। इस हमले में लगभग 100 लोग घायल हो गए और 4 लोगों की मौत हो गई। हमले के कारण दर्जनों आवासीय इमारतें, एक स्कूल, एक ओपेरा हाउस और एक संग्रहालय क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चीन ने रविवार रात 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेंजाओ 23 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जो उसके अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री पूरे 1 साल तक अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। ये बहुप्रतीक्षित लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब चीन 2030 तक अपने पहले मानवयुक्त चंद्रमा मिशन की तैयारियों में जुटा है। हज के लिए 1 मिलियन से ज्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और शारीरिक तथा आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान के लिए जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात की जियारत करना फर्ज है।
0: रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए जिसमें राजधानी कीव स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का दफ्तर भी क्षतिग्रस्त हो गया। WHO के डायरेक्टर जनरल ने हमलों की निंदा करते हुए लड़ाई बंदी की अपील की। एक बार फिर से विधिमा सिबोरन के साथ अन्य विशेष खबरें।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने रविवार को कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो में इबोला के 900 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं जिनमें 101 पुष्ट मामले शामिल हैं। WHO ने कहा है कि ये प्रकोप अब लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो के लिए बहुत उच्च जोखिम पैदा करता है, लेकिन इस बीमारी के वैश्विक स्तर पर फैलने का खतरा अभी भी कम है। कैलिफोर्निया में जहरीले रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया गया है और हजारों निवासियों पर खतरा मंडरा रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कर्मचारी एक बार फिर रात भर काम कर रहे हैं ताकि जहरीले रसायनों से भरे एक विशाल टैंक को लीक होने या एक भीषण विस्फोट का कारण बनने से रोका जा सके। संभावित स्वास्थ्य जोखिमों और विस्फोट से होने वाले नुकसान की आशंका के

0: हजारों निवासियों को अभी भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। फिलीपींस में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग लापता हैं, जबकि खोज और बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मियों ने सोमवार को राजधानी मनीला के उत्तर में स्थित एंजेलिस शहर में इस 9 मंजिला इमारत के मलबे से कम 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ब्रिटेन और उत्तर पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में हीट डोम बनने के कारण लंदन का तापमान एथेंस से भी आगे निकलने के लिए तैयार है, जिससे साल के इस समय के मौसम के पुराने रिकॉर्ड टूटने की आशंका बढ़ गई है। दमकल कर्मियों ने रविवार दोपहर साउथगेट में एक टायर रिसाइकलिंग केंद्र में लगी आग पर काबू पा लिया, जिसके कारण हवा में काली धुएं का भारी गुब्बार उठ रहा था।
1: मौसम की रिपोर्ट। मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर तेज और ठंड हवा पाई जा रही है। देश में ऊंची लहर की चेतावनी हटा ली गई है। अनुमान है कि आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय की ऊंचाइयों पर जहां थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कल आसमान में बादल घिरे रहेंगे और थोड़ी बहुत बारिश होगी हवाई ढलानों और सेंट्रल प्लाटू पर। अन्य इलाकों में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें दक्षिण में 3 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने, साथ में पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी लगूनों से भी दूर रहने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त हुआ 5:38 पर, सूर्योदय होगा कल 6:36 पर।

6:27 हो चुके हैं। बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है लुडोविक के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार। Chemin Rollo Belle Rivière Sèche, mais Pachasi Sal qui est Fabio Old, Chemeté Ramauti Dabu, Chemeté Ramauti Dabu, Jusubhauti Sejani Jati Thi, Kimritu Hugayi. अर्थे कल दिन के 2 बजे इनके बेटे विजय डाबू के मकान शिमेगोलो बेलियारिवियासेश से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। लेखा ब्रेंच रोड घोंबुआ में 62 साल की 62-year-old श्रीमती फुलवंती जपसी, श्रीमती फुलवंती जपसी पैदाइशी नाम सुकारा जो वीना से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके पति कंधियालाल जपसी के मकान लेघों ब्रांच रोड घोंबुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए घोंबुआ की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। मोमानी पारी फ्रांस में 75 साल के 75-year-old श्री महेश दुकारन जो पहले मोसेलमो कुंजू प्लेंडे पापाए रहते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं गुरुवार 28 मई को दिन के 1:30 बजे लामोग लोपिताल पीछे साल पेथ्रिया मोमानी पेरिस से उठाकर दाह संस्कार के लिए जॉन शेरोल डे विल्टानर्स फ्रांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन थर्सडे एट 1:30 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और चलिए गुड इवनिंग 6:40 हुए हैं, आप जुड़े हैं आर इनटू रेडियो मस्ती के साथ, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। वेलकम इन दिस लास्ट आवर, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट MBC प्ले एप्लीकेशन। जी हाँ, MBC प्ले 1.0 द न्यू वर्जन लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पर आप खेल सकते हैं हमारे साथ विद MBC द मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉन्च कैंपेन ऑफ MBC प्ले कोलैबोरेशन विद मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। एक्चुअली वी आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग नेशन वाइड रेडियो कंपटीशन, जहां पर आपको दिया जा रहा है मौका टू पार्टिसिपेट लाइव विद अस। वैसे किस तरह से आप हमारे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा MBC प्ले एप्लीकेशन एंड क्रिएट एन MBC प्ले अकाउंट। और जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको मैसेज मिलता है विद एन MBC OTT। जी हाँ, स्क्रीनशॉट भेजकर ऑन 549 and 1294 पर आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो जाते हैं। अगर आपने कभी खेला नहीं हमारे साथ, तो यार एक लकी ड्रॉ होने वाला है और हर रोज होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे विद सिवरन कमीला जी एंड मीनाक्षी दोनों से। सबसे पहले कमीला जी, हेलो, वेलकम।
2: हेलो
1: हेलो कमीला जी।
2: हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते, कैसे आप?
2: ठीक है।
1: आप ठीक हो? आप टेंशन में आ गई, आप तो अच्छे से बात करी थी आज। वैसे अभी नाउ स्ट्रिक्ट अभी प्रश्न पूछो, मुझको जीतना है। ओके आप ना होल्ड रखो, और हम साथ ही साथ एक आपसे आपके ओपोनेंट से हम बात करने वाले हैं। उनका नाम है मीनाक्षी दोमा। हेलो जी मीनाक्षी।
3: हेलो मनीष्मा
1: जी, हाउ आर यू?
3: I'm fine.
1: So, are you ready for the question? एक तो सबसे पहले दोनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं for having the MBC Play 1.0, the new version in your mobile phones. आप कभी भी साथ दिखा सकते हैं with, of course, MBC. अभी हम आपसे, आप दोनों से एक ही सवाल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एक ही सवाल करेंगे और जो सबसे पहले जवाब देता है, देती है, वो बन जाएगी the shortlisted person for the lucky draw जो होने वाला है on the 29th. Of May. Okay, ji. All the best goes out to both of you. You ready, guys?
3: Yes.
1: Okay. Complete the slogan of MBC Play. Okay. Complete the slogan. Avec où?
2: Partout.
1: मीनाक्षी जी, आप थोड़े से देरी में आपने जवाब दिया एंड दिस इज द राइट आंसर फॉर टू, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मीनाक्षी जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप सिलेक्टेड नहीं हुए। एंड मीनाक्षी, वी कैन से कंग्रेचुलेशंस टू कमीला, ना?
3: कंग्रेचुलेशंस
1: कमीला जी, आप ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्टेड हुई है। मीनाक्षी, कुछ मैसेज, एक डेडिकेशन आप करना चाहती है मीनाक्षी?
3: Next dedication to all my family, Doma family,
1: yes,
3: for your team,
1: yes,
3: and all the participate.
1: Yes, thank you so much, Meenakshi. Bye bye.
3: Thank you. I'm so happy to talk to you, Manishma.
1: Oh, me too. Me too. It's a pleasure to always talk to each and everybody calling us. Thank you, Meenakshi. Bye bye. Have a wonderful evening. वैसे कमीला जी,
2: हाँ जी,
1: हाँ जी, तो आप बने हैं द शॉर्टलिस्टेड पर्सन आज के लिए टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली फॉर द फाइनल, जो कि होने वाला है फ्राइडे। फ्राइडे को आप अपने फोन ना करीब ही रखो, यू नेवर नो, यू कैन बी इन द लकी ड्रॉ, और आप ऑटोमेटिकली एक सवाल का जवाब देकर आप बन जाएंगे द कपल जो कि इस राइड को राइड करने वाले हेलीकॉप्टर में इतने सारे टाइम बिता पाएंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंड हैव फन, एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।
2: मेरी मॉम के लिए अमृता, खुशानंद, मेरे बेटे के लिए खुशा, उसके फ्रेंड जो सभी लोग अभी रेडियो सुन रहे हैं, अनिकेत, और मेरी बेटी खुशहाली के लिए।
1: खुशल, खुशहाली, और दादाजी का नाम खुशानंद। खुशानंद,
2: खुशानंद,
1: और आप कमीला, सारे केक है
2: कमीला।
1: थैंक यू। अच्छा जी, आप एंजॉय कीजिएगा अपनी इवनिंग को। मैं बहुत खुश हुई हूँ कि
2: मैं भी बहुत

0: देन तेरे झुके झुके और इन झुकी झुकी हुई नजरों को और इन झुके हुए पलकों को बस थोड़ा सा और उठाने के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए खूबसूरत गाने पलकों के तले आपको सजा कर रखे हैं, तो बिल्कुल पैम्पर करने के लिए, आपके दिल को जीतने के लिए और आपके दिलों तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है हमारे पास, और वो रास्ता है कि आप अपने मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुंचाएं। ऑन 5:09, 9:12, 9:04 शाम के 7:07 हो चुके हैं, 25 मई 2026 मंडे इवनिंग, और ऐसे में हम साथ देने के लिए आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM जहाँ पर दिव्या का साथ है। तो चलिए कुछ दिल की बात और आपस में दिल के जज्बात आप तक पहुँचाते रहेंगे, और वी जस्ट होप कि आप भी अपने दिल के जज्बातों को हम तक पहुंचाते रहेंगे ऑन 5:09, 9:12, 9:04 या फिर लाइन खुली हुई है तो आप ज़रूर हमें याद करें ऑन 4:28:35, 4:02, 4:35 पर आप हमें ज़रूर याद कर सकते हैं। दिन के थकान को दूर करने के लिए कुछ खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, सो इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू द कूल ब्यूटिफुल सूदिंग एंड रोमांटिक गाने।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती मैं जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SVICC पाई विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: शान का दीदार तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं है हमारे पास एक नहीं बल्कि चार चांद है, क्योंकि आप जब लोग साथ देते हैं तो शो में चार चांद ही लग जाते हैं। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए, यहाँ पर किसी ने हमें कहा है कैन आई आस्क यू फॉर अ सॉन्ग टू प्ले फॉर दिस टाइम। चलिए हम कोशिश करेंगे, आप अगर कोई 90s या फिर कोई नया रोमांटिक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं टू समवन स्पेशल, तो बिल्कुल अगर ये हमारे शो में फिट इन होता है तो ज़रूर हम इस गाने को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड किसी ने यहाँ पर कहा है प्लीज़ कैन यू प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट ट्रैक फॉर माई मिस्चीवस सॉन कार्तिक हु इज़ मेसिंग अराउंड इन द किचन फ्रॉम ममा आशना, दैट्स रियली स्वीट। और जिनके बेटे हैं उन वो ज़रूर इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। एंड आप कहते हैं कि यू वॉन्ट टू प्ले द सॉन्ग मेरी दुनिया तू हीरे फ्रॉम द मूवी हे बेबी, तो चलिए कुछ ही देर में हम आपका ये गाना हम चलाएंगे। एंड ऑफकोर्स अगर आप भी हमें याद करना चाहते हैं तो आपके मैसेजेस डेडिकेशन का इंतज़ार ऑन 5499-1294, या फिर एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइन खुली हुई है तो आप हमसे बात कर सकते हैं ऑन 4028235402 पर। ज़रूर आप हमें फ़ोन करें, कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं जितना पॉसिबल हो सके तो आप पुराने गीतों के बजाय कुछ 90s कुछ नए गानों का रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अभी के लिए हमारे शो में ज़रूर सूटेबल है। तो चलिए अभी के लिए दिव्या का साथ है टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

वेल क्या बात है, बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आ रही हैं, लेकिन आप लोग ऑफेयर बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें दिव्यांशा ने फोन किया और बहुत ही यूनिक नाम है दिव्यांशा, सो थैंक यू सो मच हमें फोन करने के लिए। एंड आप कहती हैं कि बेस्ट फ्रेंड डिम्पल क्वीन के लिए आप नेक्स्ट गाना डेडिकेट करना चाहेंगी, वो इस वक्त किचन में खाना बना रही हैं और एट द सेम टाइम लुकिंग आफ्टर द बेबी, एंड जितने भी सारे मॉम्स हैं उनके बेबी हैं, दे कैन डेफिनेटली रिलेट विद दिस सिचुएशन। खाना बनाते बनाते एक साइड में एक कमर में बच्चे को टांगना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन जैसे दिव्यांशा ने कहा कि सुपर मॉम, यस हर मॉम सुपर मॉम ही होते हैं। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दीपिका, और चलिए मे बी दिव्यांशा का दूसरा नाम दीपिका है, एंड यस दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दीपिका, एंड आप है फ्रॉम आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। आपने कहा कि बस यही कह दीजिएगा डिम्पल को पता चल जाएगा, सो चलिए डिम्पल जी आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बहुत ही प्यार से याद किया है, एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर गिरीश हरलोल जी जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ।

0: वैसे जैसे ही हमने माइक ऑन किया हमने देखा आप फ़ोन कर रहे थे, अनलकीली अभी के लिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, तो थोड़ी देर में अगर आप फ़ोन करें तो बिल्कुल आपसे हम बात कर पाएंगे। एंड यहाँ पर किसी ने हमें एक ऐसी बात कह दी है कि सीधा जाकर दिल पे लग गई। आप कहते हैं कि आई एम अ सिंगल फादर एंड आई हैव अ लिटिल डॉटर इन ग्रेड वन, सेंडिंग योर डॉटर बहुत बहुत सारा प्यार एंड आई जस्ट होप कि ज़िंदगी की सारी खुशी उसकी झोली में भर जाए। एंड चलिए, उनको जादू की झप्पी चाहिए तो बिल्कुल कभी भी आप उनको MBC लेकर आइएगा, थोड़ा सा विजिट भी हो जाएगा और हम उनको कस के हक करेंगे। बिल्कुल आप बहुत बहुत ही अभी के लिए थके हुए हैं तो चलिए रिलैक्स। एंड कुछ ऐसा सिचुएशन आपने हमें बताया है जिसको पढ़ के थोड़ा सा मतलब दुख हो रहा है, लेकिन ऑफकोर्स क्या करें, ये ज़िंदगी की दस्तूर है। एंड आई जस्ट होप कि आप ज़िंदगी में ऊपर वाला आपको बहुत सारा हिम्मत दें ताकि आप अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से, लाड प्यार से पाल सकें। एंड द नेक्स्ट गाना गोज़ आउट स्पेशली फॉर यू कमल, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। छोटी बेटी का नाम नहीं बताया आपने, लेकिन कोई बात नहीं, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत सारा प्यार। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड डोंट फॉरगेट यू कैन स्टिल कीप कॉलिंग अस ऑन 4282 35 कट्स ऑन द कैथोथॉन साइक पर, हम आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रही हैं। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर।
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Well, it's already 7:47 to all those having their dinner right now. Aapko bon appetit, shubhahar. Divya ka saath on the waves of Radio Masti till 9 PM. Chaliye yahan par कुछ कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है, आज तो कोई भी ऑन एयर नहीं आना चाहते हैं, बस ऑफ एयर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं आवाज़ तो जानी पहचानी है, और शायद लोग कहेंगे कि बार बार हम ही फ़ोन करते हैं। कोई बात नहीं, आप जितना भी बार फ़ोन करें तो आपका प्यार तो उतना ही फ्रेश लगता है। थैंक यू सो मच मनीषा ऑफ बिले हमारा साथ देने के लिए, और कहती है कि मेरे पास दो गाने हैं, एक खेल मूवी का गाना प्यार होने लगा एंड एक दूसरा गाना है कभी सोचा ना था मैंने, एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स टू, एंड इसीलिए मैंने थोड़ा सा फेवरिज्म करके ये गाना चलाया आपके नाम। तो चलिए मनीषा, दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें फ़ोन किया, एंड आपको बहुत बहुत सारा प्यार।

0: वेल वेल प्यार कभी सोच समझ के नहीं किया जाता है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इसलिए शायद जहां पर प्यार है वहां पर आप दिमाग नहीं बल्कि दिल लगाएं। चलिए यहाँ पर ऑलरेडी 7:53 एंड हमारे पास एक और कॉलर हैं, यूजुअल कॉलर जो हमेशा हमसे बात करती रहती हैं और उनका फ़ोन जब भी आता है ऐसा लगता है कि शो पूरा हो गया है। सो वी हैव सुनीता जी ऑल द वे फ्रॉम तेहूज। नमस्ते सुनीता जी, कैसी हैं आप?
1: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक। खाना खा लिया?
1: नहीं गाना पहले तब खाना।
0: बहुत ही अच्छी बात है, सब लोग पेट पूजा हाँ। करते हैं लेकिन आप संगीत की पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो चलिए सुनीता जी, आप आज कौन सा गाना मांगना चाहती हैं?
1: मुझे मालूम भी नहीं कौन कौन सा गाना है।
0: कोई भी 90s का या फिर एक नया गाना अगर आपके मन में है, आपके दिमाग में चल रहा है।
1: कोई भी गाना बजा देना, खूबसूरत सा गाना।
0: ओके,
1: और ये गाना आप लोगों के लिए, आपके टीम के लिए, खासकर दिनेशा के लिए, भाई धर्म के लिए और सभी सुनने वाले के लिए और हमारा परिवार के लिए।
0: ओके सुनीता जी, थैंक यू सो मच। और चलिए आप अभी के लिए जरूर हमें बताइए कि रेडियो मस्ती जब आप सुन रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है, गाने कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठती हूँ 4 बजे तो मैं रेडियो डालती हूँ, काम पर से आती हूँ तो रेडियो टेलीविजन साथ में डालती हूँ।
0: ओह माय गॉड,
1: हमें एक दोस्त मिल गया है, एक ये कैसे बोलते हैं,

0: एक तारा, एक रेडियो और एक टेलीविजन.
1: That's really sweet. So, Sunita ji, thank you so much हमें फोन करने के लिए.
0: कोई हो ना हो, रेडियो हो साथ में तो बहुत अच्छा.
1: That's really sweet. तो चलिए ऐसे ही आप फोन करते रहिएगा, क्योंकि जब आप फोन करते हैं ना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है.
0: जी हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात कर एक गीत मांगना चाहती हूँ जो हमें पसंद है वो भी मिल जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है.
1: That's really sweet. तो चलिए ऐसे ही आप सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए हर एक गीत के साथ. थैंक यू सो मच सुनीता जी साथ देने के लिए.
0: धन्यवाद.
1: तो ये थी हमारी प्यारी सी सुनीता जी, हमेशा हमसे बात करने का मौका ही नहीं छोड़ती हैं एंड बहुत ही अच्छा लगता है कि जब उनका फ़ोन कॉल आता है. तो चलिए अभी के लिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे. एंड सुनीता जी ने कहा कि 90s का कोई भी गाना, तो चलिए कुछ ही देर में उनका एक 90s का गाना हम चलाएंगे और साथ में ये गाना आप लोगों के नाम भी.
2: Evening Lounge, Evening Lounge,
3: RM2,
2: Radio Masti.

0: कितना खूबसूरत गाना है ये और इतना पॉजिटिव भी है। एक दिन तेरी राहों में, बस आप भी वेट करें उस दिन का जहां पर आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कर पाए दूसरों के साथ। चलिए अभी के लिए वी हैव समवन जो हमसे बात करना चाहती हैं और आप हैं अनीता जी अफ्रीका ऑफ लक। हेलो अनीता जी, नमस्ते आपको।
1: नमस्ते, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक है।
0: वैसे अनीता जी,
1: हमारे लिए
0: बिल्कुल, अनीता जी अफेयर बोल रही थी कि आप अच्छी लग रही हैं, तो मैंने बोला थैंक यू, आप भी अच्छी लग रही हैं, आपको मैंने मन की आंखों से देखा। और इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कि आप लोग हमेशा हमें याद करते हैं। आई नो कि घर के काम काज में इस वक्त इतने उलझे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप टाइम निकाल कर नंबर डायल करना ही कितना मुश्किल होता है आजकल ना, कि आप नंबर डायल करो, किसी को पूछो कि आप कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, खाना खा लिया
1: होती है अब।
0: बिल्कुल,
1: अब हमारी दोस्त हमारी फैमिली तो रेडियो।
0: ओहो, दैट्स रियली स्वीट, आप भी हमारी फैमिली हैं। तो अनीता जी बताइए अगला गाना किन किन के नाम?
1: तो हमारी सभी फ्रेंड एंड फैमिली के लिए, आपके लिए, रेडियो मस्ती के सभी टीम के लिए। तो फिल्म हम साथ साथ के एक गाना।
0: हाँ जी,
1: जो भी गाना,
0: हम साथ साथ हैं का गाना।
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू अनीता जी, आपको भी बाय। तो ये थी हमारी प्यारी सी अनीता जी जिन्होंने हमसे बात की। और चलिए लाइन पर एक और कॉलर है हमारे साथ, उर्वशी जी नमस्ते। हेलो,
2: हेलो
0: उर्वशी जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: कैसे
0: हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं?
2: मुझे क्षमा कर देना, मैं हिंदी नहीं बोल सकती हूँ।
0: कोई बात नहीं, आप किसी भी भाषा में बोल दीजिए, हम समझ जाएंगे। बताइए अगला गाना किसके नाम?
2: मैं एक गाना मांग, फिल्म ओम शांति ओ। आंखों में कभी,
0: आंखों में तेरी अजब सी अदाएं।

0: That's a very sweet one. तो चलिए उर्वशी जी, अगला गाना खास तौर से आपके नाम, और ये गाना किन किन के नाम?
1: सिर्फ मेरे लिए.
0: As usual, I like your spirit, Urvashi ji. कभी तो हमारे लिए भी डेडिकेशन किया करिए. That's really sweet of you, Urvashi ji. मैं बस मजाक कर रही थी. मुझे पता है कि बिना कहे भी आपका प्यार तो हमें मिल ही जाता है, आपका प्यार हम तक पहुंच ही जाता है. थैंक यू सो मच उर्वशी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा. बाय. तो चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी. एंड ऑफ कोर्स आप भी हमें फोन कर सकते हैं 4282354 पर. इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती.

जब आप प्यार करते हो तो कोई आपकी दुनिया बन जाती है और इस दुनिया में जितना प्यार भर सको ना उतना ही कम लगता है, इसलिए कहते हैं कि दुख बांटने से थोड़ा और कम हो जाता है और खुशी बांटने से थोड़ी और दुगनी हो जाती है। चलिए यहाँ पर हम खुशी बांटने की कोशिश कर रहे हैं एंड साथ में आपके मैसेजेस हम तक तो ज़रूर पहुँच रहे हैं, कुछ ही देर में इनकी ओर ज़रूर बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ऑफ कोर्स एज यूजुअल वी वांट टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि बहुत ही जल्द एक बहुत ही एक्स्ट्रा स्पेशल कॉन्सर्ट होने वाला है ऑन सैटरडे 30th May 2026 एट 8 PM एट SVICCPI। और ये शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स। और वैसे हम आपको बता देते हैं कि टिकट्स अवेलेबल हैं और रिजर्वेशन भी करा सकते हैं थ्रू हॉटलाइन 214-6464 ऑन ticketboxer.mu। हॉटलाइन का नंबर है 214-6464। तो चलिए इस इवेंट को और भी एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड योर प्रेजेंस और वहाँ पर

0: आपको मौका भी मिलेगा टू सी जुबी नौटियाल परफॉर्म लाइव फॉर दिस कॉन्सर्ट. यस, आप जुबिन नौटियाल को लाइव देख पाएंगे और इनके परफॉर्मेंस को, गाने तो हमेशा इन्होंने एक से बढ़कर एक ही दिया है, तो ऑफकोर्स इनके गाने को लाइव एंड डायरेक्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट, आपको इस कॉन्सर्ट को ज़रूर असिस्ट करना है.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Masti.

वेल 8:43 ऑलरेडी एंड आई नो कि आप लोग कब से अपने मैसेजेस एंड डेडिकेशंस का इंतज़ार कर रही थी, तो चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. एंड यहाँ पर आपने कहा कि हाय इट्स विदुषा फ्रॉम ब्रह्मस्थान, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच विदुषा. अगला गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर यू और आपकी फैमिली है हिंचू एंड पुरुषोत्तम फैमिली, और आप अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को बहुत ही याद कर रही हैं, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि उनसे बहुत ही जल्द आप मुलाकात करेंगी और उनको ज़रूर बताएगा कि आपने उनको कितना मिस किया है. नेक्स्ट गाना गुज़ आउट स्पेशली फॉर यू विदुषा एंड फॉर योर बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल. एंड यहाँ पर 7:30 को कमल जी का मैसेज आया था और आपने अपनी बेटी का नाम लिखा, उनका नाम है छवि, तो छवि को ज़रूर आप एक दिन हमारे रेडियो स्टेशन पर ले आना, हम उनको बहुत प्यार करेंगे और ये हमारा प्रॉमिस है. तो चलिए अगला गाना गुज आउट स्पेशली फॉर हबी रवि, जिनसे आप बहुत ही प्यार करती हैं, फ्रॉम कारिश. एंड साथ में नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे टू योर फैमिली एंड RM2 टीम, हैव अ ग्रेट डे अहेड. वैसे आपने नाम नहीं लिखा, बस आपको ब्रेथलेस वाला इंस्ट्रूमेंटल शायद आपको सुनना था. अभी के लिए तो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग गाने रिक्वेस्ट कर लिए हैं, बट विल ट्राई टू कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम. नमस्ते दिव्या जी, राधा हियर फ्रॉम कनाडा. ही राधा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर लाइकिंग द शो. एंड आप कहती हैं इफ पॉसिबल प्लीज प्ले द सॉन्ग मैंने प्यार किया, टाइटल सॉन्ग फॉर योर फैमिली इन कनाडा एंड मॉरिशस. RM2 लिसनर्स के लिए हर हर महादेव आपको भी. एंड चलिए आज के लिए थोड़ा टाइट लग रहा है, बट वी डोंट प्रॉमिस, लेकिन हम कोशिश करते हैं. तो चलिए राधा जी, आपको सात समंदर पार जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, आपको बहुत बहुत सारा प्यार. गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, प्लीज़ प्ले द नेक्स्ट गाना. एंड ये गाना जाएगा स्पेशली फॉर हस्बैंड अश्विन हु इज़ वर्किंग एट द मोमेंट, फ्रॉम वाइफ प्रीति शाह, मामा है आशा, पापा राजीव, बहन श्रिया, खुशी, भाई वीर, मंगर फैमिली, दोयाल फैमिली ऑफ थुदादूस एंड लिस्पिहॉन्स पीटों. एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फॉर मिस्टर ज्ञान बिहारी एंड आपकी वाइफ है सबीता, सिस्टर इन लॉ गीता, संजीव फ्रेंड है सुनील, साथ में है रानी, सभी RM2 लिसनर्स के लिए. एंड प्रकाशवती जी, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, आपका भी वेलकम हम कर रहे हैं. और यहाँ पर अगला गाना जाएगा फॉर हस्बैंड शांत दुबारी, फ्रॉम बीवी शीतल सुब्रन, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. सीता जी, आप है कौच मिलते से. नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर मामी मानती संगर, हु सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे, विशेष

0: कमिंग फ्रॉम शिवेश रानी एंड उनकी फैमिली की तरफ से। तो चलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ, बस साथ देते रहिएगा ऐसे ही, एंड बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।
1: Evening Lounge,
2: RM2
1: Radio Masti।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well, friends, it's already time for Divya to say goodbye to all of you and हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सेम टाइम 7 से लेकर रात के 9 बजे तक. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

लवली पीपल विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. प्यार भरे नमस्कार प्रणाम स्वीकार करे. मंडे इवनिंग है नीतू आपके साथ. सुस्वागत इन लेट नाइट ग्रूव्स.

सोचिए अगर बॉलीवुड फिल्मों में गाने नहीं होते तो शायद फिल्मों की दुनिया कितनी अधूरी लगती। ना किसी हीरो की मोहब्बत दिल को महसूस होती, ना किसी हीरोइन की आंखों का दर्द इतना गहरा होता। गाने ही तो हैं जो इमोशंस को अल्फाजों से आगे लेकर जाते हैं। इन्हीं इमोशंस के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं टिल मिडनाइट।

बॉलीवुड बिना गानों के बिल्कुल उस बगीचे की तरह होता है जहां फूल तो होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती। कहानियां चलती रहती हैं लेकिन दिल में उतरने वाला एहसास शायद कहीं खो जाता है।

अगर फिल्मों में सॉन्ग्स ना होते तो शादियों की रौनक भी अधूरी लगती। कितने ही गाने हमारी जिंदगी के खास पलों का हिस्सा बन चुके हैं, है ना? बॉलीवुड म्यूजिक पे तो हर सेलिब्रेशन को यादगार बनाया जाता है।

कभी सोचा है राज कपूर शम्मी कपूर या राजेश खन्ना का चॉम कितना अलग होता अगर उनके आइकॉनिक सॉन्ग्स न होते उनकी मुस्कुराहट और एक्सप्रेशंस को अमर बनाने में गानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है बॉलीवुड के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं वैसे बल्कि जज्बातों की जुबां हैं अगर फिल्म्स में सॉन्ग्स न होते तो प्यार का इजहार इतना खूबसूरत शायद कभी लगता ही नहीं

फिल्मों के गाने तो वो पल होते हैं जहां कहानी थोड़ी देर के लिए हवाओं में उड़ने लगती है। हीरो और हीरोइन की दुनिया एक सपने जैसे लगती है। बिना सॉन्ग्स के वो मैजिक अधूरा रह जाता है। सोचिए अगर रेनी सॉन्ग्स ना होते, बारिश का मौसम कितना सुना सुना लगता। बॉलीवुड ने बारिश को रोमांस का दूसरा नाम बना दिया है।

बॉलीवुड सॉन्ग्स ने सिर्फ फिल्मों को नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को भी रंगों से भर दिया है। हर मूड के लिए गाना, हर याद के लिए एक मेलोडी, यही तो बॉलीवुड की खूबसूरती है। अगर फिल्मों में गाने ना होते तो शायद कई सिंगर्स कभी लेजेंड्स भी नहीं बनते। उन आवाजों ने फिल्मों को रूह दी है जो आज भी दिलों में जिंदा है।

0: थैंक यू सो मच हाँ हमारे हम सफर बनने के लिए इट्स योर लेट नाइट ग्रूव नीतु आपके साथ. बस एक इमोशनल सीन शायद आंखों को नम कर दे लेकिन उसके बाद बजने वाला सोलफुल गाना दिल को पूरी तरह छू लेता है. सॉन्ग्स इमोशंस को और गहरा बना देते हैं.
1: या

0: बॉलीवुड बिना म्यूजिक के सिर्फ सिनेमा होता, लेकिन गाने उसे एक सेलिब्रेशन बना देते हैं। हर फिल्म का एक म्यूजिकल हार्टबीट होता है जो उसे यादगार बनाता है।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

गोइंग डाउन मेमोरी लेन, पुराने जमाने की फिल्मों को याद कीजिए। कहानियां अच्छी थी लेकिन उन्हें अमर बनाया कौन? उनके गानों ने। आज भी लोग डायलॉग से ज्यादा मेलोडीज को याद रखते हैं। अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स ना होते तो रोड ट्रिप्स, चाय की शाम, तन्हा रातों का मजा भी अधूरा ही लगता।

का परमानेंट कंपेनियन बन चुका है। बिना सॉन्ग्स के बॉलीवुड फिल्म से शायद ज्यादा रियलिस्टिक होती लेकिन कम दिलचस्प। गाने ही तो हैं जो रियलिटी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक खूबसूरत दुनिया दिखा देते हैं। सोचिए अगर हार्ट ब्रेक सीन्स में सैड सॉन्ग्स न होते कितने इमोशंस अधूरे लगते हैं ना। बॉलीवुड ने दर्द को भी सुरों में इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि आंसू भी सुकून देने लगते हैं।

बॉलीवुड म्यूजिक ने हर एक्टर को एक अलग पहचान दी है। किसी की स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग से बनी, किसी की एनर्जेटिक डांस नंबर से। सॉन्ग्स के बिना उनकी स्क्रीन पर्सनालिटी भी अधूरी लगती है।

अगर फिल्मों में म्यूजिक ना होता ना तो थिएटर्स का माहौल भी इतना मैजिकल ना लगता। सॉन्ग्स ऑडियंस को क्लैप करने, मुस्कुराने और कभी कभी साथ गाने पर मजबूर कर ही देते हैं।

अगर सॉन्ग्स ना होते तो वाकई में बॉलीवुड का कल्चरल इम्पैक्ट भी इतना बड़ा ना होता। हिंदी फिल्म म्यूजिक ने दुनिया भर में इंडिया की पहचान बनाई है। गाने फिल्मों के इमोशंस को हवा देते हैं। एक सिंपल लव स्टोरी भी मेलोडी के साथ एक टाइमलेस रोमांस बन जाती है।

मूड और म्यूजिक का रिश्ता बिल्कुल दिल और धड़कन जैसा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। सॉन्ग्स ही फिल्मों को जिंदा और महसूस करने लायक बनाते हैं। सोचिए अगर होली, दिवाली या शादियों में बॉलीवुड सॉन्ग्स न बजते, सेलिब्रेशंस कितने फीके लगते। म्यूजिक ने हर फेस्टिवल को भी एक अलग एनर्जी दी।

इसीलिए बॉलीवुड को दुनिया की सबसे म्यूजिकल फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी गाने सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं बल्कि इमोशंस, कल्चर और जिंदगी की आवाज है। अगर सॉन्ग्स न होते तो बॉलीवुड का दिल शायद कभी इतना जोर से धड़कता नहीं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: क्यों मस्ती?
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के